फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती। वंदनवार।

이재순이 찐따는 स्वामी विवेकानंद का कथन है दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं जब तक आप खुद अनुभव नहीं करते तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते आप सुन रहे थे चिंतन अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 299 6:45 पर संगीत सरिता सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 2। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। पर त्रिवेणी 8:30 पर चित्रलोक 9:30 सुबह और रात 9:30 पर आज की फनकार आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री साधना पर। आलेख और स्वर अमरकांत का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत सुनेगा। संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुति सुबैर खान की। ग्यारह बजे रंग तरंग 12:05 पर यादों की महफिल 1 बजे सुरीला सफर

दो बजे त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नख में। सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली सुनेगा। इसके अंतर्गत आज सुनेगा विश्व नारियल दिवस, शब्द हमारा विचार आपके, प्रसन्नता, साहियों का संसार, साड़ियों का संसार, मंगलगिरी साड़ियां, फूड पैकेट्स को पढ़ना सीखें, व्यंजन नारियल के व्यंजन होंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। पिटारा में शाम 4 आज के मेहमान लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत सुनिएगा, प्रस्तुति है अनुश्री पाठक की। छाया गीत 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। आपको फिर से बता दें, सुनेगा श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना भाग दो। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा राग अनुराग। हवा महल में रात 8 सुनिए प्रहसन विवाह यंत्र भाग दो, लेखन N.R. टंडन का, निर्देशन है मुख्तार अहमद का। 8:15 पर चित्रलोक, 9 कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार, आपको फिर से बता दें, अभिनेत्री साधना पर केंद्रित होगा, आलेख और स्वर अमरकांत का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 299।

अरे मूर्ख, वाक विलासिता से अपने मन को बहला कर अपने कुल का सर्वनाश न कर। श्री राम के विरोधी की रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं कर सकते। लक्ष्मण के पत्र में लिखा यह संदेश सुनकर रावण भयभीत हुआ, किंतु सभासदों को दिखाने के लिए मुस्कुराता हुआ बोला, पृथ्वी पर खड़ा ये तुच्छ तपस्वी आकाश पकड़ने की डींग मार रहा है। दूत शुक ने रावण को समझाने की भरसक चेष्टा की, श्री राम से वैर न करने की प्रार्थना की, ये भी विश्वास दिलाना चाहा कि उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है, शरणागत पर वो कृपा करते हैं, वे आपके अपराध भी क्षमा कर देंगे। हे स्वामी, जनक नंदिनी उन्हें लौटा दीजिए, मेरी इतनी विनती मान लीजिए। शुक को इस अनुनय के लिए रावण ने लात मारी और अपशब्दों की बौछार के साथ उसे सभा से निकाल दिया। इधर 3 दिनों की अवधि बीत जाने पर भी जब समुद्र ने पार जाने देने की विनती नहीं मानी तो श्री राम को क्रोध हो आया। उन्होंने अग्निबाण संधान किया जिससे सागर के हृदय में भीषण ज्वाला धधक उठी। सागर ब्राह्मण का रूप धारण कर मस्तक झुकाए आ खड़ा हुआ।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान। आज आपने सुना भाग 299।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है। स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, ये जो हमारी श्रृंखला है इसकी ये दूसरी कड़ी है। शकुंतला जी, इस घराने की विशेषता क्या है? ये पिछली कड़ी में आप इसकी बात कर रही थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। और वो कौन सी बंदिश होगी जिसकी हम चर्चा करेंगे?
2: तोड़ी राग की बंदिश।
1: जी जी।
2: और वो तोड़ी राग का जो विलंबित ख्याल है।
1: हाँ जी।
2: और विलंबित ख्याल में एक एक स्वर पर आगे कैसे जाने का है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है
1: जी।
2: और दूसरा जो द्रुत चीज है ना।
1: हाँ जी।
2: उनकी भी चर्चा करते हुए किराना घराने का जो स्वर का और शब्द का भी महत्व
1: जी।
2: लंगर कांकरिये जिना मारो, यानी क्या है लंगर? यानी श्री कृष्ण। कांकरिये यानी पत्थर।
1: अच्छा।
2: पत्थर मत मारो। मोरे अंगवा लग जाता।
1: ओ।
2: सुन पावे मोरे सासन न दिया।
1: हाँ।
2: दौर दौर घर आए। सासू और ननदिया
1: जी
2: दोनों जो है वो मेरे पीछे पड़ेंगे।
1: हाँ,
2: क्योंकि
1: हाँ।
2: आप मेरे पीछे पड़े हो।
1: ओ, हो, हो, हो।
2: वो जो अच्छा। गोपिका है श्री कृष्ण के बारे में
1: कह रही
2: बोलती है।
1: हाँ।
2: और सब अर्थ जो है उसकी बढ़त जो है
1: जी
2: उसी हिसाब से किया हुआ है। और यही किराना घराने का जो परंपरा है
1: जी।
2: जो भाव शब्द सुर ताल स्वर प्रधानता
1: जी
2: ये सब लेकर हमें आगे जाना है। और उसमें मेंड गायकी और उसका जो छोटा छोटा मुर्की खटका ये सब किराना गायकी का एक नजाकत ढंग है।
1: आज शुरुआत किस बंदिश से हो रही है?
2: शुरुआत तो मुझे जैसी की है वैसे ही मैं आपको बताती हूँ।
1: हाँ,
2: और थोड़ा गा के भी दिखाती हूँ। मियाँ की तोड़ी सुबह करते थे।
1: हाँ,
2: शाम को राग यमन करते थे
1: जी।
2: सुबह सिर्फ उसके आलाप तान।
1: हाँ,
2: और शाम को उसके पलटे यमन के पलटे
1: जी।
2: ऐसा हमारा सिलसिला चालू था। मियाँ की तोड़ी मैं गाती थी। एक इंसिडेंट बोलती हूँ मैं किराना घराना का महत्व समझाने के लिए। मेरी गुरुजी डॉक्टर गंगूबाई हनगल उनसे हम काजी कहते हैं।
1: अच्छा।
2: मैं रियाज करती थी, उनकी तालीम चालू थी। वो कभी सामने नहीं बैठती थी क्योंकि मैं डरती थी उनको बहुत उनके सामने गाने के लिए। अंदर बैठ के गाना सुनती थी और मैं तोड़ी गा रही थी।
1: अच्छा।
2: और हो गया सा प्रस्थापित हो गया सा रे, बाद में एक एक स्वर गाने का ना हमारे स्वर रे हो गया ग हो गया। रे पर मैं सारे निसारे धनी रे धरे रे रे सानी धनी रे ऐसे बहुत सारे वैरायटी करने के बाद मैं गई गंधार पर।
1: अच्छा।
2: गंधार पर जाते ही गंगूबाई जी बाहर आई।
1: अच्छा।
2: पूछने लगी क्या हुआ? रिखब लगा? रिखब नहीं लगा और गंधार पर कैसे गई?
1: ओ।
2: और क्यों गई? मुझे तब समझ में नहीं आया। उतना समझ भी नहीं था गाना। वो बताई कि आप क्या रंगमंच पर बैठकर गा रही हो क्या?
1: अच्छा।
2: एक सुर लगे बिना आगे नहीं जाना है।
1: ओ।
2: एक सुर का जो गोलाई है उसकी जो जगह है वो वही रखनी है, बाद में आगे जाना है। ये थोड़ा हम तोड़ी सुनेंगे अभी।
1: स्वागत है।

बहुत ही सुंदर ये बंदिश रही तोड़ी में, और अपने श्रोताओं को इसी राग पर आधारित एक गैर फिल्मी रचना है, दिल पड़ोसी है इस एल्बम से,

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पुनः लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जताई।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे। उन्होंने नागरिकों से देश की प्रगति में योगदान जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की नीतियां और इरादे सही हैं। देश में कच्चे तेल के बाद सोना ही ऐसी दूसरी वस्तु है जिसका सर्वाधिक आयात किया जाता है। सोने की थोक मात्रा में खरीद बंद करने से देश के कुल आयात बिल में भारी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्य को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। यह नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडार सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। चीनी भंडारण की नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी स्टॉक को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता है और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकता भी रद्द कर दी गई और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के विरुद्ध जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस, जनता पार्टी, सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, जंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold unless necessary.
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को हम आज अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे और इसलिए आइए देशवासी हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखें हमारी नीति सही है हमारी नीयत साफ है और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है
2: Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains. Taking a swipe at his critics, he said some people within the country, drowned in an atmosphere of despair, are spreading the lies all around. Mr. Modi said the country's youth will see their dreams being realized through the hard work being put in today. He also called on citizens to continue contributing to the country's progress, saying the government's policies and intentions are right. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The two-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek yesterday, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, said in a media briefing that the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals effective from the 15th of this month till 30th of November this year. The new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability. At present, a stock holding limit of 4,000 quintals on sugar dealers across the country is effective from 1st of August this year. Under the amended provisions, a sugar dealer shall not hold any stock for a period exceeding 30 days from

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। प्रदेश कैबिनेट ने आरजीपीवी के पुनर्गठन के साथ 3 नए प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी। और इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शेरनी सुंदरी ने 2 शावकों को जन्म दिया, मां और दोनों शावक स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये शिखर सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करेगा और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करेगा। शिखर सम्मेलन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: जल अवसंरचना परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन, जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन, पेयजल प्राणियों के स्रोतों की स्थिरता तथा जल जीवन मिशन 2.0 शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवपुर में आयोजित बलराम महोत्सव को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। ग्वालियर में मुख्यमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषक कवच योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 200 नवीन प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कार्यालयों का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट किसानों, जिला सहकारी बैंकों और पैक्स संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री आकाशवाणी तिराहे के पास पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुवीर सिंह बाबूजी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये योजना 6 प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित है: कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई अवसंरचना में सुधार करना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक अधिक पहुंच को सक्षम बनाना और शासन तथा सेवा वितरण में सुधार करना शामिल है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। यह नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडार सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करके उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देशभर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकते हैं। सतना जिले में लगातार बारिश होने से मंदाकिनी, टमस और सिमरावल सहित कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर राहत और बचाव दलों को सक्रिय किया है। चित्रकूट के प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी बचाव कार्य में जुटी हैं। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।
1: सतना जिला में कल रात कई इलाकों में 8 से 10 सेंटीमीटर का बारिश 3 से 4 घंटे के अंतराल में गिरा है। उसके कारण सतना का सभी नदी और नाला उफान पर है। हमने सभी जगह को सुबह 6 बजे सभी जगह को हमने अलर्ट जारी किया है। लोगों से ये अपील है कि लोग को, मतलब काफी लोग को नुकसान हुआ है, वो दुखी भी है, हम सुशार कर रहे हैं, बट हमने ये बता रहे हैं कि वो अकेले नहीं है, सब आपदा किसी एक को टारगेट करके नहीं आया, सबको आया, सब इसमें सब लोग मिले हुए हैं और जो भी उनका नुकसान है उसको भरपाई किया जाएगा, सर्वे किया जा रहा है, जो भी उचित उनका मुआवजा सब चीज मिल जाएगा, बट अभी के लिए सुरक्षित रखें, हिम्मत रखें, ये हमने।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में करीब 41,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की जानकारी कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि आरजीपीवी का पुनर्गठन कर भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 3 नए प्रौद्योगिकी और कौशल विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। वहीं सामाजिक न्याय विभाग में 9 गठित जिलों के लिए नए पदों को भी मंजूरी दी गई। किसानों के हित में ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की सीमा 25 से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक सुखद खबर है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शेरनी सुंदरी ने 2 शावकों को जन्म दिया है। जू प्रबंधन के अनुसार दोनों शावक और उनकी मां स्वस्थ हैं और फिलहाल गुफा में सुंदरी के साथ हैं। शावकों का अभी लिंग परीक्षण नहीं किया गया है। इनके जन्म के बाद जू में शेरों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। जू प्रबंधन शावकों के स्वास्थ्य और गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है। पूरी तरह स्वस्थ होने और विकास की पुष्टि के बाद ही उन्हें दर्शकों के सामने लाया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भोपाल में आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज की ओर से एजीओ स्पोर्ट्स अचीवर्स अवार्ड 2025-26 समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 148 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार ने आयोजन के बारे में जानकारी दी।
3: कि मैंने आज से करीब 8-10 साल पहले मध्य प्रदेश की अकेडमी छोड़ी थी और आज भी मध्य प्रदेश मुझे याद करता है। इस अवसर पर जब खिलाड़ियों के उत्थान की बात आती है, उनके उनके अचीवमेंट के बाद उनको इंसेंटिव देने की बात आती है, तो यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे तरीके से, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के पूरे मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों को देखभाल करके अपने पास अपने एडमिशन में रखा। कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ खेलो और मेडल जीतो। तो इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसेंटिव, कोई भी कार्य दूसरे नहीं हो सकते जो यूनिवर्सिटी कर रही है खिलाड़ियों के लिए।
0: भोपाल में वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर कल 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। डीबी सिटी मॉल में आयोजित कार्यक्रम में 43 अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ वंदे मातरम के थीम पर संगीत प्रस्तुति दी गई। वहीं 200 से अधिक विद्यार्थियों ने सामूहिक गायन किया और 150 से अधिक छात्राओं ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। आयोजकों के अनुसार इन तीनों उपलब्धियों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को नई पीढ़ी से जोड़ना था। आपको समाचार संक्षेप में। मंडला में कल शाम से वर्षा का दौर जारी है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश होने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है।

नर्मदापुरम कलेक्टर ने कल आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए। जबलपुर भोपाल मार्ग का शहपुरा भिटौनी टूल अस्थायी रूप से बंद रहेगा। फ्लाईओवर ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने और लगातार हो रहे विरोध के बीच यह निर्णय लिया गया है। खंडवा में कल जेसीआई द्वारा भाटी माटी के श्री गणेश कार्यशाला का शुभारंभ भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। आगर मालवा कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने कल जिले के हाईवे और मुख्य मार्गों के गांवों में संचालित गौशालाओं के संचालकों की बैठक ली। पन्ना में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और किसानों का देवता बलदाऊ जन्मोत्सव आज मनाया जाएगा। अशोकनगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक दिवसीय श्री कृष्ण पर्व गरिमा अनुरूप मनाया जाएगा। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झाबुआ में कल साप्ताहिक जन सुनवाई के साथ स्वरोजगार दिवस का भी आयोजन किया गया। सेंट्रल जेल इंदौर में आयुष विभाग द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 253 मरीजों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

उस्ताद पेड्रो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में असद भोपाली की रचना थी। सी आरजू ने इस रचना की धुन बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। श्रोताओं, आज अभिनेत्री साधना का जन्मदिन है। साधना अपनी अलग अंदाज और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। अभिनेत्री साधना अपने हेयर स्टाइल के लिए भी जानी गई थी। उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम जरूर सुनिएगा सुबह 9:30 और रात 9:30, जो केंद्रित होगा अभिनेत्री साधना पर। अब हम आपको सुशीला फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं, मुबारक बेगम की आवाज़।

0: सुशीला फिल्म का गीत मुबारक बेगम की आवाज में आप सुन रहे थे। बोल जानिसार अख्तर के थे, संगीत सी अर्जुन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

श्रुतः पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज़ें थी, गीत गुलचन बाबरा, कथा संगीतकार थे सी अर्जुन। हमें अफसोस है कि ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए और इसी अधूरे गीत के साथ आज का हम भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। सविता सिंह को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे राजकुमार फिल्म से। संगीतकार थे शंकर जयकिशन। अगला गाना आपको एक मुसाफिर एक हसीना से सुनवा रहे हैं। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, बोल राजा मेहंदी अली खान ने लिखे हैं।

0: एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये प्यारा सा गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में बोल राजा मेहदी अली खान ने लिखे थे, तर्ज ओपी नैयर ने बनाई थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में साहिल उद्यानवी का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन रवि का था और वक्त का वक्त फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए एक कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में असली नकली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने इस गीत की धुन बनाई थी। श्रोताओ, आज अभिनेत्री साधना का जन्मदिन, जन्मतिथि है। उन्होंने अपनी खूबसूरती, सादगी और भावपूर्ण अभिनय से हिंदी सिनेमा में एक अलग मुकाम बनाया। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए ये कहा जा सकता है कि सिनेमा के पर्दे से दूर होकर भी साधना जी की खूबसूरत यादें और उनका अभिनय हमेशा हमारे बीच जीवित रहेगा। उन्हें सादर नमन करते हुए सुनते हैं।

0: एक फूल दो माली फिल्म का गीत अब आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की थी, रचना प्रेम धवन की थी और संगीत रवि का था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: मेरे महबूब फिल्म का गीत लीजिए अब सुनिए। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, नौशाद की तर्ज है।

मेरे महबूब फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सभी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और हुरमुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
2: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
2: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल की रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्व पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सतलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से
4: बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
5: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
7: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, ज़िरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं।
8: बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
9: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछी प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
10: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो गई। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी बड़ी पदाधिकारी
9: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बन हुई है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
8: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से 3 छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्य शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साइराज, जंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
9: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
11: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र, एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है, हिंदुस्तान में है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
9: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, सविता सिंह का।

0: विशाल शेखर, शिल्पा राव और साथियों की आवाजों में फाइटर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को कुमार और साथियों ने और विशाल दादलानी ने मिलकर लिखा था और विशाल शेखर ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रोचक कोहली की आवाज में धड़क टू फिल्म का गाना। गुरुप्रीत सैनी का लिखा ये गीत है और रोचक कोहली का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।

0: नाना पाटेकर, शान और मोंटी शर्मा की आवाजों में वनवास फिल्म का ये गीत अभी सुन रहे थे आप।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। साथियों, आज नेशनल कोकोनट डे यानी राष्ट्रीय नारियल दिवस है। नारियल हमारी संस्कृति में हर शुभ कार्य का प्रतीक होता है। यही नहीं, ये प्रकृति प्रदत्त ऐसा एक उपहार है जो हमारी सेहत के लिए बहुत उपयोगी है। और आजकल तो यही ऐसा फल है जिसमें कोई मिलावट नहीं किया जा सकता। भले ही ऊपर से देखने में कठोर दिखाई देता है, लेकिन भीतर से अत्यंत सरस और सरल कोमल है। नारियल का पानी हमें तुरंत ताजगी देता है और इसका नित्य उपयोग तमाम तरह की बीमारियों से हमें बचाता है। सेहत के लिए ये वरदान सिद्ध है। हमारे देश में हर शुभ कार्य की शुरुआत नारियल फोड़कर या पूजा की थाली में सजाकर या कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के रोजगार और भोजन का भी ये मुख्य साधन है। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, अर्थात हर इच्छा की पूर्ति करने वाला पेड़ कहा गया है इसे। राष्ट्रीय नारियल दिवस मनाने का ये उद्देश्य है कि हम इस पेड़ की सुरक्षा और सम्मान करें। नारियल का पेड़ ये सीख देता है कि खुद ऊंचाई पर रहते हुए दूसरों को सुख दे, खुद ऊंचे रहकर भी सरल सरस और मीठा पानी दे, मर्यादा में बने रहें, मीठे बने रहें, छाया दें और अनेक लाभ दिए जा सकते हैं। तो आइए हम भी ये तय करें कि हम भी पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। जैसे प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि प्रकृति प्रदत्त हर चीज़ को संभाल कर रखा जाए। अब सुनते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में तमाशा फिल्म का ये गाना। लकी अली की आवाज है, इरशाद कामिल के बोल हैं, ए आर रहमान की तर्ज़।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चमन सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनिए
4: कहिए
0: सुनिए एक खुशखबरी
4: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से।

0: सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक में अब वक्त है कि छोटा सा ब्रेक लिया जाए।

ड्रीम गर्ल टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आवाज़ें मीत ब्रदर्स जोनिता गांधी जुबिन नौटियाल की थी। कुमार के बोल थे सौरभ रॉय, मीत ब्रदर्स का संगीत था। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है। कहते हैं कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा मन होता है, यानी जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा तन और मन हो जाता है। हमारे जीवन में भोजन या जो भी हम खाते हैं सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होता, बल्कि भोजन शरीर को स्वस्थ रखने और मन मस्तिष्क को बेहतर बनाने के लिए होता है। इसलिए हमें ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, जैसे अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और साथ में पर्याप्त जल। पर्याप्त मात्रा में पानी उतना ही उपयोगी है जितना भोजन। पोषण केवल बच्चों के विकास के लिए नहीं होता, बल्कि हर उम्र के हर वर्ग के लिए जरूरी है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हमें संतुलित आहार पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसका भी संतुलन होना चाहिए। बहुत अधिक मसालेदार और केमिकल से युक्त भोजन हमारे तन और मन दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। शुद्ध सात्विक आहार यानी घर का बना हुआ साफ सुथरे भोजन की ओर अपने मन को केंद्रित करना चाहिए और फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। 1 से 7 सितंबर तक मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का उद्देश्य यही है कि हम अपने शरीर की पोषक तत्व दें शरीर को और बीमारियों से अपने आप को दूर रखें। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

चित्रलोक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भारत फिल्म का गीत आवाज थी अभिजीत श्रीवास्तव के, इरशाद कामिल के बोल थे अमाल मलिक का, संगीत था। इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने लिया था कपूर एंड सन्स फिल्म से, बादशाह फैजलपुरिया सुकृति की आवाजें थी, कुमार के बोल थे अमाल मलिक का संगीत था, और अभी आपने भारत फिल्म का गीत सुना। चित्रलोक कार्यक्रम में अब बारी है एक ब्रेक की।

भाग मिल्खा भाग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, सिद्धार्थ महादेवन की आवाज़ें थी और साथियों की आवाज़ें थी। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था और शंकर एहसान लॉय की ये तर्ज आपने सुनी। आपको अब सुना रहे हैं अंधाधुन फिल्म का ये गीत, अमित त्रिवेदी की आवाज़ है, जयदीप साहनी के बोल हैं, अमित त्रिवेदी का संगीत।

अंधाधुन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों 25 अगस्त से 9 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। अपने जीवन की बात भी अगर किसी की दुनिया को रोशन करने का हम संकल्प लें तो यही है उद्देश्य नेत्रदान पखवाड़ा मनाने का।

तिलक मुछाल पुनीत अवस्थी की आवाजों में कंक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रभात कुमार ने इस गीत को लिखा था, पुनीत अवस्थी ने इस गीत की धुन बनाई थी। दोस्तों, हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हम किसी के लिए कुछ कर पाएं, किसी के काम आएं। हमारा छोटा सा फैसला किसी दूसरे की पूरी दुनिया रोशन कर दे, हमारी आंखें किसी की आंखों में खुशी ला दें, हमारे जाने की बात यदि हमारी आंखें किसी और की आंखों में सपने दिखाएं, उम्मीद दिखाएं, खुशी लाएं। जिसने अपनी उम्मीद खो दी हो, जो उदास हो, तो इससे अच्छा उपहार और क्या हो सकता है। इसी सोच को लोगों तक पहुंचाने और नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। तो चलिए हम खुद जागरूक बने और दूसरों को भी इस ओर प्रेरित करें। और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज प्रोग्राम में हम बात करते हैं हिंदी सिने जगत के सुनहरे दौर की बेहद खूबसूरत अदाकारा साधना की।

साधना का पूरा नाम था साधना शिवदासानी। साधना के पिता ने उनका नाम साधना इसलिए रखा क्योंकि वो उस दौर की एक्ट्रेस और डांसर साधना बोस के फैन थे। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि साधना के पिता फिल्म एक्टर हरी शिवदासानी के भाई थे और हरी शिवदासानी एक्ट्रेस बबीता के पिता यानी करिश्मा कपूर और करीना कपूर के नाना।

कराची में जन्मी साधना पार्टीशन के बाद अपने माता पिता के साथ बंबई यानी आज की मुंबई आकर बस गईं। यहाँ उनकी माँ ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर में ही पढ़ाया। उसके बाद वडाला मुंबई के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करा दिया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की साधना ने जय हिंद कॉलेज चर्चगेट मुंबई से।

साधना के मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा तो बचपन से ही थी और इसके लिए उनके पिता उन्हें बहुत सपोर्ट भी करते थे। बात है सन 1955 की, जबकि राज कपूर फिल्म श्री 420 बना रहे थे, तब उन्हें फिल्म के एक गाने में एक बच्ची की भी जरूरत थी। साधना के पिताजी ने इस रोल के लिए कोशिश की और साधना चुननी गई। श्री 420 फिल्म का आपको वो गीत सुनवाते हैं, ये रहा।

0: एक्ट्रेस नादिरा पर पिक्चराइज इस गीत में साधना भी नजर आती हैं। एक्टिंग का शौक तो साधना को था ही, सो वो अपने कॉलेज के ड्रामों में भी पार्टिसिपेट किया करती थीं। ऐसे ही एक दिन एक ड्रामे में उन्हें किसी प्रोड्यूसर ने देख लिया और कास्ट कर लिया अपनी सिंधी फिल्म अबाना में। ये बात है सन 1958 की। इस फिल्म में साधना ने उस दौर की बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी अदाकारा शीला रमानी की छोटी बहन का रोल किया था।
1: मैं

ये जो गीत अभी आपने सुना ये था फिल्म अनीता का गीत जो साधना ने मनोज कुमार के साथ की थी। मनोज कुमार और साधना की एक और फिल्म जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता वो कौन थी? जी मैं फिल्म की ही बात कर रहा हूँ, यही उसका नाम है। और इस फिल्म का संगीत

0: साधना के करियर की ये सुपरहिट फिल्म थी। हालांकि साधना की हिंदी फिल्मों की पारी शुरू हुई फिल्म लव इन शिमला से, जिसे प्रोड्यूस किया शशधर मुखर्जी ने। उस समय एक एक्टिंग स्कूल भी शशधर मुखर्जी चलाया करते थे, उसमें साधना भी ट्रेनिंग ले रही थी और शशधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी भी उसी स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। उस समय की बात है जबकि शशधर मुखर्जी को असिस्ट कर रहे थे आर के नैयर। उसी दौर में प्लान हुई फिल्म लव इन शिमला और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी शशधर मुखर्जी ने सौंप दी आर के नैयर को। हीरो तय हुए जॉय मुखर्जी और हीरोइन साधना।
1: Hey baby,

लव इन शिमला फिल्म की शूटिंग से पहले का एक वाक्या आपको सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब इस फिल्म के लिए साधना का लुक टेस्ट हुआ। अब आर के नैयर और यूनिट के कुछ और लोगों को लगा कि साधना का जो ये उठा हुआ माथा है यानी फोरहेड, ये इनकी खूबसूरती को कुछ कम कर रहा है। तब आर के नैयर ने ब्रिटिश एक्टर ऑड्री हेपबर्न के हेयर स्टाइल से इंस्पायर्ड होकर साधना के बालों को एक नया लुक दिलवाया। अब देखिए साहब, वो लुक इतना पसंद किया गया कि आज भी लड़कियां उसकी कॉपी करती हैं और वो लुक कहलाता है साधना कट।

0: हम बात कर रहे थे साधना कट बालों की। ऐसा नहीं है कि उस दौर में सिर्फ साधना की हेयर स्टाइलिंग को ही कॉपी किया गया। उस दौर की फैशन आइकन रही साधना। ये साधना ही थी जिन्होंने चूड़ीदार पजामा और कुर्ते का चलन शुरू किया जो आज तक फैशन में है। अब आपको सुनवाते हैं वो गाना जो हिंदी फिल्मों का आज तक का सबसे रोमांटिक गाना माना जाता है।
1: अभी न जाऊं छोड़ कर।

ये हम दोनों फिल्म का गाना साधना और देव आनंद पर पिक्चराइज हुआ, कभी भुलाया नहीं जा सकता, एक किंवदंती सा बन गया है। मोहब्बत करने वालों के बीच इस गाने की अपनी एक जगह है। खैर, यहाँ साधना की एक और उल्लेखनीय फिल्म का जिक्र बहुत जरूरी है जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था, फिल्म मेरा साया। इस हिट फिल्म में साधना की जबरदस्त अदाकारी ने सभी का दिल जीत लिया और संगीत आज भी सुना जाता है।

दोस्तों, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में आज भी एक कहावत सी बन गई है और बेहद पसंद किया जाता है ये गाना। खैर साहब, हम बात कर रहे थे साधना की, जिन्होंने 7 मार्च 1966 को अपनी पहली फिल्म के निर्देशक आर के नैयर से शादी कर ली। अपने फिल्मी करियर में साधना ने फिल्म डायरेक्ट भी की, गीता मेरा नाम।

और अब जिक्र साधना की कुछ उल्लेखनीय फिल्मों का, जिनके गीत शायद वक्त की कमी के कारण हम यहाँ आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन उन फिल्मों का जिक्र जरूरी है क्योंकि उनके गाने सुपर डुपर हिट हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे आपको इन फिल्मों के गीतों की झलक सुनवाने की। एक फूल दो माली,

अपने जीवन के आखिरी समय में साधना अकेली हो गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन फिल्मों से उनका जो लगाव, प्यार और समर्पण था वो शायद इस गीत में व्यक्त हो रहा।

0: तो दोस्तों अभिनेत्री साधना पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, रमेश गोखले द्वारा प्रोड्यूस इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

0: लिए प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी, आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। जबलपुर जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार जन संवाद और समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान की शुरुआत 7 अगस्त को पनागर से हुई थी। इस दौरान श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, विधायक सुशील कुमार तिवारी इंदु, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय मौजूद रहे। अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। जिले को अलग अलग क्लस्टरों में बांटकर 5 विशेष प्रशासनिक दल बनाए गए हैं। जिले में बारिश की रफ्तार फिलहाल धीमी हुई है। हालांकि अगले 2 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। नर्मदा नदी का जलस्तर भी अब घट रहा है। बरगी बांध के सभी 13 गेट 28 अगस्त को बंद कर दिए गए थे। ग्वारी घाट और तिलवारा घाट सहित नर्मदा के घाटों पर भी स्थिति सामान्य हो रही है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में जबलपुर को बड़ी सौगात मिली है। 27 अगस्त को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वाहन निर्माणी जबलपुर में 472 करोड़ रुपए की लागत वाले टी सीरीज टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किए जा रहे इस प्रोजेक्ट में T-72, T-90 टैंकों की मरम्मत और आधुनिकीकरण किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता को लेकर भी जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। मिलावट, कम नापतौल और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए राजस्व, खाद्य, नापतौल विभाग और तेल कंपनियों के अधिकारियों की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें पेट्रोल पंपों पर अचानक पहुंचकर जांच कर रही हैं। रांची के पनेहरा स्थित एक पेट्रोल पंप की 3 डिस्पेंसिंग नोजल सील की गई हैं। न्यायिक व्यवस्था में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी जबलपुर में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उच्च न्यायालय में नए आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और लिफ्ट क्रमांक 5 का लोकार्पण कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रुशिया ने किया। आधुनिक न्यायिक तकनीक से न्याय तक पहुंच को सरल, तेज और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डुमना नेचर पार्क से कैच तरीन अभियान के तहत 11 लाख पौधरोपण महाभियान का शुभारंभ किया। डुमना, उमरिया और कठौंदा में मियावाकी तकनीक से पौधरोपण के साथ सोकपिट निर्माण अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी जिले में तेजी से काम जारी है। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 30,538 आवासों में से 16,901 आवास पूरे हो चुके हैं। जिले ने 56.50% लक्ष्य हासिल कर लिया है। युवाओं के कौशल विकास पर भी जिले में विशेष जोर दिया जा रहा है। शासकीय आईटीआई में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण शुरू किया गया है। पहले चरण में 30 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें ड्रोन संचालन, उड़ान, सुरक्षा, सर्वेक्षण और तकनीक उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं पीएम श्री एमएलबी स्कूल में पर्यटन क्विज 2026 प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें जिले के 303 शासकीय और निजी स्कूलों के 909 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े सवाल पूछे गए। जबलपुर की महाकौशली गाय को देश की 57वीं पंजीकृत देसी गौवंश नस्ल के रूप में पहचान मिली है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में वर्ष 2018 से 2022 तक इस पर शोध किया गया था। ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संशाधन ब्यूरो करनाल ने इसे पंजीकृत देसी नस्ल के रूप में मंजूरी दी। दूसरी ओर जिला पंचायत परिसर में जिले का पहला दीदी कैफे शुरू करने की तैयारी है। स्वसहायता समूह की महिलाओं को कैफे के प्रबंधन, बिक्री और संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैफे में महिलाएं भोजन बनाने से लेकर पूरे संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी। जबलपुर से कोलकाता के बीच सीधी हवाई सेवा भी शुरू हो गई है। 8 अगस्त को पहली उड़ान डुमना विमानतल पहुंची। विमान का वाटर कैनन सलामी के साथ स्वागत किया गया। पहली उड़ान से 17 यात्री जबलपुर पहुंचे, जबकि 28 यात्री कोलकाता के लिए रवाना हुए। वहीं जिले के 56 वर्षीय पर्वतारोही सुनीता सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लाहौल स्पीति में लगभग 21,000 फीट यानी 6,111 मीटर ऊंचे माउंट यूनाम पर तिरंगा और भारतीय स्टेट बैंक का झंडा फहराया। इसी के साथ जबलपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। शहर के राधा कृष्ण मंदिरों को सजाया जा रहा है। सामूहिक रूप से भव्य शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली की चिट्ठी, यह आकाशवाणी भोपाल।
2: क्या जलवे थे मेरे फादर के
3: जी,
2: कि मुझे एक मेरे फादर भी 2009 में गुजरे, लेकिन उनकी मैयत में कब्रिस्तान हमारा अपना है, तो घर से कब्रिस्तान तक जो मैयत है ऐसे ही

0: कांधे कांधे ही गई, चल नहीं पाई।
1: ये वो इज्जत है जो कमाई जाती है, वो प्यार है जो कमाया जाता है।
0: तो वहां से शुरुआत स्कूल से हुई मेरी, ड्रामे वगैरह करता था स्कूल में, और इस तरफ जाने का कोई इरादा एज सच नहीं था, प्रोफेशन बनाने का इरादा तो बिल्कुल ही नहीं था। ये था कि भाई शौकिया तौर पे कभी थिएटर वेटर कर लिया करेंगे, और ऐसे ही मेरे घर वाले भी समझते थे कि भाई चलो शौक है, कर रहा है, अच्छी बात है। किसी ने कभी रोका टोका नहीं, खासतौर से मेरे घर वालों ने तो कभी कोई तंज भी नहीं कसा
1: जी।
0: तो वहां से शुरुआत हुई, और वहां से करते करते कॉलेज में आए, कॉलेज में भी किया, और मुंबई यूनिवर्सिटी में जब आया तो यहाँ भी किया। तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि इस लाइन में आने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वो जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो जेईई का होता है, उसमें जब नहीं हुआ मेरा, तब मैंने पलटी मारी। मैंने कहा अब हो गई पढ़ाई साइंसेस वगैरह की, अब जो मजा आता है जिसमें वो करते हैं। तब इस तरफ झुकाव हुआ, और इसी मकसद से ही मैं बॉम्बे आया। बीए कंप्लीट करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया, शेवुड कॉलेज नैनीताल से मैंने स्कूलिंग की 3 से 12 तक
1: जी,
0: और फिर यहाँ एएमयू से ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया मैंने
1: जी।
0: तो बॉम्बे आने का मकसद थिएटर करना था।
1: थिएटर था, और थिएटर जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो वो जरूर मिलती है। तो मुझे लगता है आपने जैसे जिक्र किया कि आप नसीरुद्दीन शाह जो है उनके बारे में पढ़ते थे, उनसे कभी मिलने की तमन्ना थी, और यहाँ पर शायद वही ख्वाब खींच कर लेकर आया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उनका साथ मिला मुझे, और शुरुआती दौर में ही मिल गया मुझे, वरना उन तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम होता
1: जी।
0: है। तो मैंने भी शुरुआत उनके साथ वहीं से की कि छोटे मोटे रोल क्राउड व्राउड में ऐसे वैसे करते करते, फिर उसके बाद बड़े रोल मिलना शुरू हुए
1: जी।
0: और मेरा सबसे अहम काम जो उनके साथ रहा है वो 2 प्रोडक्शन जो मुझे खास तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं, वो है मंटो इस्मत हाजिर हैं, और उसके बाद एक था कथा कोलाज।
1: कथा कोलाज के बारे में काफी सुना है
0: जी। तो नसीर भाई तो एक लिहाज से मेरे उस्ताद रहे हैं, और काफी कुछ सीखा है उनसे, और अभी भी सीख रहे हैं। ज्यादा उसके अंदर न जाते हुए मैं कहूँगा कि इंसान के तौर पे और नजरिए के तौर पे, उनके साथ अभी थिएटर तो नहीं करता मैं, 2009 के बाद छोड़ दिया था मैंने, लेकिन काफी कुछ मुतासर करने वाली शख्सियत है वो।
1: बिल्कुल।
0: जी,
1: यहाँ पर हम अपने सुनने वालों को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं, तो आप बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवाएं।
0: अगर बहुत पुराने दौर में जाएं तो मेरे ख्याल में मुगल-ए-आज़म का वो गीत, प्यार किया तो डरना क्या,
1: प्यार किया तो डरना क्या, आइकॉनिक गीत।
0: जी
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं वो गीत।

0: बात करते लेट 90s की, जब आप मुंबई में आ चुके थे, तो उसी दौरान आप हम दिल दे चुके सनम, वो आपकी पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से, और एड की दुनिया, ये
1: जी
0: दोनों कैसे चली? पहले क्या शुरुआत हुई और फिल्म में कैसे जाना हुआ?
1: देखिए, जब थिएटर कर रहा था तो इस बात का एहसास हो गया कि सिर्फ थिएटर से गुजारा तो नहीं हो पाएगा,
0: बिल्कुल
1: और ये रियलिटी चेक मुझे यहाँ आने के बाद हुआ कि भाई ये गुजारा नहीं हो पाएगा, इससे तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई थी उसकी तरफ नज़र किया मैंने, जैसे कि मैं डबिंग्स करता था अंग्रेजी फिल्में या जो फॉरेन लैंग्वेज फिल्में हों या अदर लैंग्वेजेस टू हिंदी, और मेरी पकड़ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों पर खासी पकड़ है, तो वो आसानी मुझे हो गई डबिंग करने में, और डबिंग के साथ साथ एड्स में भी वॉइस देने की, वॉइस ओवर्स जो होते हैं, तो वो शुरू किया मैंने कमाई के नज़रिए से, और वो यही आता था। तो मैंने कहा कि इसी में ही जुड़े हुई चीज़ें जो हैं उसमें से ही कुछ आमदनी का जरिया देखा जाए। और उसके अलावा फिर थिएटर करता था मैं, और लोगों से काम मांगना आता नहीं था, वो शायद अपब्रिंगिंग कह लीजिए, तरबियत जो है अपनी, या आई डोंट, मैं ईगो तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक हिचक आज तक है मुझे,
0: आज भी नहीं है,
1: आज भी वो हिचक है मेरे अंदर की लोगों से काम मांगने का।
0: जी,
1: इशारतन बोल देता हूँ लोगों से कि भाई आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगा मैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, कि आपका काम पसंद करता हूँ और आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा मैं। बुला लिया लोगों ने तो अच्छी बात है, भूल गए तो भूल गए। खैर, तो थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हों, चाहे वो एड्स हों, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो, तो वो सब थिएटर में शोज करते वक्त लोगों ने मुझे वहां देखा, समझा, बुलाया, और काम से काम मिलने लगा। तो मैं कहूंगा कि थिएटर ही वो बुनियादी चीज है जिससे मेरे लिए और रास्ते खुले।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं तकरीबन पूरा जो श्रेय है वो थिएटर को दूंगा अपने करियर।
0: बिल्कुल, वो एक नींव है
1: जी,
0: जहां से सब चीजें शुरुआत होती है और मजबूत पकड़ लिए हुए हैं
1: जी। तो हाँ, वही एक शुरुआत, और बहुत सारे ब्रांच आउट जो हुए, जो आमदनी के जरिए बने, वो सब थिएटर के जरिए बने। लोगों ने खुद ही मुझसे, इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एड्स में वॉइसेस दे पाऊंगा, तो लोगों ने कहा कि भाई आप करिए, आपकी जबान अच्छी है, आप उच्चारण जो है आपका अच्छा है, क्लियर डायलॉग्स हैं आपके
0: जी,
1: तो करना चाहिए थिएटर में। उन्होंने देखा सुना मुझे, तो एज एन एक्टर बुलाया, एज अ वॉइस बुलाया, तो वैसे ही शुरू, और फिल्मों में भी उसी से ही रास्ते खुले।
0: हाँ। अभी आपकी पसंद का दूसरा गाना जो आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को?
1: इजाजत नाम की एक फिल्म है जिसमें मेरे ख्याल में सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो मेरा सबसे पसंदीदा है वो है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।
0: क्या बात है, क्या पसंद है सुनवाते हैं गीत
1: जी।

0: अभी हम बात करते हैं फिल्मों की एक लंबी फेहरिस्त है,
1: जी
0: बेबी, टाइगर जिंदा है और चलते चलते, इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात तो होनी जरूरी है।
1: जी
0: तो ये जो एक लंबी फेहरिस्त है, अब हर एक फिल्म का तो हम अभी बात नहीं कर पाएंगे,
1: जी
0: लेकिन दो अलग अलग छोर लेती हूँ मैं।
1: जी
0: एक तो जहाँ से शुरुआत हुई, संजय लीला भंसाली की फिल्म से,
1: जी
0: हम दिल दे चुके
1: रामलीला
0: सनम,
1: भी उनके साथ
0: रामलीला भी उनके साथ हुई, और दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर।
1: जी
0: बिल्कुल अलग किरदार,
1: जी
0: और एक कलाकार के लिए अलग अलग किरदार करना आसान है और वो एक अच्छी बात है, वो तो है ही।
1: जी
0: लेकिन दो अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स, दोनों
1: जी
0: का काम करने का तरीका एकदम अलग,
1: जी
0: तो क्या डिफरेंस है? और कुछ दिलचस्प किस्से दोनों के सेट से, कुछ ऐसा जो याद रह जाए, कुछ ऐसा आप साझा करना चाहेंगे?
1: देखिए, संजय भंसाली जो है वो बहुत ही बारीकी में घुसने वाले डायरेक्टर हैं और उनका विजन बहुत बड़ा और बहुत रिच होता है, बहुत ग्लॉसी, बहुत ही ग्लैमरस। गुर्बत भी जो है ना, गरीबी जो है, वो भी उनके फिल्मों में बड़ी स्टाइलिश दिखेगी।
0: बिल्कुल जी,
1: तो
0: लार्जर देन लाइफ
1: लार्जर देन लाइफ,
0: जी।
1: तो वो आदमी पिक्चर फ्रेम्स बनाता है, खूबसूरती तो भर भर के होती है उनकी फिल्मों में,
0: जी
1: और उनका तरीका जो है वो वही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जिस तरीका का कैनवस वो पेंट करते हैं, वो हर चीज़ में उनका दखल होता है। उनके साथ काम किया हुआ आदमी उनके साथ जब काम करता है तो वो अलग दिखता है, और किसी और के साथ काम करता है तो वो अलग दिखता है। उसकी
0: बिल्कुल
1: वजह यह है कि वो डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन उनका हर चीज़ में होता है, और उनका दखल इस हद तक होता है कि भाई वो कोई चीज़ बिगड़ने देना नहीं चाहते। वो म्यूज़िक
0: बिल्कुल
1: कंपोज भी करते हैं अब तो,
0: बिल्कुल हाँ
1: और बाकी तमाम चीज़ें तो हैं ही। तो उनका जो अंदाज़ है वो काफ़ी नपातुला है, और उनको जो चाहिए वो ढूंढते हैं और वो पा लेते हैं। उसको पाने में चाहे वो दो टेक लगें चाहे 200 टेक लगें,
0: अच्छा
1: जब तक वो पाते नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ते।
0: जी
1: और इसलिए वो अच्छे एक्टर भी ढूंढते हैं कि
0: जी
1: जो उनको वो चीज़ दे सके, और जो वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं उसको वो एक्टर उसी तरीके से दे सके। और अपने एक्टरों से बेनतहा मोहब्बत करते हैं वो बात अलग है कि अगर आप एक्टर अच्छे नहीं है तो जाहिर है फिर डांट भी पड़ेगी आपको, जायज़ भी है वो।
0: बिल्कुल
1: और अनुराग का जहाँ तक ताल्लुक है, अनुराग बहुत ही फ्री फ्लोइंग डायरेक्टर है। अनुराग कोई चीज़ डिसाइड नहीं करता है, वो एक्टर को खुली छूट देता है और वो रियलिज्म में ज़्यादा घुसता है। तो अनुराग उस लिहाज से अच्छा है कि अब वहाँ पर भी आपको अच्छे एक्टर की ज़रूरत पड़ेगी,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि एक्टर अगर इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहा है तो फिर अनुराग के लिए वो बेमानी है, क्योंकि वो
0: स्पॉन्टेनियस
1: हाँ
0: स्पॉन्टेनियस
1: स्पॉन्टेनियस बिल्कुल, और किरदार बगैर छोड़े हुए या बगैर उलझे हुए। कुछ अच्छी अच्छी मैजिकल चीज़ें भी मिल जाती हैं उसमें, कभी कभी अच्छी चीज़ें नहीं भी होती तो अगला टेक कर लेता है वो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तो फ़र्क बेसिक यही है कि वो बहुत ही रियल रस्टिक अनुराग का फील होता है, और बहुत ही इम्प्रोवाइजेशनल तरीका है उसका काम करने का।
0: कोई चैलेंजिंग रोल ऐसा जिसके लिए तैयारी तो खैर हर रोल हर कैरेक्टर के लिए चाहिए, पर कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल कैरेक्टर जिसके बारे में आप बात करना चाहें, जिसको बहुत तैयारी की जरूरत पड़ी और इस तरह का कुछ अनुभव?
1: फिल्मों में मुझे इतनी दुश्वारी पेश नहीं आई कभी भी।
0: श्रीकांत में आपने काम किया,
1: श्रीकांत, हाँ श्रीकांत,
0: श्रीकांत
1: श्रीकांत मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा
0: हाँ
1: टफ था,
0: जी
1: क्योंकि एक तो उम्र ज़्यादा, और क्या कहते हैं, ऐसी शख्सियत
0: जी
1: जो बहुत ही अजीम, बहुत ही महान शख्सियत, और अब भी सबने देखा है,
0: हाँ
1: उनको
0: हाँ
1: सुना
0: बिल्कुल
1: है, देखा है,
0: बिल्कुल
1: तो उसको उतारना थोड़ा चैलेंजिंग था और मुश्किल आई पेश। लेकिन उसमें जो डायरेक्टर थे तुषार, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए उस बात की,
0: अच्छा
1: उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर। मैंने कहा यार भाई ये बड़ा मुश्किल काम है,
0: हाँ हाँ
1: एक तो साउथ इंडियन, और अच्छी बात ये हुई कि वो मुझे उसमें अंग्रेजी भी, क्योंकि वो हिंदी इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे
0: बिल्कुल
1: तो अंग्रेजी का इस्तेमाल भी था, तो उस तरीके से थोड़ा सा बच गया। और बहुत ज़्यादा लंबा रोल नहीं था, मैंने कहा कि भाई ठीक है चलो ये मैनेज हो जाएगा।
0: जी
1: लेकिन हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि वो थोड़ा चैलेंजिंग था, और थोड़ा मुझे डराया भी उसने
0: अच्छा,
1: कि ये
0: ज्यादा
1: सही।
0: तैयारी के साथ
1: हाँ
0: उतरे
1: हाँ
0: आप। आपकी पसंद का कौन सा गाना अब हम सुनवाना चाहेंगे?
1: चिंगारी कोई भड़के
0: क्या बात है, आपकी पसंद।
1: जी
0: बिल्कुल सुनवाते हैं गाना।

0: आज अब बातचीत के दौरान जब बात गुल्लक की ना हो तो भाई इनकम्प्लीट है, बिल्कुल अधूरी है। गुल्लक जिससे बहुत ज्यादा प्यार मिला, संतोष मिश्रा का किरदार, अब मैं पूछना चाहूंगी कि कितना संतोष मिला आपको वो किरदार करके या वो सीरीज करके, कैसा लगता है, कैसा अनुभव है?
1: बहुत ज्यादा संतोष मिलता है मुझे संतोष मिश्रा का किरदार अदा करके।
0: कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना उसके नजदीक हैं, तैयारी कैसी है, सेट का माहौल कैसा है, क्योंकि हमने तो बहुत मजे से देखी है और आगे भी जो आएंगे उसके लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं, उसकी जो एपिसोड्स आएंगे।
1: जी, दो चीजें देखिए उसमें, शुरू में मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, अब तो वो हिस्सा हो गया है किरदार का,
0: घर घर का हिस्सा हो गया,
1: घर घर का हिस्सा हो गया, और मेरे लिए भी एज ए कैरेक्टर अब वो आसान हो गया क्योंकि 5 सीजन कर लिए हम लोगों ने। लेकिन शुरुआती दौर पे जो दुश्वारी पेश आई या जो चैलेंजिंग लगा मुझे उसमें, वो एक तो थी उसकी जबान, ये मेरी नॉर्मल जबान है,
0: बिल्कुल
1: है ना, बातचीत की जबान, लेकिन उसमें मुझे अपना उच्चारण बिगाड़ना पड़ा, स श ज ज, और मेरे नुक्ते सटीक लगते हैं, मेरी जाती जिंदगी में बिल्कुल सटीक नुक्ते लगते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होती, लेकिन इसमें वो नुक्ते हटाने थे, तो वो दुश्वारी आती थी हमेशा शुरू शुरू में। और उसके अलावा मिडिल क्लास की जिंदगी देखी है मैंने अपने इर्द गिर्द, लेकिन उसको महसूस नहीं किया था। एक लिहाज से कहूँ कि काफी समृद्ध परिवार से हूँ और किसी तरीके की कोई पैसे की कमी कभी मेरे माँ बाप ने नहीं रखी
0: जी,
1: लेकिन तरबियत जो थी ना वो ऐसी थी कि पैसे की अहमियत को समझना, वो उसका एहसास कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ गया था वो। तो वो एहसास जब आदमी ऊपर होता है ना, जब बहुत कुछ होता है और फिर उसके बाद जब नीचे आता है, तब समझ में आता है कि भाई एक्चुअल जिंदगी क्या है,
0: क्या है, बिल्कुल
1: क्या
0: चुनौतियां हैं,
1: क्या चुनौतियां हैं। तो उतार में वो उसका एहसास हुआ, खास तौर पर जब मैं खुद अपने पैरों पर आया, जब घर से पैसे लेने बंद किए, तब एक एक पाई की अहमियत समझ में आई।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए जो शुरुआती दौर मेरा बॉम्बे का रहा है, जो मुश्किल दिन रहे हैं, वो एहसास वो इमोशन वहां से आता है। और किरदार के अंदर कैसे क्या डाला गया, वो बहुत सारे मुख्तलिफ रिश्तेदार हों या दोस्तों के माँ बाप हों या मेरे अपने माँ बाप हों, वहां से उठाई हुई चीजें हैं। और एहसास तो जो है वो, जब आप एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि अगर आप हसास नहीं हैं तो अच्छे एक्टर मेरे ख्याल में नहीं हो पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बहुत ही जरूरी बेसिक चीज है।
1: जी जी, और आंख कान खुले रखना ताकि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसको देखते रहें आप और उसको जज्ब करते रहें, अपने अंदर बिठाते रहें, वो जखीरा बनता है आपका, कब क्या चीज की जरूरत पड़ जाएगी आप वहां से निकाल के अपने किरदार में डालते हैं।
0: और यहाँ पर मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने पिता का किरदार निभाया है, तो आपके पिता के साथ आपका कुछ ऐसे अनुभव या कुछ ऐसा साझा कर रहे, एक अलग तरह का रिश्ता, कुछ ऐसी इमोशनल बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख मिली है? क्योंकि ये जो कहानी है, धारावाहिक है गुल्लक, ये भी एक सीख देता है, तो ऐसी कोई सीख जो आप देना चाहते हैं या फिर जो आपको अपने पिता से मिली है?
1: बहुत ही इमोशनल है क्योंकि मेरे फादर से मेरा बहुत गहरा लगाव है। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि इंसान को कभी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात है, मैं घर गया हुआ था, बॉम्बे आने की तैयारी में था, सामान वामान पैक कर रहा था, तो ट्रेन का टाइम हो गया था, तो अब्बू आए कहने कि अरे जल्दी करो ट्रेन छूट जाएगी। और मेरे, क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था, अम्मी भी थी, पैक करवा रही थी, ये वो ये वो, ये रख लो वो रख लो अम्मी, तो कुछ

0: मुंह से मेरे ऐसे निकल गया कि अब्बू पगलवाई मत, मैं कुछ भूल जाऊंगा। तो पगलवाई मत, वो जो शब्द था ना,
1: बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए बात करते वक्त, वो कहीं ना कहीं सिखाता है।
0: तो मैं यही कहूंगा कि इज्जत से पेश आना चाहिए माँ बाप से हमेशा।
1: बिल्कुल।
0: और जितनी मोहब्बत आपको आपके माँ बाप दे सकते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो यही सीख है। और मैं यही कहूंगा कि माँ बाप आपकी तरबियत, आपकी करियर, आपके किरदार को बनाते हैं। और अच्छे माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों की ज़रूरत, उनकी एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं हर लिहाज से।
1: बिल्कुल। एक और आपने फिल्मों की बातें की, फिल्म एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपने किया, बीनीथ द सी ऑफ लाइट्स,
0: राइट?
1: उसके बारे में कुछ बताइए, वहाँ का माहौल अलग है, किस तरह से अलग था?
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए वहाँ पर ये बड़ा इंडिपेंडेंट फिल्म थी एक तरीके से, और जो तरीका है उनका शूट करने का वो बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही प्रिसाइज, जिसमें वेस्टेज ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल में बमुश्किल 25-30 लोगों का यूनिट रहा होगा। और बहुत शांति से, बहुत सुकून से काम हुआ। हर आदमी अब काम से काम रखता था और वक्त पर पहुंचता था, वक्त से काम होता था और वक्त पे ख़त्म भी हो जाता था
1: जी।
0: तो वो एक जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो वहाँ पर ज़्यादा दिखी मुझे। तो फ़र्क ये इतना सा है। और बेसिकली परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है
1: जी। और कोई, अभी हमने थिएटर की बात की, हमने एड्स की बात की, फिल्मों की बात की, और कौन सा रास्ता जहां पर अभी आपको जाना है कि ये भी ट्राई करना है, इस तरफ भी जाना है, और आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें?
0: कोई ऐसा, मतलब थिएटर वापस करना चाहूंगा मैं, कोई कमाल की चीज आई मेरे सामने। तो उसके अलावा किरदार बहुत सारे हैं हमारे समाज में भी और हमारी कहानियों में भी, जिनको मैं करना चाहूंगा, जो कि अब गुल्लक से बेहतर फादर तो मुझे नहीं लगता, फादर का रोल मुझे शायद मिल पाएगा। अगर कोई लिख पाए उससे बेहतर तो मैं जरूर करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ बाप के रोल तो मुझे नहीं करने हैं कि भाई फला के बाप है, कर लिए। मैं सैकड़ों मना कर चुका हूँ, मना करता रहूंगा उसको
1: जी।
0: लेकिन उससे अलग कलर कुछ हो, कुछ अलग जॉनर के किरदार हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मच्योर लव स्टोरी में करना जरूर चाहूंगा। तो हाँ, वो एक डेफिनेटली मेरे बकेट लिस्ट में है।
1: बिल्कुल। हम चाहेंगे कि जो चीज की ख्वाहिश आप कर रहे हैं वो जरूर आपको मिले। अभी क्या आने वाला है, किसका इंतजार हम करें?
0: अभी कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक फिल्में हैं। सूरज बड़जत्या साहब के साथ एक फिल्म है, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस किया है मैंने। और एक फिल्म जो कर रहा हूँ, जुगाड़ू नाम की एक फिल्म है, वो बावेजा फिल्म्स और टिप्स की है। और अभी बाकी जो वेब शोज में से तो कुछ एक तैयार हैं, लेकिन वो कब आएंगे मुझे नहीं मालूम, वो डेट्स अनाउंस होंगे तभी पता चलेगा
1: जी।
0: और कुछ एक इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं जो मैंने की हैं, एक अंग्रेजी में भी की है, तो वो हैं। दो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, एक अंग्रेजी फिल्म है इंडिपेंडेंट फिल्म, और बाकी कमर्शियल फिल्म्स भी हैं। और वेब शोज में से तो गुल्लक सीजन 6 आएगा अगले साल,
1: उसका इंतजार रहेगा हमें।
0: वो साल के आखिर में वो शूट करेंगे हम लोग, अभी लिखा जा रहा है वो
1: जी।
0: तो यही सब है। और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छे अच्छे किरदार आए, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह
1: हमें भी इंतजार रहेगा
0: जरूर।
1: आपका कोई पसंदीदा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं उस बारे में बताइए।
0: मेरे बचपन में एक गाना मैं ऐसे शौकिया तौर पे बहुत गाया करता था, बच्चन साहब मेरे काफी फेवरेट रहे हैं। तो वो फिल्म मैंने न जाने कितनी बार देखी है, अमर अकबर एंथनी
1: जी।
0: तो उसका अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा होती नो, अमर अकबर एंथनी,
1: बिल्कुल। सुनवाते हैं गीत।

0: बच्चन साहब की बात निकली है तो एक वाक्य मुझे याद आता है कि आप एक ही स्कूल से हैं बच्चन साहब, जहां से पढ़े हैं, उस बारे में कुछ बताइए। उसके बाद आपकी मुलाकात भी हुई है आपकी मुंबई में, तो वो एक इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है।
1: जी, बच्चन साहब शेरवुड कॉलेज नैनीताल से वो भी पढ़े हुए हैं और मैं भी।
0: जी
1: उनसे मुलाकात मेरी चीनी कम नाम की एक फिल्म थी जो मैंने की थी, उसमें हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और कमाल की बात है कि वो भूलते नहीं
0: बिल्कुल।
1: और

0: उसके बाद एक ऐड भी किया हमने साथ में और उन्होंने पहचान लिया, जबकि अलग गेटअप में था मैं। और फिर उसके बाद हमने एक फिल्म की थी गणपत, अभी जो आई थी कुछ साल पहले,
1: जी
0: उसमें वो भी थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं भूल भाल गए होंगे, लेकिन उन्होंने, उनका बड़प्पन है कि डायरेक्टर से बात हो रही होगी वो गणपत के सेट पर भी, तो तपाक से गले लगाया उन्होंने मुझे कि यू डूइंग वंडरफुल वर्क, सो प्राउड ऑफ यू। तो जाहिर है बच्चन साहब हैं, तो बच्चन साहब से जाहिर है एक, क्योंकि स्कूली नाता भी है और उनको आइडियलाइज भी किया है, उनकी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं,
1: जी
0: तो एक तरीके से बहुत बड़े आइडल है हमारे, उनकी तमाम फिल्में देखी हैं मैंने। और बच्चन साहब से मिलके हमेशा अच्छा लगता है। बच्चन साहब, जैसा कि मैंने कहा कि वो ऐसी शख्सियत हैं कि वो रूम में दाखिल होते हैं तो हर आदमी न चाह के भी खड़ा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और लेजेंड है वो, तो बच्चन साहब बहुत कमाल के इंसान भी हैं, तो उनसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है।
1: उसके अलावा शूटिंग के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुए होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी एक सीन है जहां पर आप जख्मी भी हो गए थे, एक किस्सा ऐसा कुछ था
0: जी,
1: वो बताना चाहेंगे। तो शूटिंग के दौरान ये जो चुनौतियां आती है
0: जी
1: कभी कभी मजेदार भी होती है,
0: जी जी
1: उस बारे में कुछ बताइए।
0: हाँ, वो चोट मुझे आई थी, दरअसल एक सीन था जिसमें एक ठेला सा खड़ा हुआ है, वो तीन पहिए के रिक्शे वो होते ना सामान रखने वाले, तो वो एक रखा हुआ था। तो कुछ बात हुई कि भाई इन दोनों रिक्शों के बीच में से निकल के जाना है, तो एक टेक हो गया। फिर उसके बाद वो रिक्शा वहां पर पड़ा हुआ, मैंने कहा यार मैं रिक्शे के ऊपर जाके और वहां से छलांग मार के निकलता हूँ। तो अनुराग ने कहा कि सर देख लीजिए मतलब, तो मैंने कहा हाँ यार करते हैं, मजा आएगा। तो एक टेक किया मैंने, तो कहता सर बढ़िया लग रहा है, एक और करते हैं। वो लालची डायरेक्टर है ना, उसको चीज अच्छी लगती है तो फिर वो आगे बढ़ता है,
1: एक और।
0: हाँ तो सर एक और करते हैं
1: जी
0: मतलब मुझे ऐसा मजा आ रहा है, कुछ एक और करते हैं। तो अगले वाले टेक में वो इधर उधर लोग पीछे पड़े हुए मेरा पीछा करने मारने के लिए, अब क्यों मुझे भी हौसला मिल गया तो मैंने छलांग और ऊंची लगा दी। और जब मैं लैंड किया, मैं चप्पल पहने हुए था, जब लैंड किया तो वो पसीने से पांव थोड़ा सा स्लिप हुआ और
1: फिसल गया
0: और मेरे एंकल जो है उसमें मोच आई तगड़ी, लेकिन मैंने वो शॉट कंप्लीट किया। ऐसा नहीं कि वहां मोच आई तो मैं वहीं बैठ गया, वो शॉट कंप्लीट किया और एक चढ़ान था ऊपर, टीला सा था, उस पर चढ़ के दूसरी तरफ कूदना था और वहां शॉट खत्म था। तो उस टीले पर चढ़ के मैं नीचे छलांग भी मार दी। फिर जब मैं वापस आ रहा था वहां से, तो उसने तो देख लिया था शॉट मॉनिटर में, आके मैं जब पूछा उसने कि भाई आई ओके, मैंने कहा उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बैठा नीचे, बैठते बैठते मैं बेहोश हो गया।
1: बेहोश हो गए
0: कुछ मेरे ख्याल एक मिनट के लिए बेहोश रहा हूँगा मैं, फिर होश आया तो करें सर उसने मुझे, फिर उसके बाद लिटाया वटाया तो पानी वानी जो कुछ भी है, फिर वो शॉट दिखाया उसने कि सर देखिए ऐसे हुआ था, ये वो जो आपका पाँव है ऐसे स्लिप हुआ चप्पल से। तो उसके बाद के सीन हमारे कुछ एक, क्योंकि चोट लग गई थी लोगों को शायद पता ना चले, लेकिन एक हल्का सा एक लिंप है।
1: अच्छा।
0: हाँ कुछ कुछ एक सीन में,
1: अब हम देखेंगे फिर से गौर से उसे।
0: और कुछ एक सीन में फिर नहीं रखा था मुझे, क्योंकि भाई चोट लगी हुई थी।
1: जी जी जी
0: तो मनोज भाई के साथ जो मोटरसाइकिल पे पीछे बम फेंक रहे हैं वो सब मुझे होना था, लेकिन चोट की वजह से वो नहीं कर पाया था। और उसके अलावा एक और किस्सा था जिसमें कि जीप में हम लोग पहलवान का पीछा कर रहे हैं मारने के लिए,
1: हाँ।
0: और वो ऐसे क्या कहते हैं सरिये निकले हैं और बांस वास निकला हुआ है दुकानों का घरों का,
1: बिल्कुल।
0: और जीप जा रही है और मैं बाहर निकल के ऊपर देखा, चीख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ उसको पहलवान को, और मुझे दिख रहा है कि ऐसे बांस और ये सब सलिये वगैरह निकले हुए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये मुझे लगेगा मेरा सर फटेगा या कुछ होगा, तो सामने दिख रहा है मुझे जैसे जीप जाती गई, वो इंस्टेंट जो दिमाग में आता है कि मैं फौरन जीप के अंदर घुसा वापस, और फिर जब वो गुजर गया फिर वापस आया, तो वो
1: वो एक रिफ्लेक्स,
0: हाँ रिफ्लेक्स एक्शन जो है उससे जान बची। लेकिन ये है कि वही है कि यू गॉट टू बी अवेयर एंड अलाइव टू द सिचुएशन, कि आप एकदम टू बी इन द मोमेंट, कि आपको जैसा जो आ रहा है उससे डील करिए रियल टाइम में,
1: बिल्कुल,
0: और एकदम रियल तरीके से, कि अगर एक्चुअली अगर होता तो यही करते ना आप,
1: बिल्कुल।
0: अब उसको शॉट रोक नहीं दिया, अरे अरे ये वहां से रोको यार भाई, नहीं आ रहा है तो ठीक है डील करो ना उससे,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वही है सही तरीके की एक्टिंग मुझे लगता है।
1: बिल्कुल, कोई एक तरह का मेथड आप फॉलो नहीं करते, जिस तरह से जो आ रहा है उस तरीके से।
0: बेसिकली देखिए मेरे

0: लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द है ना, जो स्क्रिप्ट है, वो बहुत कुछ बोलती है और डायलॉग्स बहुत कुछ देते हैं मुझे।
1: जी,
0: अब एक अच्छा एक्टर जो होता है डायलॉग्स के बीच में जो होता है ना, बगैर बोले बहुत सारी चीजें कन्वे करता है, तो न बोल के भी कन्वे करना, और एज एन एक्टर मुझे शब्द जो है, जो अल्फाज है, वो बहुत कुछ देते हैं अपने किरदार के बारे में और अपने रिस्पॉन्स के बारे में। तो मैं बहुत कुछ उनसे लेता हूँ। और जहां तक ताल्लुक है कि अलग अलग तरीके यूज करने का, तो वो जिस सीन में जो सही बैठता है उसको इस्तेमाल करता हूँ, और कोई एक मेथड नहीं है कि ये तरीके से ही मैं चलता हूँ।
1: जी,
0: कुछ एक तरीके होते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटरनल काम करना पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: तो वो मैं दुनिया को नहीं बताया, डायरेक्टर को नहीं बताया कि मेरी मेरी तैयारी क्या है, और उसको पता करने की जरूरत भी नहीं है।
1: जी,
0: और कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नली आप काम करते हैं, कि आप अपनी जबान पर या आप अपने बॉडी लैंग्वेज में या आप जो पहनावा है आपका, उससे आपकी चाल बदल जाती है।
1: आजकल वर्कशॉप्स भी होते हैं फिल्मों से पहले या सीरीज से पहले, तो गुल्लक की तैयारी के लिए भी ऐसा कुछ वर्कशॉप हुआ?
0: जी, हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशन होते हैं, और पहले सीजन के पहले कुछ एक चीजें, कुछ एक एक होता ना कि केमिस्ट्री बनाने के लिए
1: जी,
0: कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी किए हमने, क्योंकि नए नए थे सारे। और चलिए गीतांजलि और मैं तो पुराने एक्टर्स हैं, किया हुआ है काम, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं अमन और अनु, इनके साथ कैसे केमिस्ट्री बिठानी है, उस लिहाज से तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अपने आप एक दूसरे को समझना
1: जी,
0: क्योंकि एक परिवार है, तो अच्छे से समझना और अच्छे से वो केमिस्ट्री बनाना, वो उस चीज की वर्कशॉप जो पहले सीजन के पहले हुई थी
1: जी,
0: वो वहीं से वो सुर बैठ गया।
1: हुँ.
0: और फिर शूट करते टाइम तो और ज्यादा बैठ गया, फिर उसके बाद तो फिर दौड़ने लगा।
1: बिल्कुल, दौड़ने लगा और हम देख ही रहे हैं कैसे दौड़ रहा है। यहाँ पर एक गीत आपकी पसंद का।

0: गुल्लक में कितना स्क्रिप्ट का योगदान है, कितना इम्प्रोवाइजेशन है?
1: गुल्लक में स्क्रिप्ट, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा योगदान स्क्रिप्ट का ही है। अगर वो बुनियाद हमें नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर सकते,
0: जी
1: तो स्क्रिप्ट का तो बहुत ज्यादा योगदान है। और जहां तक पर्सनल टचेस की बात है, तो कुछ एक चीजें हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं,
0: जी
1: कुछ एक डायलॉग्स भी इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ एक मोमेंट्स भी हम क्रिएट करते हैं, तो वो एक मिली जुली एफर्ट है। लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पे स्क्रिप्ट निहायत ही अच्छी होती है गुल्लक की। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ही भी, मैं ये तो नहीं कहूँ इसी वजह से ही, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो स्क्रिप्ट को जाता है गुल्लक के कामयाबी में।
0: और गुल्लक ने घर घर में जो आपको पहचान बनाई है आपकी, उसके बाद ऐसा कुछ फैन मोमेंट जो आपको याद आता है, संतोष मिश्रा के नाम पर आपको पहचाना गया कहीं, इस तरह का
1: जी
0: कुछ फैन मोमेंट?
1: हाँ, देखिए बहुत सारा काम रहा है मेरा थिएटर में। जो पहली पहचान थिएटर से मिली, लेकिन
0: जी
1: वो आपको मास पहचान नहीं मिलती है बॉम्बे के बाहर या थिएटर सर्किट के बाहर। कुछ एक फिल्में आई उसके बाद जो बहुत मकबूल हुई, लोग उससे याद करते थे, इज्जत भी करते थे, और काम के लिहाज से कि भाई ये एक मजबूत एक्टर है, वो एक इमेज बन गई थी। लेकिन गुल्लक से मुझे जो फर्क जो महसूस होता है वो है पॉपुलैरिटी के अलावा एक जो मोहब्बत मिलती है ना, और जो इज्जत मिलती है, और जो अपनाइयत मिलती है, और दिल से
0: बिल्कुल
1: बनावटी नहीं, वो गुल्लक ने जरूर दिया है मुझे। और इसको लेके जो भी मिलता है बड़ी मोहब्बत से मिलता है, और वो ऐसा मिलता है जैसे संतोष मिश्रा उनके अपने हों,
0: बिल्कुल
1: चाहे वो भाई के तौर पर मिले, चाहे बेटे के तौर पर मिले, चाहे बाप के तौर पे मिले। बहुत सारे बुजुर्गवार हैं जो देख के मिलते हैं, या कभी ऐसा तो कहते हैं यार किरदार हो तो ऐसा हो।
0: एक एयरपोर्ट का किस्सा आपने साझा किया था, उस बारे में कुछ बताएं।
1: हाँ, वो भी देखिए ये बेइंतहाई मोहब्बत की बात है कि एयरपोर्ट पे मैं था और एक शख्स सामने से आए वो, और मेरे पांव छूने लगे, तो मैंने उनको उठाया। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा मत करिए आप, तो वो गले लग गए, और गले लगे रहे काफी देर तक। और फिर उसके बाद जैसे ही अलग हुए, वो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि थैंक यू सर, और उनकी आंखें नम थी, और बस थैंक यू कह के चले गए।
0: मुझे लगता है ये अवार्ड से भी कहीं गुना
1: जी
0: ज्यादा
1: जी जी
0: ये नवाजा जाता है इस प्यार
1: जी
0: से।
1: जी जी और कमाल की चीज है वो कभी ऐसा एहसास मुझे नहीं हुआ कि यार ये तो एक एकदम स्ट्रेंजर, एक अजनबी शख्स आपके गले लग जाए और फिर उसके बाद इतना इमोशनल हो जाए और कुछ बोले नहीं, सिर्फ अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह के चला गया वो।
0: बिल्कुल। और एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि संतोष मिश्रा स्क्रीन पर और आप में कितनी कितना मिलता जुलता है, आप घर पे कैसे हैं?
1: देखिए मैं मस्तीखोर तो हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये राइटर्स भी जो हैं मुझे देख के काफी कुछ लिखते हैं कि किरदार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है।
0: जी
1: लेकिन संतोष मिश्रा और जमील खान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो बर्ताव है संतोष मिश्रा का,
0: जी
1: बहुत ही सेंसिटिव आदमी हूं मैं, तो मैं हर इंसान को लेके कोशिश करता हूं कि उसको समझूं, जटिल न रहूं इस बात का कि मैं सोच रहा हूं या समझ रहा हूं वही सही है। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का नजरिया, और दूसरे की जगह खड़े होके या दूसरे की जगह अपने आप को डाल के रख के इस
0: उस
1: बात को समझना कि
0: दृष्टिकोण से देखना।
1: हाँ, कि ये जो सोच रहा है या कह रहा है या कह रही है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: और मस्तीखोरी तो भरी है मेरे अंदर, मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ, और मैं सीरियस कम रहता हूँ लाइफ में, और जिंदगी को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली स्ट्रेस नहीं लेता मैं, और स्ट्रेस देता भी नहीं मैं। बहुत सादगी से और बहुत ईमानदारी से, और इस तरीके से काम भी करता हूं कि किसी को मेरी

0: वजह से कोई दुश्वारी पेश ना आए,
1: बिल्कुल
0: कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो, या कोई कोई एज नहीं रहते मेरे कि कोई होता है ना कि भाई एक एरोगेंस हो या कोई ऐसा, भाई कम में भी काम हो जाता है, इतना
1: जी
0: कुछ करने की जरूरत नहीं है।
1: जी
0: स्टारपना नहीं दिखाता मैं कभी भी, सादगी से।
1: चलते चलते हमारे श्रोताओं को प्यार भरा संदेश जो आप देना चाहते हैं।
0: यही कहूंगा कि भाई दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जितना अमन से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो दुनिया हो, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहारा बन के, कभी छोटा भाई बन के तो कभी बड़ा भाई बन के, एक दूसरे को हौसला देते हुए आगे बढ़ें,
1: जी
0: इसी में हम सबकी भलाई है।
1: बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सेलुलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8

मीरा भाई का ये मीरा भाई का लिखा ये पारंपरिक भजन आप सुन रहे थे सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ उषा मंगेशकर की आवाज में फागुन फिल्म से। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बेला सिंधे की आवाज में आप सुन रहे थे जोधा अकबर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा जावेद अख्तर ने, ए आर रहमान का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: हनुमान अंश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, साधु एस तिवारी की आवाज, उन्हीं के बोल और उन्हीं का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: इला अरुण और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे वेल डन अब्बा फिल्म का गीत, इला अरुण और डैनियल जॉर्ज के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।
1: रूपवती कमलावती भानुमती।

0: संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती मैसेज लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग।

आपकी पसंद इस एल्बम से मनहर उदास की आवाज में आप सुन रहे थे शेख आदम अबूवाला की लिखी गजल, अर्जन दासवानी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

लकी अली की आवाज में आप सुन रहे थे सिफर। इस एल्बम से गीत सईद असलम ने से लिखा, लकी अली का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कव्वाली, कल्लन खान कव्वाली और पार्टी की आवाज में।

अदनान सामी और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे कौसर मुनीर के बोल, प्रीतम का संगीत, फिल्म बजरंगी भाईजान से ये कव्वाली आपने सुनी। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग, और अब आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में निदा फासली के बोल, एमएम क्रीम का संगीत है, सुर फिल्म से सुनिए ये गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए विकास आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस द्रोम्बोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संरक्षण समझौते के लिए चल रही वार्ताओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्वाव शिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरी मैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इन कंपनियों ने नकद प्रबंधन व्यवस्था एजेंटों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के माध्यम से सट्टेबाजी की रकम को नकदी में परिवर्तित किया। इन्होंने अवैध प्रेषण के माध्यम से देश से बाहर रकम भेजने में मदद की है। प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित है। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कल हुई इस वर्चुअल बैठक में व्यापार को सुगम बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
3: ए

लता मंगेशकर की आवाज में अपना देश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और आज है विश्व नारियल दिवस, तो इस मौके पर यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं समुद्र नदी के किनारों पर फिल्माए कुछ गीत या उनसे संबंधित कुछ गीत जिसमें नावों का जिक्र हो।

मुकेश और साथियों की आवाज में उपहार फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल, और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अंतराल के बाद।

0: बंधे हाथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज मजरूह सुल्तानपुरी की बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज।
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज
2: कहीं बेख्याल
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज सागर तट और नदी के किनारों की बातें हो रही हैं। तो सुनते हैं गीत।

0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविक भारती। मेरा
1: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: रिश्ता कागज का फिल्म से गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर

आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सागर। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज सागर, सागर तट की बातें और मांझी नैया की बातें भी हो रही हैं, उन्हीं से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कहो ना प्यार है

कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, सावन कुमार टाक के बोल और राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, यादों की महफिल।

0: साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे विश्वात्मा फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और वीजू शाह ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम में विद भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती मैसेज लेने की।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्लू इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल के साथ साथियों की आवाजें मयूरपुरी के बोल ए आर रहमान का संगीत
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना किया करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज हम इस कार्यक्रम में एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसमें छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत सुनवाए जाते हैं इस कार्यक्रम में। तो आज की इबारत आपको बता दें, लाख कहे कोई धन को माया, ये तो सबके मन को भाया, रुपया हो या पैसा बाबू, इसके दम पर चलता जादू। कोई ये कहे कि उसे धन की चाह नहीं तो भला ये बात कोई मानेगा? पैसों और कमाई के मामले में तो सभी यही कहते हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। वैसे तो कुछ ये भी कहते हैं कि पैसों की बारिश हो जाए और हम उसमें न सिर्फ भीगें बल्कि कुछ भर भी लाएं। वैसे पैसे कमाने से ज्यादा उसको बचाना जरूरी लगता है और ये काम बड़ा मुश्किल है। कुछ तो पाई पाई बचाते हैं तो कुछ अपनी कमाई के साथ साथ दूसरों की कमाई भी लुटाते हैं। कुछ इस कैश के लिए पसीना बहाते हैं तो कुछ बैठे बैठे ही सब कुछ पा जाते हैं। पैसों के मामले में क्या है आपकी राय? सोना चांदी और पैसे मन को लुभाएं या खुश हो जाते हैं अगर आपको मिल जाए एक कप चाय? तो बताइए कौन से हो सकते हैं आज के शब्द और इन पर कौन से गीत हम सुनवाएंगे। और आपने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं, बहुत से गीतों के बारे में भी आपने लिख भेजा है, तो देखते हैं आपके और हमारे गीतों की लिस्ट कितनी मैच करती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के दौर में पैसा है तो सब कुछ है, पैसों से जिंदगी चलती है, लेकिन एक बात है, सब कुछ पैसे ही नहीं होते हैं, इज्जत भी बहुत बड़ी दौलत होती है। टन टन की सुनो झनकार, ये गीत इन्होंने लिखा है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो लिखी हैं, लेकिन ये सारी बातें तो हम करेंगे, उससे पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का पहला गीत और आपको ये बताना है कि इसमें आवाजें किसकी हैं और उसके बाद कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे।

काला बाजार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यही हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मनुष्य के सबसे कमजोर नब्ज को टटोलती और कुरेदती इबारत है, मोह माया में तृष्णाग्रस्त जीवन काल, आर्थिक उपार्जन और संबलता प्राप्त में व्यतीत हो जाते हैं, उत्तरदायित्व बोझ तले मानसिक अवस्था, पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था में जरूरत और व्यसन के माध्यम आर्थिक मेरुदंड को सुधारने में ही गुजरता है। हालांकि इनका ये कहना है कि हम अगर इनकी बात को संक्षेप में कहें तो ये कहना चाहते हैं कि धन उपार्जन में ही इंसान का जीवन आधा से ज्यादा व्यतीत होता है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अच्छी बात धन की ही की गई है आज, बहुत अच्छी बात, उसे केवल रुपए पैसे सोने चांदी जैसे मूल्यवान धातुओं से ही आंका गया है, जबकि एक सर्वाधिक लोकप्रिय ही नहीं अपितु मूल्यवान धन कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से गणना इसकी नहीं की है, वो धन है संतोष धन, जो वैष्णव परंपरा का द्योतक है। फिर इस

दृष्टिकोण से ही तो कवियों ने गाया कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान रे, जब आवे संतोष धन बाबा सब धन धूरी समान रे। तो ये संतोष धन हम सब में समाये, ऐसे ही प्रयासों की अपेक्षा मनुष्य से की जाती रही, किंतु ऋण लेकर घी पीते रहने की आदत के चलते हम अपने यायावर रूप को भूल चारवाक दर्शन के अनुयायी हो चले हैं। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से भले ही धन को माया या मिथ्या कहा जाए, लेकिन सांसारिक धरातल पर हर व्यक्ति की अनिवार्य जरूरत और आकर्षण का केंद्र है धन। धन का प्रभाव सार्वभौमिक है और जीवन की अधिकांश व्यवस्थाएं इसी की शक्ति पर टिकी है। पैसा कमाना जितना कठिन है उससे कहीं अधिक या कठिन है उसे संभालना और बचाना। तो बिल्कुल सही बात आपने कही कि पैसे को कमाना फिर भी एक बार आसान हो सकता है, लेकिन उसे बचाना और उचित तरह से खर्च करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हैं उचित तरह से पैसों को खर्च करने के लिए, हमें बताइए। और साथ ही ये बताइए कि क्या आप संतोषी जीव हैं या आपको हमेशा लगता है कि अभी तो कुछ पैसे कम हैं और कमाई करने की जरूरत है। वहीं ये भी बताइए कि पहली बार आपको पैसे की कीमत कब समझ में आई थी और पहली कमाई क्या थी। ये सारी बातें तो करेंगे, लेकिन आपको पहले हम सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे आपको बताना है किस फिल्म का है।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, जो जो घर चले।
1: नहीं मुझे अभी देखना है।
0: देखना है?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

दुश्मन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे साथी कह रहे हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, हालांकि इस गीत के बारे में देखते हैं ये गीत आपकी और हमारी लिस्ट में मैच करता है या नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि धन तो माया ही है जो हमारे ध्यान के पथ से भटकाते हुए संसार में बांधे रखने का कार्य करते हुए अपने गुणित अनुपात में बढ़ता ही जाता है। प्रक्रिया धन के वास्तविक स्वरूप के कारण ही संभव है, लेकिन अब देखना ये होता है कि हम धन के इस गुणित अनुपात को धन या ध्यान के क्षेत्र में विकसित कर रहे हैं क्या। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि

बात सोचना, वहां हम ये सोच सकते हैं कि एक अलग तरह का लालच अपने मन में ना लाएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अलग अलग बातें हमारे साथी हमें बता रहे हैं, और हमारे साथियों का कहना है कि आज की बात, बिना मनी के यानी कि बिना धन के तो कोई जीवन नहीं है, लेकिन सब चीजों को एक संतुलन बनाए रखा जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। और इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ये विश्व नारियल दिवस के मौके पर ये तो नारियल पानी पी रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन संपत्ति को ध्यान में रखकर जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो रिश्ते ज्यादा टिक नहीं पाते, जब तक दमड़ी तब तक ही है संगी साथी। तो इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम तो बस इतना ही कहेंगे, पैसा इतना जरूर हो कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, कभी किसी का काम भी आ सके, ज्यादा की चाहना रखी ही नहीं, ना ही फिर भी परमात्मा ने सब कुछ दिया है। असली धन दौलत तो परिवार होता है, दोस्त होते हैं और कुछ अपनों का साथ होता है, और सबसे बड़ा ईश्वर का हाथ, गुरु का हाथ हमारे सिर पर होता है, और एक सच्चा साथी विविध भारती। अब देखो ना, इसमें कोई बहुत दिन तक नहीं आता तो उसको याद करते हैं, और अगर नहीं सुन पाते तो बेचैनी से लगती है, पर आज कब से लग रहा था, हमने इबारत ही नहीं देखी, तो ये भी किसी दौलत से कम नहीं। वाकई ये दौलत भी, आप लोगों का जो ये प्यार है वो तो किसी भी दौलत से अनमोल है हमारे लिए, और आपका ये प्यार हमें मिलता ही रहता है, विविध भारती को मिलता रहता है पूरे वक्त। हमारे बहुत से साथी हैं वो अलग अलग बातें लिख रहे हैं, और हमारे एक साथी ने उस गीत को जो शुरुआत में हमने गीत सुनवाया था काला बाजार का, उसमें कहा कि गीता दत्त की आवाज तो ने पहचान आ रही है, दूसरी आवाज पहचान नहीं आ रही, पर हमारे दूसरे साथियों ने तो ये जवाब दे दिया था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तिजोरियां तो भर गई पर रूह भूखी रह गई, सच्ची खुशी तो मन के भीतर ही कहीं सोई रह गई, मन भागता है उम्र भर जिस मृग तृष्णा के पीछे, वहां सुख नहीं बस इच्छाओं का एक अंतहीन सिसकन है। तो बातें तो बड़ी हो गई, लेकिन कभी कभी तो ऐसा मन में आता है कि लॉटरी लग जाए हमारी और ढेर सारे पैसे एक साथ हमारे पास आ जाएं। क्या आपको भी ऐसा लगता है, हमें बताइए, और क्या कभी आपको इस तरह से कोई धन मिला जब आपको लगा कि भाई ये तो बोनस हो गया, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था, हमें बताइए। और बताइए कि किस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

चोरी चोरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और हम आपसे ये पूछ रहे थे कि क्या आपकी कभी लॉटरी लगी, तो ऐसा कोई कमेंट अब तक तो हमारे सामने नहीं आया। और अगर कभी लॉटरी लगी या कभी ऐसा लगा कि किसी तरह से बहुत सारे पैसे मिल जाएं, अगर मिल जाएं तो क्या करेंगे आप, ये भी हमें बताइएगा। ये तो ठीक है कि पैसों पर लालच नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन सोचने में क्या जाता है। अगर आप सोचें कि आपके हाथ लग जाए ढेर सारा पैसा, बहुत सारा नहीं, लाखों ना सही, हजारों में ही लग जाए मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप? जितना आप चाहते हैं कुछ अगर मिल जाए तो क्या करेंगे आप, हमें बताइएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, एक चीज मिलती है तो दूसरी की चाह जाग जाती है, कभी कभी थोड़ा सा धन, थोड़ा सा अपनापन और ढेर सारा संतोष ही जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। लेकिन धन दौलत के बिना मान सम्मान सुख सुविधा नहीं होती है, इसलिए धन दौलत बहुत कमाना चाहिए, दौलत के पीछे इतना भी नहीं दौड़ना चाहिए कि खुशियों को दांव पर लगाना पड़े, दोनों का संतुलन जरूरी है। मन में हमेशा तो यही गीत चलते रहता है कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, यानी कि ये एक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कि अगर हमें सोचें कि नहीं धन बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमें कमाने की इस तरह से जरूरत नहीं है, जो भी मिल रहा है छोटा मोटा उस पर हम संतोष करें, तो ये भी एक मुश्किल घड़ी पैदा कर सकता है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार तो कमाने की कोशिश करना ही चाहिए और साथ ही साथ कुछ बचत भी करें, और ऐसा ना करें कि हर वक्त धन के पीछे भागें, लेकिन कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है, जो हमारे साथी ने कहा। हमारे एक साथी कह रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपना कमेंट लिखा है जिसे हम हिंदी में पढ़कर आपको सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को अपने अंदर बचत करने की आदत डालनी चाहिए। मेरे भाई, मेरे माता पिता ने मुझे एक, हमें एक गुल्लक लाकर दिया था दोनों के लिए, और जो भी पैसे हमें मिलते थे गिफ्ट में, जो भी लोग आते थे या त्योहारों के समय जो भी पैसे मिला करते थे, उसे हम इसमें जमा करते थे और कुछ समय के बाद उसे खोलते थे। वो जब भी खोलते थे तो हम देखते थे कि उसका क्या परिणाम होता है। तो जब भी जो बचत का परिणाम देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है और ऐसा लगता है कि और भी बचाना चाहिए। वहीं हमारे का साथी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी अमीरी बैंक खातों में जमा अंकों से नहीं, बल्कि मन के संतोष से तय होती है। संत कबीरदास जी का ये दोहा केवल दो पंक्तियां नहीं बल्कि इंसानियत, करुणा और मर्यादा का सबसे खूबसूरत आईना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, साधु ना भूखा जाए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चाणक्य की नीति के अनुसार कह सकते हैं कि पुस्तकस्थात या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या ना तद्धनम। सरल हिंदी अर्थ है, विद्या यदि केवल पुस्तकों में रखी रहे यानी कंठस्थ ना हो तो उपयोग में ना लाई जाए, और धन यदि दूसरों के हाथों में चला जाए तो जरूरत पड़ने पर ना वो विद्या किसी काम की रहती है ना ही वो धन। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसे की कमी के कारण मुझे कॉलेज पढ़ाई के दौरान ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। मुझे याद है पहले ट्यूशन 1978 में 10 रुपए माह में शुरू कर दिया था। उच्च शिक्षा तो नहीं पा सका किंतु बच्चों को उच्च शिक्षित कर इंजीनियर बनाकर वो सपना पूरा किया। तो कई बार हमें इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, पर यकीन मानिए जब हम

से अपने पैसे खुद कमाते हैं, अपनी पढ़ाई खुद करते हैं, तो जो आत्मविश्वास हमारे अंदर आता है वो एक अलग किस्म का आत्मविश्वास होता है जो सभी के पास नहीं होता। तो अब हमारे साथी ने चाय पर भी एक कहानी लिख भेजी है, लेकिन फिलहाल हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। और इसको किस फिल्म से हमने लिया ये बताइएगा, क्योंकि जिस फिल्म के का जो नाम है उस पर भी बात करेंगे हम इस गीत के बाद।

कर्ज इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाज में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और हमने कहा था कि इस फिल्म के नाम से कुछ तो बात करनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब पैसे कम होते हैं और जरूरत नहीं भी होती है तो भी बहुत से लोगों की आदत होती है कि कर्ज लेकर उधार लेकर अपने मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जीवन जीते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। उन्हें परवाह नहीं होती कि जितने पैसे हैं उसके हिसाब से वो खर्च करें। तो उधार लेने की आदत तो बड़ी ही खतरनाक होती है ऐसा कहा जाता है। और

और देने की आदत में भी कई बार हम फंस जाते हैं, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो तो आप हमें बता सकते हैं कि कर्ज आपने दिया हो और उसे वसूलना बड़ा मुश्किल हुआ हो, या आप कभी खुद कर्ज लिए हो और आपको देना मुश्किल पड़ा हो। वैसे हमारे एक साथी ने चाय की कहानी लिखी है कि एक महाशय रोज अपने

0: भाभी जी मुझे भी भीतर से बुलाकर कुछ बातें कर लीजिए, तो बातें पूछ लीजिए। तो वो शर्मा गई और उन्हें पता चल गया कि भाई इन्हें तो चाय पिलानी ही पड़ेगी। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है, हमारे साथी कहने कि पैसा सब कुछ नहीं है मगर पैसा बहुत कुछ है। वहीं का साथी का कहना है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही आशा इसी आशा से अपने मन को संतुष्ट कर लेता हूं, क्योंकि धन से तो कभी मन संतुष्ट नहीं होता। जितना धन होता होगा उतनी बेचैनी होती है। सुकून उसी में है जो उसके पास है, उसमें ही उसे खुश रहना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना ही सुकून का सबसे बड़ा धन माना जाता है। तो वाकई एक सुकून का धन तो एक अलग ही चीज होती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पैसा कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो और दिक्कत, बस मन में संतुष्टि होनी चाहिए और कोई अंत नहीं है इस चीज का, बस खुशी भरा अपनों का साथ होना चाहिए। और एक साथी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से भले ही धन को माया या मिथ्या कहा जाए, लेकिन सांसारिक धरातल पर ये बहुत जरूरी है। मन मैं तो संतोषी लेडी हूँ, ऐसा हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पैसे आज के टाइम पर बहुत जरूरी हैं। हम तो पूरी बचत करते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत होती है वहाँ खर्च करते हैं, पैसा कमाना मुश्किल भी है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि महमूद जी की फिल्म सबसे बड़ा रुपया आई थी, उसमें यही दिखाया गया था कि पैसे की कीमत क्या होती है। विलेन का रोल महमूद जी ने जरूर किया, लेकिन एक सबक देने का प्रयास किया है। और एक साथी कहते हैं कि धन बढ़ाने के ऊपर मेरी अपनी निजी राय ये है कि धन हर कोई बचा सकता है, लेकिन रिश्ते बचाने बचाना बहुत बड़ी बात होती है। धन आ जाएगा, कल चला जाएगा, लेकिन रिश्ते आपके हमेशा आपका साथ देंगे और आपके साथ रहेंगे। आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। धन से आप बहुत कुछ ले सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन धन से आप सब कुछ नहीं ले सकते। रिश्ते जिसके बच्चे हैं अच्छे हैं वही सबसे बड़ा बचत है, वही सबसे बड़ा धन है। और एक और साथी कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे की अहमियत सब समझ में आती है। जब कोई बीमार होता है तब पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, या कहें कि जब पैसा होता है तो इलाज के लिए हम पानी की तरह पैसे बहा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बड़ी गंभीर बातें हो गई। तो कुछ एक बात ऐसी करते हैं जो काफी दिनों से की नहीं, यानी कि आपको सुनवाते हैं एक गीत का शुरुआती अंश। आपको पहचानना है गीत, तो पहले ध्यान से सुनिए ये अंश।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या।
0: तो आपको ये बताना है कि किस गीत का शुरुआती अंश है ये, और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि किस फिल्म का है।

रुपया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी ना कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के कोठे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया।

मेरी दास, नागनी तुझको छुएगी न धरती ही देगी। अब ये है मेरे भाई, ये खुदाओं का घर, मेरी दौलत ने बनाया तो हुए खुश।

0: सबसे बड़ा रुपया फिल्म का गीत आपने सुना महमूद और साथियों के आवाज में और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो गीत हमने शुरुआती अंश सुनवाया था आपने बिल्कुल सही पहचाना, लावारिस फिल्म का गीत काहे पैसे पे इतना गुरूर करी है। ये गीत तो आपको सुनवाएंगे लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि तिजोरियां तो भर गई पर रूह भूखी रह गई और ये आगे की बातें तो हमने पढ़ ली है। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। और एक और साथी का कहना है कि वाकई दोस्तों पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। और हमारे एक और साथी का कहना है क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि मुझे रोड पे 15,000 रुपये मिला था एक पर्स में, मैं उसे मोबाइल नंबर खोज कर दिया, जब मैंने फ़ोन किया तो वो मुझे अपशब्द कह रहे थे लेकिन जब पैसे की बात की तो भाई बाप कहने लगे। तो यानी उनकी पूछ उन्होंने की अगर उनके पास पैसे थे और पैसे गिरने पर वो बड़े परेशान थे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पैसा दोस्ती प्यार और खुशियां नहीं खरीद सकता लेकिन ये वो चीज़ें खरीद सकता है जिससे हमें खुशी मिल सकती है। और इसका पैसे को बचाने के लिए हमें मतलब सीक्रेट इज़ टू आइडेंटिफाई दोज थिंग, तो हमें का ये सीक्रेट है कि हम उन चीज़ों की पहचान करें। और कुछ चीज़ें तो हमें फ्री में भी मिल जाती हैं जैसे कि लिसनिंग टू एयर विविध भारती, ऐसा इनका कहना है। अंग्रेजी में इन्होंने अपना कमेंट लिखा जैसे हमने हिंदी में सुनाया और विविध भारती को सुनना तो फ्री में हो जाता है ऐसा इनका कहना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस तरह से सुनते हैं, हालांकि इंटरनेट पैक तो लगता ही होगा इसके लिए लेकिन फिर भी आपके लिए जो ये मनोरंजन का खजाना है हम बिल्कुल मुफ्त में लाना चाहते हैं और लाते भी हैं। और आप भी हमसे जुड़ते हैं उसी मित्रता से अपनत्व से जो कि हमारे लिए अनमोल पूंजी है जो हमें मिल जाती है मुफ्त में ही, लेकिन आप सभी हमसे जुड़े हैं ये बड़ी अच्छी बात है। पर लावारिस फिल्म का गीत क्यों ना सुने इस वक्त, सुनते हैं और आपको ये बताना है कि संगीत किसका है इस गीत में।
1: चार पैसे क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा वो खुदा ही जाने अब होगा

लावारिस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया इस गीत को, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम लोग जब छोटे थे तब मेले में और भी सामान के साथ मिट्टी के गुल्लक लाते थे और समय समय पर मिलने वाले पैसे उसमें डाल देते थे। कुछ समय बाद तीज त्योहार पर खोल कर उन पैसों से मनचाही चीजें खरीद लेते थे। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे की पावर कोरोना काल में सबने देख ली, पैसा जरूरी नहीं स्वास्थ्य जरूरी है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मर जाने के बाद कोई रुपया पैसा साथ लेकर नहीं जाता, बात तो 16 आने सच है मगर जरूरी तो नहीं, जरूरी तो है पर दिल को मुस्कुराने की वजह सिर्फ वही दे ये मुमकिन नहीं। सिक्कों की खनक जेब को भारी तो करती है लेकिन आत्मा को खाली नहीं करती, वही हमारे आत्मा की खाली जगह को नहीं भरती, ऐसा कह रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुबह की चाय के लिए दूध चाय पत्ती शक्कर रोज कमा कर रोज दुकान से लाते थे, उसके बाद चाय बनती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितना भी हो सके कर्जा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा कम खाएं पर उधार नहीं लेना चाहिए, फालतू के खर्चे ना करें, हमारा ये मानना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आजकल तो ये सिस्टम चल रहा है कि चीजें पहले ले लो और धीरे धीरे करके पैसे चुकाते रहो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई लॉटरी तो छोड़िए, मुझे कभी रास्ते में पड़ा रुपया भी नहीं मिला, मुफ्त का पैसा मेरे पास कभी टिका ही नहीं। इस संबंध में मेरा अनुभव हास्यास्पद रहा है। एक बार हम झांसी से ग्वालियर आए तो वहां सासू माँ ने 100 रुपए दिए और मौसी सास ने भी 100 रुपए दिए। वहां से हमें आगरा जाना था, देर हो रही थी,

ले लिए, लेकिन सुपरफास्ट की टिकट खिड़की से उठाना भूल गया। ट्रेन जैसे ही आगरा पहुंची तभी टिकट चेकर आ गया। टिकट तो ठीक थे पर सुपरफास्ट के सप्लीमेंट्री टिकट न होने के कारण 220 रुपए पेनल्टी देनी पड़ी। इस तरह से मुफ्त में मिले नेक के 200 रुपए ग्वालियर से आगरा 2 घंटे भी नहीं टिके। भाई ये तो बड़ी ही अचंभत करने वाली बात है कि आपके पास इतनी जल्दी जो भी पैसे ऐसे मिलते हैं वो यूं ही उड़ जाते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे पास यदि लाखों रुपए आ जाए, ये हमने ही पूछा था कि भाई अगर आपके पास लाखों रुपए आ जाए, लाखों तो नहीं कहा था कि जितने आपको मर्जी है उतने पैसे अगर आ जाएं तो आप क्या करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि अगर लाखों रुपए आ जाएं तो सबसे पहले आलिशान घर बनवाऊंगा, उसके बाद एक लग्जरी कार खरीदूंगा, बस दिन भर इधर उधर घूमूंगा, जो दुखे आ रहे हैं उनको थोड़ी मदद दूंगा। जिस गांव में यदि पानी की व्यवस्था नहीं होगी उस गांव में सबसे पहले पानी की टंकी और पानी की व्यवस्था करूंगा, जिस गांव में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही उस गांव में एक स्कूल बनवाऊंगा, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मान सम्मान की बात निराली, खाली जेब तो दुनिया खाली। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन बचाना अच्छा है लेकिन सबसे अच्छी बचत है अपने पूरे जीवन में कितने रिश्ते आप बचा पाए, अगर अपने रिश्ते ज्यादा बचा पाए तो वही सबसे बड़ी बचत है। धन तो आएगा चला जाएगा लेकिन जो अपने रिश्ते लोगों की भावनाएं बची वही सबसे बड़ी बचत है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसा कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो दिक्कत, मन में संतुष्टि होनी चाहिए। एक और साथी कह रहे हैं कि जब वो काम करते थे तब उन्होंने, इनका कमेंट अंग्रेजी में है, हम हिंदी में पढ़कर सुना रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब वो काम करते थे तो उन्होंने कुछ पैसे इस तरह से बचत कर दिए थे, इन्वेस्ट कर दिए थे किसी स्कीम में और उसके बाद वो उसे भूल गए और अपने काम में बिजी रहते थे तो भूल गए, और जब वो रिटायर हुए तो उन्हें एक लेटर आया और उसमें लिखा था कि कुछ अमाउंट पेंडिंग है उनके लिए, और जब उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज उसकी निभा दी तो उन्हें पेपर वर्क करने के लिए बुलाया गया और पेपर वर्क के बाद उन्हें जो पैसे मिले वो 10 गुना ज्यादा थे, जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे उससे 10 गुना ज्यादा थे, और इन्हें उस वक्त लगा कि उनकी तो लॉटरी लग गई। तो भाई ऐसी लॉटरी भी होती है जिसके लिए हमने ही मेहनत की होती है, लेकिन जब भूल जाते हैं और पैसे मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पर्स में या जेब में पैसे रख के भूल गए और बहुत दिनों के बाद जब आपने उसे निकाला और पहना और वो पैसे आपको मिले तो कितना आनंद मिलता है? ऐसा कुछ हुआ तो हमसे साझा कीजिए, और ये भी बताइए कि किस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

जय धर्मेंद्र जय जय जय हो जय राजेंद्र जगत नारायण के छोड़ के संतो नगत नारायण।

bum nache Kishore Kumar bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. आंसू और मुस्कान फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने उस समय समय समय पर धन का साथ हमेशा दिया है। श्रीमती कॉलेज में प्राध्यापक रह चुकी हैं, हम दोनों को पेंशन मिलती है, मेरे लड़का सीए और अच्छे पोस्ट पर कार्यरत है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि उनका लिखा गीत तो नहीं आया अब तक, हम तुम और वो, ऐसा हमारे साथी ने फिल्म का नाम बताया, लेकिन आंसू और मुस्कान फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, ये गीत भी बड़ा ही अच्छा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं सच्चा झूठा फिल्म का गीत, उन्होंने कहा लेकिन ये तो नहीं है। दीवार फिल्म का संवाद एक अंगल की जुबानी, मेरा लड़का तो ऐसा नहीं था, शायद हमारी भूख देखी नहीं गई होगी, मगर देखा जाए तो देश में लाखों लोग भूखे मरते हैं, तो क्या सभी चोर बन जाएं? पैसे की नैतिक शिक्षा का पूर्व उदाहरण है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कल दोपहर से हमारे प्रांत में बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश, सावन नहीं बरस रहा है, भादो बरस रहा है। और हमारे कह रहे हैं कि काली घटाओं और बारिश की बात आज नहीं हुई, पैसों की बारिश की बात यहाँ हो रही है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं मोबाइल डिस्प्ले पर वीडियो और चला करें साथ में तो अच्छा रहेगा, पूरा गाना देखा भी करो, विविध भारती के स्टूडियो को देखते रहो, अपना कमेंट करते रहो। भाई ये तो कह सकते हैं कि जो इच्छाएं हैं चाहत है उनका तो कोई सानी नहीं है, उनका ना कोई अंत है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, एक पैसा दो वो 10 लाख देगा, ऐसा उनका कहना है। गीत उन्होंने बताया ये। और हमारे एक साथी कह रहे हैं घर मुझे मिल जाए एक कप चाय और ना रखे जाए मेरे सामने ढेरों तरह के पकवान, तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा, और अगर मेरे सामने ढेरों पकवान रखे जाए और एक कप चाय ना पिलाया जाए तो मैं कभी भी खुश नहीं हूंगा। तो चाय वाला गीत तो सुनवाना ही पड़ेगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कल्याण जी आनंद जी इसके संगीतकार हैं, जो कि हमारा सवाल का सही जवाब है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं मेरे गुरुदेव किशोर कुमार की आवाज़ जैसा किसी की आवाज़ नहीं है। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं अलग अलग बातें हमारे साथी बता रहे हैं। हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि हमारे एक रिश्तेदार मुसीबत में थे, रिश्ता ऐसा कि 25 लाख की मदद की, फिर क्या था, समय बदला, जब रुपए देने का समय आया तो लालच मन में आ गया, पहले टालते रहे, बाद में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, रुपए तो आज तक नहीं दिया पर भरोसा और रिश्ता खो दिया, अब हम किसी को हेल्प करने के पहले कई बार सोचते हैं। ये बात तो होती ही है। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुन लेते हैं, क्योंकि ऐसी बातें जब होती हैं तो मन को शांति देने के लिए एक गीत तो सुन ही लेना चाहिए। आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है।

0: बॉबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मन्ना डे शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाजों में। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाए उससे पहले हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के दौरान 1:20 को समाचार आते हैं और उस दौरान के गीत और बातें सुनने नहीं मिलती, प्रोग्राम का मजाक किरकिरा होता है। तो हम आपको कहेंगे कि आप सुन सकते हैं निर्विघ्न ये कार्यक्रम ऐप के जरिए। न्यूज ऑन AIR ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप सुन सकते हैं लगातार कार्यक्रम जो भी है, बिना समाचार के जो एक बीच में आपको लगता है कार्यक्रम के दौरान जो आता है उसे आप इस तरह से टाल सकते हैं और पूरा कार्यक्रम एक साथ सुन सकते हैं। तो ये जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप, और बड़ा ही आसान है इसे हैंडल करना या इसे चलाना, आप खुद ही समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन अब आपको तो ये समझना है कि जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो कौन से फिल्म का गीत है।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज।

दे दनादन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हालांकि उसने उन्होंने अपना जवाब शायद के साथ लिखा, पर शायद नहीं, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पैसों के बारे में क्या कहना, मैं तो अपने पैसों को ऐसे पुराने कपड़ों में भी छुपा कर रखती हूँ। एक बार मैंने पूरे पुराने कपड़ों की बैग एक लड़की को देख कर कहा कि इसको बेचकर आज यहाँ जिसको पहनना है दे देना। थोड़ी देर में वो वापस आ गई, मुझे लगा सारे कपड़े बिक गए, लेकिन कुछ पैसे उसने लाकर मेरी हथेली पर रख दिए कि ये आपके उस बैग से मिले हैं। कपड़ों के बीच में मैं इतना खुश हो गई उन पैसों को देखकर जैसे मानो मेरे हाथों में खजाना लग गया हो। तो पुराने कपड़ों के बैग में कुछ चीजें दी थी इन्होंने और इस तरह से इन्हें वो मिल गई। और खजाना तो इस तरह से मिलता ही रहता है, जैसे आपके प्यार का खजाना हम तक पहुंचता रहता है। और हमारे कुछ साथियों का कहना है कि बहुत से गीत उनकी पसंद के तो आज सुनाए नहीं गए, और बहुत से साथियों का ये भी कहना है कि उनके लिस्ट के गीत शामिल हुए। तो भाई ऐसा होना तो संभव है, क्योंकि एक घंटे के कार्यक्रम में सभी की पसंद या सारे गीत शामिल करना तो मुश्किल है। लेकिन आप सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती पर आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी पसंद के गीत जरूर सुनने मिलेंगे। तो आज के सुरीला सफर कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाजत।

0: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत लता मंगेशकर ने गाया था। फिल्म थी आम्रपाली। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषित साझा किया, जिसमें निडरता का भाव जगाने और जीवन बचाने के गुणों पर बल दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जो कोई भी लोगों का डर दूर करता है, उसे बहुत आशीर्वाद मिलता है और तीनों लोगों में जीवन बचाने से बड़ा कोई मूल्यवान उपहार नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि अभियान के 4 सप्ताह सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। पोर्टल पर अभियान के तहत किए गए भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की जानकारी दर्ज की जाएगी। डॉक्टर यादव ने इसके साथ ही सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की सेवा, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। इस डाकघर को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। यहाँ स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। इसके बाद श्री सिंधिया ने ककरवाया क्षेत्र में 85 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले देश के 7वें डाक प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन भी किया। इस केंद्र में प्रदेश के साथ आसपास के राज्यों के डाक विभाग के कर्मचारियों को भी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
1: एक नया उदय, जहां भारत सरकार के डाक विभाग की पोस्टल प्रशिक्षण केंद्र जो पूरे देश में केवल 6 हैं, वो 7वां केंद्र 91 करोड़ रुपए की लागत से शिवपुरी में लगने जा रही है। हमारे 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक जो घर घर जाते हैं, अगर भारत के 6 लाख गांव में कोई दूत है तो वो दूत मेरा ग्रामीण डाक सेवक।
0: ग्वालियर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में बलराम जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के तहत हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषक कवच योजना की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर यादव प्रदेश में नवीन पंजीकृत 200 प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के कार्यालयों का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 सितंबर को सीहोर में सीजी पावर की नई पावर ट्रांसफार्मर यूनिट से पहले ट्रांसफार्मर के रोल आउट की शुरुआत करेंगे। करीब 50 एकड़ में बनी यह भारत की एक ही जगह पर स्थित सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण सुविधाओं में से एक है। यहां 220 से 1200 केवी तक के ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे। प्रदेश में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। प्रदेश के 81 प्रमुख कृष्ण मंदिरों में विशेष सजावट, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर 4 सितंबर को 1000 से ज्यादा बच्चों को बालकृष्ण के रूप में तैयार कर कार्यक्रम कराया जाएगा। स्कूलों में मटकी फोड़, बांसुरी, झांकी और चित्रकला जैसी प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि गौशालाओं में सफाई, गौ पूजन और पशु स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। भोपाल में 7 दिवसीय रासलीला समारोह और आगरमालवा जिले के मुरली मनोहर मंदिर में भी श्रीकृष्ण पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम की वजह से बारिश का दौर जारी है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि सतना और चित्रकूट सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में अति भारी और 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश को देखते हुए सतना में आज और कल स्कूल, कॉलेज तथा आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में कलेक्टर ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में परिवहन विभाग की जांच कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले बस और ऑटो चालकों पर 3 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया। आगरमालवा की ग्राम पंचायत जमुनिया, गाता, बाजना, रामपुर, बुंडवास तथा नलखेड़ा जनपद पंचायत के वार्ड 6 और 11 तथा सुसनेर में उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। और इंदौर जिले के शासकीय लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय में आगामी 10 सितंबर को संभागीय लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की, कहा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता है। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंचों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
3: Where India has learnings that can be shared elsewhere.
4: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती-बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
3: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सीबीहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री राडोस्लाव शियोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्स पर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
6: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाशय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर झारखंड में पिछले तीन दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
7: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले तीन दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनू घाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले तीन दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत

0: नाहत सिंह ने लंदन स्क्वॉश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपके पत्रों द्वारा

रख। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: हम दोनों फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज, साहिल उद्यानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह।
1: मुझको हुई ना खबर।
0: एक उत्तम जीवन।
2: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता।
1: मार उड़ा दी।
0: एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

तुमसा नहीं देखा। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार की आवाज में मुसाफिर फिल्म से गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल सलील चौधरी का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फागुन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, कमर जलाल आबादी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, ओपी नैयर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, गीता दत्त, माफ कीजिएगा, ओपी नैयर का संगीत है, कमर जलालाबादी की बोल है, गीता दत्त की आवाज, और ये आपको सुनवा रहे हैं दूसरा एक गीत जिसमें मोहम्मद रफी भी गीता दत्त के साथ, 12 o'clock फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को दीपा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सुनने वाली सभी सखियों श्रोताओं को और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: हेल्दी नमस्कार से मुझे बात याद आई कि आज आप मिलते ही मुझे कुछ हेल्दी चीज खिलाई थी, वो थी नारियल की बर्फी।
1: भाई नारियल में बहुत गुण होते हैं, आप कुछ कह रही थी?
0: यही कहने वाली थी कि आप हेल्दी नमस्कार के साथ साथ जो अपना आहार होता है उसमें भी हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करती है, बहुत अच्छी बात है।
1: भाई अगर बोलेंगे और अगर उसको नहीं पालन करेंगे उन बातों का तो कहने का कोई मतलब नहीं है। और हमेशा एक उम्मीद यहाँ पे रहती है कि कोई ना कोई एक सखी या हमारे श्रोता भाई अपने आदतों में या स्वास्थ्य में कहीं पे कुछ भी एक अच्छे सुधार लेकर आए हैं या नहीं आए हैं, हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया या करते हैं तो थोड़ा सा समय बढ़ाया या 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप सतर्क रहते हैं और उसको समय देते हैं या नहीं, जरूर बताइएगा। तो इंतजार है, शायद कभी कोई ना कोई एक कमेंट आए हमें।
0: जी, और आज के जो खास दिन है, आज विश्व नारियल दिवस है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और भी श्रोतागण लिखे कि नारियल का आपके जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से नारियल का इस्तेमाल करते हैं। रही बात व्यंजन की, तो आज हमने नारियल के व्यंजन ही चुने हैं। और हमारे बहुत सारी सखियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नारियल के व्यंजन भी लिखकर हमें भेजे।
1: वो भी लिख के भेजे हैं। और भाई

0: ये देखो त्योहारों का बिल्कुल एक के बाद एक त्योहार लगातार है, ऐसे में अलग अलग प्रकार के हम साड़ियों को ढूंढते रहते हैं कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने। आजकल वैसे सलवार सूट वगैरह भी बहुत कुछ पहनने लगी हैं हमारी सखियां, लेकिन फिर भी त्योहारों में साड़ियों का जो रुतबा और जो रौनक उसको
1: वो
0: आके
1: बढ़
0: जो ग्रेस
1: जाती।
0: आती है पहनने पर वो एक अलग ही है। इसलिए इसी आज के दिन हम साड़ियों का संसार लेकर आते हैं। आज हम बताने वाले हैं मंगलगिरी साड़ियों के बारे में, उसकी क्या विशेषता है, कैसी बनती है और
1: किस राज्य की है
0: किस राज्य की है।
1: जी?
0: बिल्कुल।
1: और शब्द हमारा, विचार आपके। इसमें हमने चुना है प्रसन्नता, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता है। कभी सुख है तो कभी दुख है, पर अगर हम प्रसन्नता को अपनाते हैं तो वो दुख के दिन भी बड़े आराम से निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो ये असली जीवन का आधार है प्रसन्नता।
1: जी
0: और हम श्रोताओं से चाहते हैं कि आप और संदेश हमें लिख के भेजिए, कुछ ऐसी बात भी लिख के भेजिए, क्योंकि आया तो है, कुछ कमेंट्स आए तो हैं, पर इंतजार है कुछ और उनके संदेशों का। और साथ में जानकारियां भी देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसके बारे में भी बात करते हैं। तो
1: जी
0: फूड पैकेट्स पर जो जानकारी लिखी होती है वो पढ़ना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने घर परिवार को, बच्चों को क्या खिला रहे हैं, क्या चीज हम तैयार बाजार का अगर उन्हें खिला रहे हैं तो उसमें क्या उनके खान पान में जा रहा है, ये चीज के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है।
1: यानी आंख मूंद के पैकेट वाला खाना नहीं खाना है,
0: बिल्कुल।
1: उसकी हमें एक्सपायरी डेट चेक करना है, और भी अन्य सारे उसमें कितने क्या क्या कंटेंट्स मौजूद है वो
0: जी,
1: सारे पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। और अभी क्या जरूरी है,
0: गीत बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: सुनते हैं गीत।

0: आज विश्व नारियल दिवस है और नारियल हमारे जीवन से जुड़ा एक ऐसा फल है जिसे हम स्वाद के साथ साथ कई उपयोगों के लिए जानते हैं। नारियल का पेड़ इतना उपयोगी है दीपा कि इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसके फल, पानी, तेल, छिलके और पत्तों तक का उपयोग अलग अलग कामों में किया जाता है और नारियल के इसी महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ जी, और विश्व नारियल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती और इसके उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना है, साथ ही नारियल की खेती से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करना और नारियल उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारत दुनिया के प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में से एक है। हमारे देश में केरल जो राज्य है, जो कि केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा, ये सभी राज्य जितने भी हैं ना, इनमें बड़ी मात्रा में नारियल की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में लाखों किसान नारियल की खेती से अपनी अपना जो जीवन चलाते हैं।
0: और नारियल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। नारियल पानी गर्मी में शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है। नारियल की गिरी से तेल और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। नारियल तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के साथ साथ बालों और त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है।
1: नारियल की खास बात यह है कि इसका लगभग हर हिस्सा काम में आता है, सोनाली, है ना। नारियल के छिलके और उसके जो जटा से रस्सियां, चटाइयां, है ना, कई सारी उपयोगी चीजें बनती है, यहाँ तक कि सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं। इसके खोल से सजावटी सामान बनते हैं, घरेलू वस्तु भी तैयार की जाती है और नारियल किसानों के लिए आय का एक अच्छा साधन है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद करता है।
0: साथ ही दीपा, नारियल का पेड़ पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर समुद्र के किनारे और तटीय क्षेत्रों में नारियल के पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। ये पेड़ हमारे आसपास की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाते हैं।
1: जी, और
0: ये दिवस जो है ना, हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ने हमें कितने अनमोल संसाधन दिए हैं। जरूरत है तो बस उन्हें समझने, बचाने और सही तरीके से उपयोग करने की है। नारियल वास्तव में प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो हमें पोषण भी देता है और रोजगार भी देता है।
1: बिल्कुल, और इस विश्व नारियल दिवस पर सखियों, हम नारियल की उपयोगिता को समझना चाहिए हमें और नारियल की खेती करने वाले किसानों का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति के इस अनमोल उपहार को सहेज का संकल्प लेना चाहिए। तो देखिए ना, नारियल सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और प्रकृति तीनों का साथी है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, देखो, ले लो रे बाबू, पी लो नारियल पानी, एक रुपया दाम है, हजारों का काम है, सैकड़ों बीमारियों की दवा है, पिलाओ तो मिलेगी आपको दुआ। आज विश्व नारियल दिवस है जिसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। हमारे यहाँ गुजरात में भावनगर जिले के महुआ शहर में, जिसे मिनी कश्मीर कहा जाता है, वहाँ नारियल का विशाल उत्पादन हो रहा है। कच्चे नारियल को गुजराती में त्रोफा कहा जाता है, जिसका पानी स्वास्थ्यवर्धक होता है, बीमार लोगों को अक्सर पिलाया जाता है। पक्के नारियल पूजा पाठ के अलावा भगवान के चरणों में भी धराया जाता है। पक्के नारियल से निकले खोपरा से खोपरा पाक जैसी विविध स्वादिष्ट पौष्टिक मिठाइयाँ भी बनती हैं।
1: बिल्कुल, और ये जो मिठाई होती है खोपरा पाक, ये तो बेहद पसंद आती है कई घरों में, कई लोगों को। और इसी तरह से एक सखी ने लिख भेजा है कि कौन नारियल के पानी में जादू सा कर जाता है, बंद कटोरी में मीठा जल चुपके से भर जाता है। क्या खूब है, तो ये प्रकृति की सुंदरता है ना, कि पता ही नहीं चलता अंदर पानी कैसे आ जाता है।
0: हम कितने समृद्ध है ना जी इस प्रकृति के साथ। एक साथ ही लिखते हैं, इस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में से श्रीफल यानी देवताओं का फल माना जाता है। नारियल का छिलका इतना हल्का और वाटरप्रूफ होता है कि समुद्र की लहरों पर 100 दिनों तक तैरने के बाद भी जीवित रह सकता है और किनारे पर पहुंचकर नया पौधा उगा सकता है। इतिहास में दुनिया के कुछ हिस्सों में नारियल का इस्तेमाल सामान खरीदने, व्यापार करने, यहाँ तक कि टैक्स चुकाने के लिए करेंसी के यानी मुद्रा के रूप में किया जाता था। दुनिया के कुल नारियल उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा केवल 5 एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत से आता है।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि नारियल दिवस इसके स्वास्थ्य वर्धक लाभ और उसके महत्व और नारियल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। साथ में ये भी बताते हैं कि 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी ICC, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। और ये बात तो एक और हमारे जो साथी उन्होंने भी लिखा है कि इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं।
0: और आप गाना सुन ले।
1: चलिए

0: दीपा, अगर कोई हमें साड़ी गिफ्ट कर दे तो हम भी झूमने लगते हैं।
1: शायद फिर उसको पहन के कुछ इसी तरह से गाएंगे ना, ये वादे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं। और साड़ी के गिफ्ट की तो हमेशा चाहत होती है हर महिलाओं को, है ना? और क्या आप भी बताइएगा, चाहत होती है या नहीं, सही कह रहे हैं या नहीं?
0: हाँ बिल्कुल, लिखकर बताइए कि अगर आपको किसी ने साड़ी गिफ्ट करी तो आपको कैसे लगता है, या फिर कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है दीपा जिन्हें ऐसा लगता है अरे ये इस तरह के तो हम नहीं पहनते, इतनी भारी भरकम तो हम नहीं पहनते, या फिर ये कलर तो हम कभी नहीं पहनते, तो हमें जचता ही नहीं है, पर मुझे तो अच्छा लगता है अगर कोई गिफ्ट करे तो। और आपको?
1: बिल्कुल, हमें क्यों नहीं पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आता है।
0: तो चलिए फिर हम एक दूसरे को गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि खुशी है ना, उसी से मिलती है ना।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा। और भाई ये गिफ्टिंग का तो दौर चलता रहेगा, आंध्र प्रदेश चलते हैं क्योंकि वहां से लेनी है मंगलगिरी साड़ी।
0: मंगलगिरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध और सुंदर पारंपरिक हथकरघा साड़ियों में से एक है। साड़ी आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी शहर से संबंधित है और मंगलगिरी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय से हथकरघा उद्योग से जुड़ा हुआ है। यहाँ अनेक पीढ़ियाँ बुनाई के कार्य से जुड़े हुए हैं। उनके हाथों की कला और वर्षों का अनुभव मंगलगिरी की साड़ियों को विशेष पहचान प्रदान करते हैं।
1: मंगलगिरी साड़ियाँ जो खास तौर पे हथकरघा यानी हैंडलूम्स पर बुनी होती हैं, बुनकर बहुत बारीकी और धैर्य के साथ धागों को जोड़कर साड़ी तैयार करते हैं। इस कार्य में सिर्फ तकनीक नहीं हो लगती है बल्कि अनुभव और कलात्मक दृष्टि की भी आवश्यकता होती है सोनाली। और इन साड़ियों की एक विशेषता है, ये पहचान इसमें होती है कि साड़ी का मुख्य भाग अक्सर एकदम सरल डिजाइन वाला होता है और इसके विपरीत बॉर्डर और पल्लू पर भरपूर डिजाइन होते हैं, जरी का काम किया जाता है। और यही जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है ना, मंगलगिरी साड़ी को एक सरल और बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक साड़ी बनाता है। फिर मंगलगिरी साड़ी की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी है, इसमें बहुत अधिक भारी कढ़ाई या चमक दमक नहीं होती है। तो किसी को कोई अगर एलिगेंट साड़ी पहनना पसंद हो ना, तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वो सखी खरीद सकती है। और ये बहुत आकर्षक लगते हैं ये बिल्कुल कम चमक दमक वाली साड़ियाँ, और इन महिलाओं के लिए विशेष पसंद है जिन्हें एकदम जो बात हम कह रहे थे ना कि शालीन और पारंपरिक पहनावा अगर आपको पसंद आता है कि मैं सोबर कलर सोबर डिजाइन सोबर साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, तो वो मंगलगिरी साड़ी को बिल्कुल खरीद सकती हैं।
0: और इन साड़ियों के बॉर्डर बहुत सुंदर होते हैं। कई मंगलगिरी साड़ियों में जरी के बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, कुछ में चौड़े बॉर्डर होते हैं जबकि कुछ में पतले और आकर्षक किनारे बनाए जाते हैं, और साड़ी का पल्लू भी इसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रंगों और पारंपरिक डिजाइन के सुंदर मेल से पल्लू को आकर्षक बनाया जाता है।
1: मंगलगिरी साड़ियाँ हल्की और आरामदायक होती हैं, गर्म मौसम में इन्हें पहनना बहुत सुविधाजनक होता है, और इसीलिए ये साड़ी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी पहन सकते हैं। साथ साथ में जब खास अगर आपके घर में कोई ख़ास प्रोग्राम हो रहा है, कोई त्यौहार सा है, तो बिल्कुल पहन सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियाँ अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनाई जाती है, कॉटन की भी बनती है जो कि बहुत एकदम कम्फर्टेबल होती है, सरल होती है, और सिल्क या सिल्क कॉटन वाला जो मिश्रण वाला जो फैब्रिक होता है वो साड़ियाँ दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना बहुत हैवी हमें नहीं खरीदनी है, क्या करेंगे इतना पैसा लगा के, तो सिल्क कॉटन वाला जो मिक्स वाले जो फैब्रिक होती है वो वाली साड़ी भी आप ले सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियों के रंगों की भी विशेष भूमिका होती है, पारंपरिक रंगों के साथ साथ इसमें आधुनिक हल्के रंगों का भी प्रयोग होता है। पारंपरिक हो गए जैसे कि लाल हरा पीला नीला गुलाबी सफ़ेद सफ़ेद जैसे रंग, और इसके साथ साथ में कुछ वेस्टर्न और ईस्टर्न कलर भी ऐसे होते हैं, जैसे कि भूरा भी कलर आने लग गया है, अब तो कथई कलर भी आने लग गया है आजकल, ये अपना बैंगनी और मोफ जो हल्का जामुनी कलर होता है ना वो भी चल रहा है बहुत ज़्यादा इन दिनों, तो वो कलर में भी ये साड़ियाँ उपलब्ध है। फिर इन साड़ियों की खासियत ये है कि इनका रंग और बॉर्डर एक दूसरे के साथ सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए साड़ी पहनने वाले व्यक्तित्व में सादगी और गरिमा दोनों जोड़ देती है। अब अनेक अवसरों पर उपयुक्त मानी जाती है, जैसे सोनाली
0: जैसे त्योहारों में पहन सकते हैं,

0: पारिवारिक समारोह में पहन सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहन सकते हैं, और हल्की कॉटन मंगलगिरी साड़ी दिन के कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छी लगती है, जबकि जरिया सिल्क वाली मंगलगिरी साड़ी विशेष अवसरों पर पहनने के लिए उपयुक्त होती है। मंगलगिरी साड़ी केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होती, इसके पीछे अनेक बुनकरों की मेहनत, धैर्य और वर्षों पुरानी कला छिपी होती है। हथकरघे पर तैयार होने वाली प्रत्येक साड़ी में हाथों की मेहनत और परंपरा का स्पर्श होता है।
1: बिल्कुल। अब आज का जैसे जमाना हो गया ना कि मशीनों पे भी कपड़े बनते, ऐसे में अगर आपको हैंडलूम की साड़ियां पसंद है और भारतीय कारीगरों की कला और उनके महत्व को अगर आप याद करके रखना चाहते हैं तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वैसी ही है। और इन साड़ियों को अपनाना केवल सुंदर पहनावे को चुनना नहीं है, ये हमारे देश की हस्तकला और बुनकरों की परंपरा को सम्मान देना भी होता है।
0: यानी मंगलगिरी साड़ी केवल धागों से नहीं बनती, उसमें बुनकरों के हाथों की मेहनत, पीढ़ियों की कला और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत भी बुनी होती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी ये साड़ी लगती है और एक बार पहन के जरूर देखिएगा।

0: संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज

0: इसका पानी बहुत फायदेमंद होता है पेट के लिए, खासकर बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। और उनके शहर में एक डिश है भुट्टे का किस, उसके ऊपर कच्चे नारियल को डालकर सजाया जाता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। व्रत में भी नारियल पानी मैं पीती हूँ, ऐसा हमारी सखी ने लिखकर भेजा है। एक हमारे सखा, जब हमने पूछा ना कि आप क्या क्या करते हैं सुबह, किस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं, तो एक हमारे श्रोता भाई ने लिखा है कि हर जनवरी में और अगस्त में मैं टेस्ट करवाता हूँ, फुल बॉडी चेकअप, जिसमें बिल्कुल हमारा नॉर्मल आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, बिल्कुल भाई, लेकिन बस अपने जो है खाने का कंट्रोल कहीं बाहर ना रह जाए, ये ध्यान रखिएगा। और हर दिन 60 मिनट तक वॉक करना का पालन करता हूँ, और 60 साल की उम्र में 60 मिनट का वॉक, तो ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं। एक हमारे श्रोता का भी मैसेज है, वो कहती है कि मैं हर दिन सुबह 5 बजे रोज उठता हूँ।
1: अब हम, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं ब्रेक।
0: चलिए

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली। और दीपा कहाँ खो गई हो आप?
1: मैं तो हमारे जो श्रोता है और सखियां हैं उनके संदेशों में खो गई थी कि क्या क्या संदेश आए हैं, वो चुन रही थी। तो चलिए आज भाई संदेश पढ़ना है तो ये भी तो बताना होगा कि किस बारे में हम बात करेंगे।
0: खाद्य पैकेट्स पर लिखी जानकारी, जो हम अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आंख मूंद के उन पैकेट को खोलते हैं और खा लेते हैं उसकी चीजें बिना देखे, ना
1: बिना
0: अक्सर होता
1: देखे
0: है
1: बिल्कुल
0: ये, ना कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे हम लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि पैकेट बना हुआ है तो ये अच्छा ही होगा।
1: अच्छा ही होगा। और जब सफर में जाते हैं तो देखो ना, एक ने पैकेट खोला तो सभी लोग खा लेते हैं। फिर भले हम कहते हैं कि अरे हम घर में नहीं खाते, बस ये तो क्या बाहर निकले ना तो खा लिया, लेकिन क्या खा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है।
0: तो आजकल बाजार में मिलने वाले अधिकांश खाद्य पैकेट जो होते हैं बंद होते हैं, जैसे बिस्किट है, चिप्स है, नमकीन, दूध, जूस, मसाले। इन खाद्य पदार्थों को खरीदते समय केवल पैकेट का रंग, आकर्षक चित्र या विज्ञापन देखकर खरीदना उचित नहीं, बल्कि पैकेट पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
1: क्योंकि इनमें से इससे हमें उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, पोषण और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि उसमें पैकेट पे नाम क्या लिखा होता है, इससे हमें पता चलता है कि पैकेट के अंदर वस्तु कौन सी है। फिर ये जानकारी उसमें दी जाती है कि खाद्य पदार्थ कब बनाया गया है, या कब बनाया या कब पैक किया गया है, इससे हमें उसकी ताजगी का पता चलता है। फिर एक होता है पैकेट पर एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर लिखा होता है, तो इसमें समाप्ति तिथि के बाद खाद्य पदार्थ का सेवन करना सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए खरीदने से पहले उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए।
0: साथ ही पैकेट पर लिखा होता है खाद्य पदार्थ को बनाने में किन किन चीजों का उपयोग किया गया है, जैसे आटा, चीनी, नमक, तेल, मसाले आदि। जिन लोगों को किसी खाद्य पदार्थ की एलर्जी होती है उसके लिए जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। साथ ही पोषण संबंधी जानकारी के पैकेट पर कैलोरीज लिखी होती है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितना है, चीनी और नमक की मात्रा लिखी होती है। इससे हमें पता चलता है कि खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है भी या नहीं भी।
1: बिल्कुल। अच्छा, शुद्ध वजन या मात्रा, उसमें कितना वजन है वो भी लिखा होता है कि 100 ग्राम है, 500 ग्राम है या 1 किलोग्राम है, इससे वस्तु की हमें सही मात्रा पता चलती है। और इसके अलावा हर पैकेट पर उसका अधिकतम मूल्य लिखा होता है, दुकानदार को इससे अधिक कीमत नहीं लेनी चाहिए और इसलिए खरीदते समय MRP हमें देखना जरूर चाहिए।
0: साथ ही उस पे दो चिन्ह होते हैं दीपा, खाद्य पैकेट पर अगर हरे रंग का

0: का चिन्ह है तो ये शाकाहारी खाद्य पदार्थ है, और अगर लाल रंग का चिन्ह है तो ये मांसाहारी खाद्य पदार्थ हो सकता है। इससे उपभोक्ता अपने पसंद के अनुसार खाद्य पदार्थ चुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, इसके अलावा पैकेट पर कंपनी जिसने बनाई है उसका नाम और पता भी दिया जाता है। इससे आवश्यकता पड़ने पर कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। फिर कुछ खाद्य पदार्थों में ठंडी और सूखी जगह पर रखना आवश्यक होता है ऐसा लिखा रहता है, जबकि कुछ वस्तुओं को फ्रिज में रखना पड़ता है। पैकेट पर दी गई भंडारण संबंधी जानकारी का हमें पालन करना चाहिए।
0: एक हमारे साथी कहते हैं कि फूड पैकेट्स पर लिखी जानकारी पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल ताजा किस्सा बताना चाहूंगा। मेरी धर्मपत्नी का पीहर अजमेर में ही है और हम रक्षाबंधन के दिन मेरे ससुराल गए थे। धर्मपत्नी की भाभी ने मिठाई के साथ दो कुकीज के पैकेट भी कॉलोनी के किसी दुकानदार से मंगवा कर दिए थे। मेरी नजर कुकीज के पैकेट पर पड़ी और मैंने देखा था उस पर यूज बाय डेट 26 अगस्त 2026 ने एक्सपायर डेट के कुकीज थे। हाथों हाथ हमने दुकानदार को वापस भिजवाए। दुकानदार ने कहा गलती हो गई, सतर्कता से एक्सपायर्ड कुकीज उपयोग करने से हम बच गए। कितनी
1: बिल्कुल,
0: ये जागरूकता हर किसी को जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है। और एक संदेश आया है कि क्योंकि इसमें भले बुरे की पहचान होती है, सब जो सारी जानकारी लिखी होती है, फिर खाए जाने वाले पैकेट्स की जानकारी तो और भी अधिक आवश्यक है। तो इससे उसके गुणवत्ता का ज्ञान होता है। वैसे पैकेट्स की जगह प्रकृति पद्धत ताजे पदार्थ का सेवन किया जाए तो अधिक सेहतमंद होता है और सेहत के लिए फायदेमंद है। भाई वो तो है, लेकिन अब स्कूल से निकलकर बच्चा अगर अटक ही जाए कि हमें तो ये खाना ही है, ये आलू की चिप्स हम लेके ही रहेंगे, तो अब क्या कीजिएगा? बच्चे मानते नहीं है, तो हर बार हमें उन्हें कभी कभी, भले चाहे आप कहिए कि 10-20 बार में से एक बार हमें दिलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैकेट कितना स्वास्थ्यवर्धक है और कितना हानिकारक है, बच्चों को इसकी पूरी जानकारी देकर कि आप खरीदें।
0: कितनी भी जिद करें उसमें एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। हाँ,
1: हाँ
0: उसके अंदर
1: जी।
0: के कंटेंट्स ठीक है कि बाद में चेक कर सकते हैं, पर एक्सपायरी डेट पहले चेक करना जरूरी है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि फूड पैकेट पर लिखी हुई जानकारी पढ़ना बेहद जरूरी है। हम सभी को घर में व्रत में राजगिरा के लड्डू खाए थे, एक ब्रांडेड कंपनी से रामदाना। हम राजगिरा को पोल रामदाना कहते हैं, जो जागरी गुड़ से बना हुआ था। सभी ने खाया, पर जब पैकेट में पढ़ा गया उसमें सोडियम की भी मात्रा थी। हमारे घरों में व्रत में नमक नहीं खाते। व्रत में तो ये गलती हो गई, उसका निदान भी किया गया, पर मन में कहीं लग रहा था पैकेट पढ़कर ही खाना चाहिए। इसलिए फलाहार का भी पैकेट आप देख लीजिए, इसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हैं।
1: हाँ, आप
0: बहुत
1: देखिए
0: सही
1: कितना
0: जानकारी।
1: सही जानकारी कि अगर आप व्रत में हैं और अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर हमारे मन में एक भ्रांति आ जाती है कि देखिए हम नहीं खाना चाहते, फिर भी नमक चला गया। अच्छा, इसके अलावा नूडल्स, सूप या रेडी टू ईट भोजन, ये सारे जो पैकेट होते हैं उन्हें बनाने का या उपयोग करने की विधि भी उस पर लिखी होती है जो पैकेट से उन पर। इससे खाद्य पदार्थ को सही तरीके से तैयार किया जा सकता है और खाद्य पैकेट पर लिखी जानकारी हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनाली, हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उसके निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, वजन और मूल्य अवश्य जांचना चाहिए।
0: एक हमारे साथी कहते हैं कि भाई चिप्स के पैकेट भूख लगने पर सभी बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं, ये बहुत अच्छा है, पैकेट पर सब कुछ लिखा रहता है। आपको इसमें कितनी कैलोरी मिल रही है, कितना फैट मिल रहा है, कितना ट्रांस फैट है, कितना अनसेचुरेटेड है, और कितना इसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा है। कुछ विदेशी ब्रांड की चॉकलेट और बिस्किट पर वैसे खाद्य तेल रहते हैं जिसे हम खाना नहीं चाहते, तो उसके बारे में भी स्कैन करके सब जानकारी मिल जाती है। तो खाने का सामान और डेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए?
1: एक गाना तो सुनना चाहिए। बस एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि एक जागरूक उपभोक्ता वही है जो आकर्षक पैकेट के बजाय उसकी सही जानकारी को पढ़कर, सोच समझकर उस चीज को खरीदता है।

0: दीपा, इस गाने को सुनकर मुस्कुरा रही थी या मुस्कुराहट का कोई और कारण है?
1: जब भी गाना सुन रही थी तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं ना. सकियो याद आते हैं कि नहीं, जब हम अपना घर बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, कहीं पे किसी ने अपना इंडिपेंडेंट घर बनाया हुआ है, कहीं किसी ने फ्लैट खरीदा है, तो जिस तरह से सजाते हैं, तो नहीं गीत सुनकर के हमारे अपने पुराने दिन याद आते हैं. और फिर देखिए चेहरे पर एक प्रसन्नता यानी एक मुस्कान आ ही जाती है.
0: फिर वो छोटी छोटी खुशियों में भी क्यों ना हो, किसी ने कुछ साड़ी खरीद दी या फिर किसी ने कुछ खाने का सामान ही दे दिया. यानी जो लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं ना, वो सचमुच जिंदा दिल होते हैं.
1: ये बात छोटी खुशी की बोल रही हूँ सुनाली, हमें पता है साड़ी लेकर ही रहोगी, है ना. भाई साड़ी तो लेकर रहेगी, सोनाली को दिलवानी पड़ेगी साड़ी.
0: हमारे एक साथी लिखते हैं, प्रसन्नता का अर्थ केवल किसी विशेष उपलब्धि या स्थिति तक पहुंचने में नहीं, देखिए श्रोता भी कह रहे हैं, बल्कि जीवन के हर क्षण में आनंद और संतोष का अनुभव करना है. ये विचार हमें सिखाता है कि प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि ये आनंद का क्षण है जिसे प्राप्त किया जा सके, बल्कि एक जीवन शैली है. प्रसन्नता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति है, हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, ना कि भौतिक उपलब्धियों पर.
1: बिल्कुल. और आपने आसपास या परिवार में या हमारे परिजनों में देखा होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको हमेशा चेहरे पर स्माइल रहती है, और अगर उनके स्थितियों को देखो, परिस्थितियों को देखो, तो बहुत कठिनाइयां चल रही है, लेकिन एक सतत एक हमेशा मंद मुस्कान उनकी बनी रहती है. और फिर हम कहते हैं भाई जीना है तो इनकी तरह ही जीना चाहिए.
0: मेरे लिए तो नहीं कह रही आप.
1: शायद हो भी सकता है.
0: वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वभाव की बात है. यदि आप खुश नहीं है तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए. पर होता इसके विपरीत है. प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है. भविष्य की चिंता भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए. ये आवश्यक नहीं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को ही पीड़ा दे. किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए. हर प्राणी स्वयं में प्रकृति की विशिष्ट पहचान है. बहुत सुंदर बात,
1: बहुत सुंदर बात की है कि भविष्य की चिंता नहीं, उस पर सोच और समझ रखनी चाहिए कि भाई हमें करना है क्या नहीं करना है. चिंतित हो करके हमारे बालों को सफेद कर लें और फिर चेहरे पे हमेशा उदासी उदासी लिए रहे ना, तो लोगों को लगने लग जाता है, परिवार को लगने लग जाता है, हमेशा ये इतना दुखी क्यों रहते हैं,
0: और इनसे दूर ही भागते लोग.
1: हाँ ऐसा भी होता है. और देखो एक और संदेश है, ये कहता है कि प्रसन्नता का पैमाना न धन है न पद, उसका पैमाना है कि रात को नींद कितनी गहरी आती है, सुबह मन कितना हल्का उठता है, और किसी दूसरे की खुशी देखकर आपके भीतर जलन नहीं बल्कि एक सच्ची मुस्कान आती है. जब छोटी छोटी बातों में भी दिल कहे कि जो है बहुत है और कल की चिंता आज की शांति को नहीं छीन पाती, तो समझिए आप सच में प्रसन्न है. भाई ये तो इतना प्यारा संदेश है, इसको तो ऐसा लगता है 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए, है ना,
0: या फिर अपने पास रख लेना चाहिए.
1: हाँ इसको सेव करके रखा जा सकता है. बिल्कुल.
0: एक साथी कहते हैं, प्रसन्नता बांटने से नहीं बढ़ती, सॉरी प्रसन्नता बांटने से बढ़ती है. प्रसन्नता केवल हंसने का नाम नहीं बल्कि मन के भीतर की वो शांति है जो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सिखाती है. जब अपेक्षाएं कम और कृतज्ञता अधिक होती है तो साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है. ये संदेश भी कितना सुंदर है.
1: बहुत सुंदर
0: जी.
1: एक संदेश कहता है कि खुश रहना, प्रसन्नता, प्रसन्न रहना जीवन का वो आंतरिक आनंद है जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और संतोष पर निर्भर करता है. प्रसन्न रहना जीवन जीने का एक खूबसूरत तरीका है. ये तो हमारे मन के भीतर ही निवास करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे बाहर ढूंढते रहते हैं. जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है वही असली मायनों में प्रसन्न रहता है. अपनी मुस्कान की वजह खुद बनिए, किसी और का इंतजार मत करिए.
0: और अपनी खुशी अपने हाथ में रखिए. किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है. बस जैसे है वैसे रहे, बस खुश रहे, मस्त रहे और गीत सुनते रहे.

0: तो दीपा कहाँ खो गई थी, व्यंजन में?
1: व्यंजन में बिल्कुल। तो आप पढ़ रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ
0: जी, हमारे एक साथी ने नारियल का मैसूर पाक लिखने की रेसिपी लिखकर भेजी है। कहते कि पानी वाला नारियल, शक्कर और घी, नारियल का कल वाला हिस्सा निकालकर सफ़ेद वाले हिस्से को मिक्सी में डालकर बिना पानी के अच्छे से ग्राइंड कर ले। नारियल का बुरादा को कटोरी में भरकर नाप ले। अगर कटोरी नारियल का बुरादा है तो पौना कटोरी शक्कर और एक कटोरी घी लगेगा। तीनों को मिलाकर कढ़ाई को मध्यम आंच पर एक ही डायरेक्शन में चलाते रहे। धीरे धीरे शक्कर घूमेगी और फिर घी बाहर आएगा। इस वक्त अपने हाथों को बचाकर रखना होगा क्योंकि घी उड़ता है। लगातार एक ही डायरेक्शन पर चलाते रहना है और कढ़ाई पर जब हल्का गुलाबी सा रंग दिखे तो इसमें पहले ही तैयार स्टील की छन्नी और इसके नीचे एक बर्तन रख दे। मिश्रण को इस पर फैला दे, घी पूरा नीचे आ जाएगा और जब ठंडा हो जाएगा तो टुकड़े कर ले। बहुत स्वादिष्ट लगता है।
1: बिल्कुल। और ये एक रेसिपी है नारियल की बर्फी, तो उसके लिए आपको नारियल का बुरादा लेना है 2 कप, और चीनी 1.5 कप, दूध 1 कप, या मावा भी ले सकते हैं यानी कि खोया 3/4 कप, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो थाली को चिकना कर लें पहले, और एक थाली या ट्रे में थोड़ा सा देसी घी लगाकर अच्छी तरह चिकना कर लें। फिर एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी गर्म करें। इसमें दूध और चीनी डालकर धीमी आँच पर चीनी घुलने तक पकाएं, और यदि आप मावा मिला रहे हैं तो इसे भी इसी समय दूध चीनी के साथ कढ़ाई में डाल दें। फिर इसमें अब नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर, और लगातार चलाते रहें डालने के बाद, और जब ये मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो कढ़ाई में न छोड़ने लगे ऐसा देखना चाहिए आपको। और फिर आप इसको जो थाली आपने तैयार करी घी लगी उस पे बर्फी बना के बर्फी के लिए जमा सकते हैं, और बाद में जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो बर्फी के शेप में काट लीजिए।
0: और खा लीजिए।
1: बिल्कुल।

0: अब मीठा हो गया तो एक नमकीन भी बनना चाहिए ना, तो दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और एक बेहद स्वादिष्ट और खुशबूदार डिश बनाते हैं, नारियली चावल। इसके लिए सामग्री आपको लेना है बासमती चावल 1 कप, नारियल का दूध लेना है 1 कप, पानी 1 कप, और बघार यानी छोंक के लिए लेना है राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, घी और काजू। बनाने की विधि कैसे होगी, कुकर में घी गरम करें, उसमें राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और काजू डाल के भून लीजिए, जो धुली हुई बासमती चावल है वो डाल दीजिए, 1 मिनट तक चलाएं। अब इसमें 1 कप पानी और 1 कप नारियल का दूध मिला करके डालें और बाद में बिल्कुल आखिर में नमक डालें। कुकर का ढक्कन बंद करें, धीमी आंच पर 2 सीटी आने तक पकाएं। आपके ये जो खिले खिले नारियल चावल हैं वो तैयार।
1: तो मैं तो आज घर में ये सारी रेसिपीज बनाने वाली हूं।
0: मैं भी यही सोच रही थी।
1: आप गाना सुन ले
0: चलिए।

0: तो श्रोताओं को धन्यवाद कहते हैं, इतने सुंदर सुंदर श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे उनके कारण कार्यक्रम में बहुत बहुत हमें मजा आया
1: बिल्कुल,
0: और ऐसा और लग रहा था कि हमारे सारे श्रोता हमारे साथ में हैं।
1: और पौष्टिक जो आपने व्यंजन विधियां भेजी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है साहित्यकार ज्योति जैन जी को, जो इंदौर से आई हैं। विविध भारती के स्टूडियो में ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये बताइए कि रेडियो में आज आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि रेडियो से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है। कैजुअल अनाउंसर रही हैं और फिर परमानेंट अनाउंसर के लिए कॉल लेटर आया था जो ज्वाइन नहीं किया, तो क्या कहानी है ये बताइए आप।
2: जी ममता जी, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं जहां बैठी हूं ये जगह मेरे लिए अपरिचित नहीं है, क्योंकि आज से 40 वर्ष पूर्व जब मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम किया तो स्टूडियो का वातावरण मेरे लिए बिल्कुल सुपरिचित रहता है। मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर 3 वर्ष काम किया पढ़ाई के साथ साथ, फिर परमानेंट के लिए एग्जाम दी और जब उसका रिजल्ट आया तो मेरी नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया।
1: अच्छा।
2: और दरअसल उस वक्त क्या होता है, जब आप प्रेम में होते हैं ना तो प्रेम के अलावा और कुछ नजर नहीं आता।
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो और चूंकि मैं जिस परिवार में आ रही थी वहां थोड़ा सा मारवाड़ी कल्चर है, तो नौकरी पेशा, और उस समय 40 साल पहले लड़कियां इतनी नौकरी नहीं करती थी बहुत ज्यादा, और ये मेरा निर्णय था कि नहीं, मुझे दोनों में से अगर किसी को चुनना है तो मैंने निश्चित रूप से अपने प्रेम को चुना
1: जी।
2: और इस तरह से बस शादी हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों तक मैंने अपने दाम्पत्य और मातृत्व का आनंद लिया और उसके बाद मैं आकाशवाणी इंदौर से अभी भी जुड़ी हूँ, कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या वार्ताओं के माध्यम से
1: जी।
2: और कुछ प्ले में भी मैंने अपने स्वर दिए हैं।
1: क्या बात है।
2: जी जी।
1: तो बात कविताओं की चली है और इधर आप बता रही थी कि आपके पतिदेव ने प्रपोज किया तो कोई प्रेम कविता उनके लिए लिखी है।
2: हाँ, उनके लिए दरअसल जिस समय हम कोर्टशिप में थे तो बड़ी सारी कविताएं खूब लिखी। जब आप प्रेम में होते हैं ना ममता जी, तो
1: शब्द फूटते हैं, बहुत सारे
2: शब्द फूटते हैं, से झरना फूट पड़ता है शब्दों का। और प्रकृति में प्रेम ही प्रेम नजर आता है, तितलियों में प्रेम, फूलों में प्रेम, हर जगह प्रेम नजर आता है, और जो संवेदनाएं थी वो शब्दों में अभिव्यक्त हो गई
1: जी।
2: और उस समय तो खूब सारी कविताएं लिखी, बाद में जब वो कविताएं पढ़ती थी तो लगता था अरे क्या लिखा है, ऐसी अनगढ़ कविताएं हुआ करती थी
1: जी, जी।
2: लेकिन बाद में, और शरद जी पर तो मैंने खूब प्रेम कविताएं लिखी। एक एक दफा

0: जी नहीं, आपके पति देव।
1: जी जी, मेरे पति देव। एक बार जनवरी में हमारी शादी की सालगिरह होती है और वैलेंटाइन डे फरवरी में आता है, तो उस समय मैंने उनके लिए कविता लिखी थी कि संत वैलेंटाइन क्या सचमुच होते हैं? हाँ, देखा है मैंने।
0: क्या बात।
1: मेरी कमजोरियों को थामते, मेरी भावनाओं को तराशते, सत्य शिव और सुंदरम की शाश्वत अभिव्यक्ति, हाँ वही है मेरी बेटियों के पिता।
0: क्या बात है
1: जी। इस तरह से एक पूरी कविता शरद जी को समर्पित की थी जी।
0: तो बात कविता की चली है और पतिदेव की चली है, तो मुझे लगता है कि पतिदेव के लिए कोई गाना बनता है यहाँ पर। कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: पहला गाना मैं जो सुनवाना चाहूंगी, चूंकि आपने बात पतिदेव की कही है, तो जिस समय शरद जी ने मुझे प्रपोज किया, उस समय दरअसल कैसेट्स का जमाना था, है ना, तो कैसेट में बड़े गाने भर भर के दिए जाते
0: थे, ऑर्डर देके भरवाते थे।
1: हाँ,
0: ये वाला गाना,
1: ऑर्डर लिस्ट होती थी एक छोटे से। हाँ, तो शरद जी ने जो मुझे पहली कैसेट दी थी, हाँ, और उसमें जो पहला गाना था वो था हंसते जख्म का, तुम जो मिल गए हो तो लगता है, तो वो गाना सुनवा दीजिए
0: जी।

0: आप सुना है कि सिंथेसाइजर भी बजाया करती थी, और श्रोताओं को बता दें कि ज्योति जी के पास गुणों का खजाना है, उनके गुणों की चर्चा हम करते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में। तो सिंथेसाइजर वाली बात बताइए, कब कहाँ से सीखा और कहाँ से विचार आया?
1: नहीं, दरअसल जब भी मेरी बेटियां छोटी थी, शिखा चानी, दोनों जब बच्ची छोटी थी, तो पहले एक छोटा सा सिंथेसाइजर हुआ करता था, कुछ 1 फुट का होता था, वो बहुत
0: जी
1: बड़ा नहीं होता था, तो वो हमने बच्चों को ला करके दिया और बच्चे बजाते थे।
0: जी
1: मेरी जो बड़ी बेटी है वो बड़ी अच्छी धुनें निकाल लेती थी मन से, कहीं विधिवत सीखा नहीं,
0: जी
1: तो मैं भी थोड़ा बहुत उस पर अपना ऐसे हाथ आजमा लिया करती थी।
0: जी
1: बाद में बच्चियां बड़ी हुई, मैं भी थोड़ा सा फुर्सत पाई, तो बच्चों ने मदर्स डे पर एक बड़ा सारा सिंथेसाइजर ला के दिया। मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और मुझे ये भी महसूस होता है कि जब तक जीवन है तब तक आप सीखना चाहें तो सीखते रह सकते हैं। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। तो मुझे चूंकि संगीत का शौक है, तो मैंने उस सिंथेसाइजर पर धुनें निकालना शुरू की, और बगैर सीखे जो पसंदीदा गीत होते हैं तो वो मैंने उस पे अपने आप से निकालना शुरू किया,
0: जी
1: और इस तरह से दो दो चार चार लाइनें बजा लेती हूँ शौकिया।
0: जी तो ज्योति जी, सिंथेसाइजर की बातें हुई और अब आपके लेखन की दुनिया में हम छलांग लगाना चाहते हैं, फिर बीच
1: जी
0: बीच में यादों के गलियारों में भी सैर करवाते रहेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: बताइए कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से प्रेरणा मिली?
1: जी, लेखन की शुरुआत में कहूंगी कि जब मैं चौथी पांचवी या छठी क्लास में थी, हम लोग मंदसौर से हैं मूलतः, मेरा जन्म स्थान जो है वो मंदसौर है, मालवा का एक छोटा सा कस्बा है,
0: जी
1: इंदौर से करीब 4 घंटे का रास्ता होगा।
0: जी जी
1: तो चूंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी पेशा थे,
0: जी
1: और जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर मेरी जो माँ है वो सबसे पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा महिला थी।
0: क्या बात है,
1: हाँ जी, तो
0: क्या काम
1: हमारे
0: करती थी?
1: मम्मी, मेरी माँ नर्स रही हैं, श्रीमती अन्नपूर्णा तिवारी। और मैं यहाँ आपको एक लगे हाथों तो एक बात और बता दूँ कि मेरी माँ नर्स रही, और उन्हें अपनी नर्सिंग सेवाओं के लिए आदरणीय APJ अब्दुल कलाम साहब के हाथों वो सम्मानित भी हुई
0: क्या
1: हैं।
0: बात है भाई,
1: हाँ जी,
0: बहुत बढ़िया।
1: तो चूंकि घर में वातावरण ऐसा था, बाबूजी भी साहित्य प्रेमी थे, तो हमारे घर में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका और अखंड ज्योति, ये 4 पत्रिकाएं मुझे ध्यान है नियमित आती थी।
0: जी
1: और उसके थोड़े समय बाद बाबूजी को लगा कि ये पढ़ने की शौकीन है, तो हमारे यहाँ बाबूजी खरीद कर चंदा मामा, चंपक, नंदन, पराग, ये 4, देवकीनंदन जी उस समय शायद पराग देखते थे, तो
0: जी
1: ये पत्रिकाएं हमारे आई। तो मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट रही, लेकिन घर में साहित्यिक पत्रिकाएं आती थी तो मैं वो जरूर पढ़ती थी।
0: जी
1: मुझे याद है कि मालती जोशी के धारावाहिक कहानियां इस तरह से धर्मयुग में लगातार आती थी, और हम
0: साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपी
1: साप्ताहिक
0: थी।
1: हिंदुस्तान
0: जी
1: में, तो
0: बिल्कुल,
1: हम मतलब मैं पढ़ती और फिर वो वहां क्रमशः में आती, तो उत्सुकता रहती थी कि आगे
0: आगे
1: क्या
0: क्या
1: हुआ।
0: होगा, क्या बात
1: तो
0: है।
1: मुझे लगता है लेखन का बीज वहां पढ़ने से शुरू हुआ, वहां ये बीज पड़ा, और फिर धीरे धीरे और अधिक, जहाँ जिन घरों में मैंने देखा है वाचन संस्कृति होती, वाचिक परंपरा जहाँ है वहाँ पर लेखन का बीज पढ़ने की संभावनाएं रहती हैं।
0: जी
1: तो बस इस तरह से वो पुस्तकें पढ़ने के बाद, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अखंड ज्योति जो पत्रिका थी, और उन दिनों सारिका भी लघु कथाएं छापने लगी थी, तो अखंड ज्योति में छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग आया करते थे, तो शायद उन प्रेरक प्रसंगों को पढ़ पढ़ करके मेरे अंदर कहीं लघु कथा का बीज पनपा,
0: जी जी
1: छोटा छोटा लिखना शुरू किया।

0: जब मैं हायर सेकेंडरी में आई तो हमारे गुरु थे श्री राम ताम्रकर सर।
1: जी
0: तो जब उन्होंने मुझे एंकरिंग दिया कि उनको लगा कि इसके अंदर कुछ लेखन क्षमता है, तो उन्होंने कहा ज्योति एंकरिंग करोगी? मैंने कहा जी सर बिल्कुल करूँगी। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया, तो प्रोग्राम आपको प्रस्तुत करना है तो लिखना पड़ेगा,
1: जी जी
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, दो दो लाइनें ऐसे तुकबंदी की। तो सर ने मुझे कविराज कहना शुरू कर दिया कि अरे, तो बस वो एक कच्चा कच्चे एक्चुअली बोलते कि वो एक पगडंडी थी कच्ची, सड़क पे आने में देर थी, लेकिन वो पगडंडी पे वहाँ चलना शुरू कर दिया था, यात्रा वहाँ से शुरू हो गई थी।
1: जी, तो या वो जो यात्रा शुरू हुई और यात्रा का पड़ाव जो सड़क पर पहुंची पगडंडी से, तो सड़क वाली यात्रा को याद कीजिए और कोई कविता सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
0: मुझे लगता है कि शादी के बाद मैंने फिर मुझे लगता है कि विधिवत वापस से लिखना शुरू किया।
1: एक संग्रह हमें याद आ रहा है, दुनिया काठ की,
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: क्या इस संग्रह से कोई कविता सुनाएंगे?
0: हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आपने दुनिया काटकी का जिक्र किया है,
1: हाँ
0: तो दुनिया काटकी का विचार ऐसे मन में आया कि
1: हाँ
0: एक बुजुर्ग को मैंने देखा कि उनको चौखट से ठोकर लग गई
1: हाँ
0: और वो लड़खड़ा के गिरने को हुए, लेकिन तत्काल उन्होंने हाथ में पकड़ी लकड़ी से, छड़ी से संभाल लिया अपने आप को।
1: अच्छा
0: तो बस एक बिजली की तरह एक विचार कौंधा कि जिससे ठोकर लगी वो भी लकड़ी,
1: जी
0: और
1: जी
0: जिसने सहारा दिया संभाला वो भी लकड़ी।
1: क्या बात है
0: तो बस ऐसा लगा कि लकड़ी पर क्यों ना कुछ लिखा जाए।
1: जी।
0: तो जब यादों को टटोलने लगी अपने शब्दों के संग्रह को, तो जब अभिव्यक्ति वो डायरी में आई पन्नों पर, तो मुझे लगा कि बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक लकड़ी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहती है।
1: सही बात है, बिल्कुल।
0: तो इस तरह से ये दुनिया काठ की का अस्तित्व आया सबके सामने।
1: वो तो अंतिम संस्कार में भी लकड़ी
0: जी
1: का
0: जी
1: प्रयोग
0: जी
1: होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो जन्म से मृत्यु
0: हाँ
1: तक।
0: जी। मैं इसकी पहली कविता सुनाती हूँ पहले आपको,
1: जी
0: जिसका शीर्षक है पलना। गर्भ में मुलायम तरल में बहता शिशु बाहर आते ही माँ की हथेलियों में आ जाता है।
1: क्या बात है,
0: जो तरल तो नहीं लेकिन ममत्व उसे मुलायम ही बनाता है।
1: वाह।
0: देखिए, क्योंकि गर्भ में एकदम तरल है और फिर वहां से हथेलियों में आता है, लेकिन हथेलियां भी मुलायम है। लेकिन चंद पलों बाद ही लकड़ी का पलना उस शिशु का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है
1: जी
0: अगले चंद माहों के लिए।
1: वाह।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है कि आने वाले जीवन की कठोरता से।
1: क्या बात है।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है आने वाले जीवन की कठोरता से लड़ने की ताकत देने का।
1: वाह क्या बात है, बहुत
0: लकड़ी का
1: बढ़िया
0: पलना ऐसा होता है।
1: जी,
0: जी
1: बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ एक गाना सुनते
0: जी
1: हैं, फिर हम आगे और बातें करते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: गीत तो देखिए मुझे बहुत सारे पसंद है, क्योंकि मुझे संगीत पसंद है, गीत पसंद है, गुनगुनाना अच्छा लगता है।
1: जी
0: मैं आपको बता दूं कि एक बार ताम्रकर सर ने मुझे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया था जब मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ था,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो किचन में रख के विविध भारती सुनना मेरा प्रिय शगल रहा
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: तो यहाँ पर मुझे दरअसल जिंदगी में मुझे लगता है सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी मैं ब्लड ग्रुप से भी बी पॉजिटिव हूँ। तो मुझे हमराज का ये गीत मुझे बहुत पसंद है, सुनील दत्त साहब की मूवी थी, और गीत के बोल हैं न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो,
1: क्या बात है,
0: गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के
1: मुस्कुरा
0: जियो।
1: के जियो।
0: जी
1: हमराज
0: जी
1: फिल्म का ये गाना
0: हाँ जी
1: सुनते हैं
0: जी
1: यही।

0: हमराज फिल्म के गाने के बाद हमें बताइए कि ये नजर बट्टू क्या है। वैसे हमें पता है कि कहानी संग्रह नजर बट्टू, भोरवेला और सेतु, और नजर बट्टू पर शोध भी किया गया ऐसा कहीं हमने सुना और पढ़ा है,
1: जी।
0: तो इसके बारे में बताइए, क्या फिलाडेल्फिया में इसी के लिए यही शामिल हुआ था?
1: नहीं नहीं नहीं देखिए, फिलाडेल्फिया में जो मुझे सम्मान मिला था, मतलब मैं तो फिलाडेल्फिया नहीं गई, वहाँ की जो संस्था है वो वर्ष में एक बार भारत आती है, और विभिन्न शहरों में ये साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न काम करने वालों को, उनके समग्र साहित्य पर ये सम्मान प्रदान किया जाता है हिंदी में काम करने वालों के लिए। तो वो फिलाडेल्फिया वाला सम्मान अलग है, लेकिन नज़र बट्टू की जहाँ तक बात है, तो ये मॉरिशस की एक शिक्षिका है, वो इंदौर आई थी एक कार्यक्रम में, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो अपने साथ मेरी कुछ 3-4 किताबें ले गई। जब मैं मॉरिशस गई तो वहाँ पर महात्मा गांधी हिंदी शोध संस्थान है, वहाँ पर वो पढ़ाती हैं, तो वहाँ की एक विद्यार्थी है श्रावणी बिहारी करके, उसने शोध प्रबंध लिखने के लिए उनसे कुछ विषय चाहे
0: जी।
1: तो जो मैम थी उन्होंने उन्हें मेरी नज़र बट्टू किताब दी और कहा कि तुम इसे पढ़कर देखो और फिर बात करते हैं। जब उस विद्यार्थी ने वो नज़र बट्टू किताब पढ़ी तो उसे मेरी जो कहानियाँ उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, अपना पूरा परिचय दिया और फिर ये जानना चाहा कि मैडम नज़र बट्टू किताब तो बहुत अच्छी है लेकिन नज़र बट्टू का मतलब क्या है। तो मैंने उसे बताया कि नज़र बट्टू यानी कि जो नज़र से बचा है वो, तो जो नज़र बट्टू होता है वो नींबू मिर्ची भी होते हैं जो कि कई बार बड़े बड़े ट्रकों पर लगे रहते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: गाड़ियों में,
1: तो
0: लगे रहते
1: गाड़ियों
0: हैं,
1: में
0: स्कूटर बाइक
1: ये बात
0: पे।
1: अलग है कि उनसे ब्रेक नहीं लगता लेकिन एक आस्था होती है, इसलिए वो नज़र बट्टू गाड़ी पर टंगाया
0: और
1: जाता है,
0: खेतों में किसान,
1: खेतों में
0: कृषक भाई भी
1: किसान।
0: लगाते हैं।
1: और जो एक और नज़र बट्टू है वो है काले धागे। तो जो मेरी जो नज़र बट्टू कहानी है, उस कहानी संग्रह की जो शीर्षक कहानी है नज़र बट्टू, वो काले धागे और नींबू मिर्च के की थीम को लेकर ही वो कहानी है
0: जी।
1: और कुछ मार्मिक कहानी है और लोगों को, पाठकों को वो बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने नज़र बट्टू की सारी कहानियों पर शोध प्रबंध किया। इस तरह मॉरिशस की जो विद्यार्थी है उसका शोध प्रबंध मेरी ये कहानी संग्रह नज़र बट्टू पर संपन्न हुआ है।
0: और फिलाडेल्फिया में जो आपका संग्रह गया था जो शोध के लिए, वो क्या कहानी
1: वो,
0: है उसके बारे
1: वो,
0: में?
1: वो समस्त समग्र साहित्य पर मिला है वो सम्मान मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ हिंदी में कार्य करने वालों को ही वो दिया जाता है वो सम्मान।
0: तो कैसे वहां जुड़ी आप?
1: मुझे ना ममता जी एक चीज लगती है कि कोई अगर मेरी किताब चाहता है तो मैं हमेशा अपनी किताबें देना पसंद करती हूँ।
0: और ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: किताबें तोहफे में देना,
1: हाँ
0: और सबको ये सीखना चाहिए
1: जी
0: कि बड़े बड़े गिफ्ट की बजाय किताब तोहफे
1: हाँ।
0: में दें।
1: मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जब किताबों की भेंट की बात चली है तो मेरी एक कविता संग्रह है माँ बेटी, वो मैंने माँ बेटी, सिर्फ माँ और बेटी पर कविताएं हैं उसमें। इंदौर के कई प्रतिष्ठित परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी में वो पुस्तक बरातियों को तोहफे में दी।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, मतलब 100-100 किताबें बल्क में खरीद कर और ये किताबें भेंट दिए। तो किताबें भेंट देना मुझे अच्छा लगता है, तो इसी तरह जब मैंने किसी को भेंट की और मुझे पता नहीं चला कि वो उनके किन रिश्तेदारों के माध्यम से वो किताब फिलाडेल्फिया पहुंच गई, और जब फिलाडेल्फिया पहुंची 2 या 3 पुस्तकें थी कुल,
0: जी,
1: फिर उनका मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे। आजकल ये सुविधा बहुत हो गई, पहले तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने मेरा पूरा परिचय मांगा, मेरी बाकी किताबों की जानकारी ली, कुछ गूगल से प्रोफाइल लिया उन्होंने, और फिर इस तरह उन्होंने समग्र साहित्य का अध्ययन करके और फिर वो पुरस्कार मुझे प्रदान किया।
0: क्या बात है,
1: जी
0: बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए
1: जी,
0: और बहुत बढ़िया।
1: धन्यवाद।
0: और बात कविता की चली है, माँ बेटी कविता संग्रह, तो उस संग्रह से कुछ लाइनें सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ जी, वो जो काव्य संग्रह है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है,
0: कहानी है।
1: जिस समय मैंने अपने उम्र के 50 वर्ष पूरे किए, बच्चों ने मेरे को, मुझे दोनों बेटियों ने बड़े सरप्राइजेस दिए कि 7 दिन तक मम्मा का बर्थडे मनाएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, खूब सरप्राइज दिए। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो मैंने माँ बेटी, चूंकि मेरी माँ भी है, माँ का आशीर्वाद भी है अभी, तो माँ और बेटी को लेकर के एक एक मैंने कविताएं रच दी। इस तरह से वो, चूंकि 50 साल की हुई थी तो 50 कविताएं आ गई माँ बेटी में। उसकी कुछ कविताएं हमारे परिचित हैं, उन्होंने अपनी बेटी की पत्रिका में वो कविताएं छपवाई हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ जी। और एक डॉक्टर साहब है वहाँ, डॉक्टर मोड़, उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में उन कविताओं के बड़े बड़े पोस्टर बनवा के रिसेप्शन हॉल में लगवाए।
0: क्या बात है भाई।
1: हाँ जी। माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी,
0: माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी।
1: बाद में समझ में आया कि उन्होंने घर को ही मंदिर बना रखा था, वो मंदिर जाती किसके लिए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: क्योंकि उनके लिए उनका कर्म ही उनकी पूजा थी। नजर से बचाने को माँ ने बांध दिए हाथ पैरों में काले धागे, मगर माँ नहीं जानती थी कि ताकत काले धागों में नहीं, माँ के हाथों में है।
0: वाह क्या बात है
1: जी।
0: मेरे हिस्से का आकाश, जिसका जिक्र भी किया, जेब में भरकर सपने सारे और चुस्कियां, तो ये सारे कविता संग्रह हैं।
1: जी जी।
0: इनकी, इनका भी जिक्र कीजिए, क्या इनके पीछे भी कोई प्रेरणा है, कोई कहानी है? और दरअसल कितनी कविता संग्रह आए ये भी बताइए। हाँ,
1: मेरे 5 कविता संग्रह आए हैं। लोगों के लेखन की अलग अलग शैली होती है
0: जी।
1: तो पहले तो मेरे हिस्से का आकाश कविता संग्रह की बात करूं तो मैं हमेशा ये कहती थी कि हर स्त्री को अपना अस्तित्व, अपना आत्मबल बनाए रखना चाहिए।

0: मुझे लगता है कि अमूमन जो स्त्रियों की स्थिति है
1: जी
0: वो कैसी है, तो उसकी एक कविता है जाल,
1: जी जी
0: शीर्षक है जाल। मैं चहचहाती थी, मैं मुखर थी,
1: क्या बात है।
0: उसने कहा तुम वाचाल हो। मैं चुप रही, कुछ ना बोली, उसने कहा गुन्नी हो।
1: ओ
0: मैंने तिनका तिनका जोड़कर घर सजाना चाहा, उसने कहा खर्चीली हो। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा निकम्मी हो।
1: ओहो
0: मैंने धरती चाही, उसने पिंजरा बना दिया। मैंने आकाश चाहा, उसने जाल बुन दिया।
1: क्या बात है।
0: तो क्या मेरा कुछ नहीं, तो क्या
1: मेरा
0: मेरा
1: कुछ
0: कुछ
1: नहीं है।
0: नहीं,
1: जी
0: उसने उदारता दिखाई और मुझे क्षितिज दे दिया।
1: वाह।
0: कहा जा, पूरा क्षितिज तेरा, जो दिखाई तो दिया मगर हाथ नहीं आया।
1: क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। तो हम जरा विराम देते हैं
0: जी,
1: बातचीत को और एक गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।
0: सोनू निगम का जो अग्निपथ वाला गाना है,
1: हाँ,
0: अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी
1: बाकी
0: है
1: है
0: जिंदगी,
1: जी।
0: वो वाला सुनवा दीजिए।
1: तो चलिए सुनते हैं ये
0: जी
1: गाना।

0: शरद जी की आपके लेखन की दुनिया में क्या भूमिका रही है?
1: शरद जी से भी जब कोई ये सवाल करते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई मेरी भूमिका कुछ नहीं रही है, और इतनी भी नहीं है कि मैं उसका लिखा हुआ पढ़ता हूँ, वो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हैं, टीका टिप्पणी भी नहीं, लेकिन जब भी समाचार पत्रों में कुछ आता है तो वो ज़रूर पढ़ते हैं और कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है और ऐसा सब। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ करने के लिए उनकी इजाज़त लेना पड़ती है, मैं अपने कार्य करती हूँ, है ना, उनका अपना फील्ड अलग है, मेरा अलग है, लेकिन कभी उन्होंने किसी प्रकार की रोक ऐसी नहीं लगाई कि नहीं ये नहीं करो ये नहीं करो।
0: जी
1: और लेखन चूंकि मैं मुझे प्रिय रहा है और लेखन के लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार पाती हूँ, उनकी भूमिका इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होती,
0: कि
1: मेरा जो
0: उनके
1: लेखन का वक्त है वो दोपहर का है,
0: अच्छा जी
1: कभी कभी सुबह भी होता है, ये कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे लेखन के लिए मुझे एकांत चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज़ आई कि मुझे ये लिखना है, तो अपने किचन में मैंने एक डायरी और पेन रखा हुआ है, वो फिक्स है,
0: बढ़िया
1: कभी कभी काम करते करते कोई विचार आया
0: तो नोट कर
1: तो
0: लेते हैं।
1: आटा गूंद रहे हैं और फटाक से हाथ धोए और पहले उसके चार बिंदु लिख लिए
0: वाह क्या बात है।
1: जी, और फिर उसको विस्तार दे देती हूँ, क्योंकि कई बार कोई बिंदु आपके दिमाग में आता है वो छिटक जाता है कई बार, तो वो लिख लेती हूँ। तो मुझे ये शिकायत कभी नहीं रही कि अरे मुझे
0: लिखने का वक्त नहीं
1: एकांत
0: मिलता।
1: नहीं मिला या लिखने का वक्त नहीं मिला। वक्त तो चुराना पड़ता है किसी भी काम के लिए, और वो वक्त चुराने में मुझे लगता है कि मैं माहिर हूँ, चुरा लेती
0: जी तो ये
1: हूँ
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: जी
0: तो ये आपकी जो प्रेम कहानी है कैसे शुरू हुई और कहाँ मुलाकात हुई वो एक दृश्य भी बताती चलिए।
1: मुलाकात हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, वो डॉक्टर थी, अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम उनके उनके यहाँ मिले, उस वक्त मैं पढ़ रही थी, बीए कर रही थी, और शरद जी भी वहाँ आए अपने मित्र के साथ, तो बाद में उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मुझे तो ना इस लड़की से शादी करनी है, ये जो
0: अरे
1: येलो फ्रॉक वाली लड़की से। फिर उसके बाद हम काफ़ी समय तक नहीं मिले, लेकिन फिर इनकी एक और मित्र है, उनकी पत्नी के पड़ोस में हम रहने चले गए किराए
0: जी
1: से, तो जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने जाके पीसीओ से, वो एसटीडी पीसीओ होते थे उस समय, वहां से इनको फोन किया कि अरे आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो हमारे घर के बाजू में रहने आई है। तो शरद जी वहां आ गए और हमारी दो चार मुलाकातें हुई, तब तक मुझे इस चीज का
0: अंदाजा नहीं था।
1: अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ इनके मन में है। फिर लेकिन इन्होंने होली वाले दिन जो है वो प्रपोज कर दिया,
0: होली के दिन
1: होली के दिन प्रपोज किया, रंगे पूते थे बिल्कुल, और पहले उस समय ग्रीन और पिंक कलर चला करता था, उसमें रंगे हुए थे, लेकिन तो मैं थोड़ा सा चौंक गई कि अरे एकदम अप्रत्याशित था वो। तो उस समय तो मैंने, और मेरी चूंकि एग्जाम चल रही थी तो मुझे पूरा ध्यान उधर देना था, लेकिन पता नहीं फिर कुछ मेरे मन में भी कुछ तो अंकुरित हुआ होगा, तो फिर फाइनली हम लगभग 1 महीने के बाद में मेरी रजामंदी रही है।
0: ज्योति जी एक बार फिर हम आपके लेखन की दुनिया में लौटते
1: जी
0: हैं। आपकी जहाँ तक मुझे जानकारी है 17 किताबें हैं
1: जी
0: और बहुत सारी किताबों को पुरस्कृत किया गया।
1: जी
0: मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला।
1: जी
0: शब्द साधिका सम्मान से आपको
1: जी
0: सम्मानित किया गया।
1: जी
0: किस कृति के लिए मिला और वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका?
1: ये जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मुझे मिला है, ये मेरी पुस्तक यात्राओं का इंद्रधनुष के लिए मिला, इसमें मेरे सारे यात्राओं के वर्णन हैं,
0: जी
1: और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अखिल भारतीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान
0: गौरव
1: की
0: की
1: बात
0: बात है।
1: थी, गौरव
0: बिल्कुल
1: की बात थी। यात्राओं के वृत्तांत का चलन अंग्रेजी में बहुत है, हिंदी में बहुत कम है,
0: जी
1: वो किताब जब चयनित हुई तो मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। हमको जब भी मैं यात्राएं करती हूँ तो आने के बाद में सब थक के सो जाते हैं, लेकिन मेरी आदत चूंकि सुबह जल्दी उठने की है तो 5 बजे नींद खुलती है और मैं डायरी लेके पिछले दिन की तमाम बातें नोट कर लेती हूँ,
0: बढ़िया।
1: तो जब हम यात्रा वृत्तांत लिखने लगते हैं तो वो सारी चीज़ें काम आती हैं। तो मैं जब भी बाहर से आती हूँ सारे यात्राओं के वृत्तांत लिखती हूँ, तो जब बात पहाड़ों की हो रही थी

0: जितनी भी कठिन यात्राएं हैं हम कर चुके हैं
1: जी जी
0: जिसमें सिक्किम के लेह लद्दाख के ये सब तो थे ही, इसके अलावा जो हमारी प्रमुख यात्रा है वो है कैलाश मानसरोवर की। वो अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर तो है ही, कैलाश पर्वत में एक चुंबकीय आकर्षण है। मुझे लगता है वो हमको अपनी ओर खींचता है। जब हम 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जब कैलाश के चरण स्पर्श को जाते हैं
1: जी,
0: तो मेरा अनुभव तो ये था कि मैं वहां से लौटना ही नहीं चाहती थी।
1: वाह क्या बात है।
0: और मुझे मालूम नहीं ये आस्था है क्या है, कुछ तो स्पिरिचुअल है। और वहां मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये भाव वहां पर आते हैं। और कठिन यात्राओं में 2 बार मैंने स्कूबा डाइविंग किया है, क्योंकि मुझे मछलियों की तरह तैरना अच्छा लगता है।
1: कहाँ पर की है स्कूबा डाइविंग?
0: स्कूबा डाइविंग मैंने एक तो मालवण में की है और दूसरा स्कूबा डाइविंग मैंने किया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप वाला थोड़ा गहरे पानी में किया है, पर वो भी अद्भुत अनुभव रहा
1: जी।
0: और इसी तरह मैंने हवाई जहाज से कूदी मारी, स्काई डाइविंग हमने की दुबई में, और उसमें भी जो चिड़ियाओं की तरह उड़ने वाला था वो पैरासेलिंग और स्काई डाइविंग से पूरा हो गया सपना।
1: तो चलिए इस खुशी के नाम एक गाना सुनते हैं।
0: शान की आवाज में हम एक गाना सुन लेते हैं, चांद सिफारिश जो करता हमारी।

0: इस गाने के बाद अब आपके एक और हुनर की बात हमें याद आ रही है, वो है कला, मांडना आर्ट,
1: जी
0: जिसमें भी आप माहिर हैं। तो ये कहाँ से सीखा, कहाँ से इसका बीज पड़ा आपके मन में?
1: तो दरअसल मेरा बचपन जहाँ बीता वहाँ पर बाड़ा होता था, एक गुआड़ी बोलते थे उसको मालवा में।
0: जी।
1: तो 16-17 घर थे और हर घर के आगे एक कच्चा ओटला हुआ करता था। वो ओटले का बनावट ऐसी होती थी, चौकोर होता था वो, हर घर के आगे एक ओटला। तो ओटला कैसा होता था कि वो पीली मिट्टी और गोबर से लीप के उसको बनाया जाता था।
0: जी।
1: एक छोटा सा, समझ लीजिए, सिर्फ एक एक सीढ़ी ऊंचा होता था वो। तो जब उस पर पीली मिट्टी और गोबर का लेप हो जाता था तो बिल्कुल प्लेन होता। और चूंकि मालवा की संस्कृति है मांडना, तो उस पर गेरू और खड़िया यानी सफेद और लाल रंग से डिजाइन बनाई जाती थी।
0: जी।
1: वो जो पुरानी परंपराएं हैं वही डिजाइन होती थी। तो ये हमने हमारी दादी से, बुआ से, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से, चाची भाभी, पहले तो ये रिश्ते होते थे ना, आंटी अंकल तो होते नहीं थे, तो कोई
0: काकी
1: भाभी,
0: चाची
1: चाची,
0: होती थी,
1: काकी, मामी, बुआ
0: दादी
1: जी, मामी
0: नानी।
1: जी, ऐसे होता था। तो वो लोग, चूंकि माँ नौकरी करती थी, तो जब सब महिलाएं मांडे बनाती थी तो चूंकि माँ नहीं है तो चलो भाई माँ की बेटी को पकड़ो, है ना। तो मुझे कहते चलो गुड्डी, गुड्डी मेरा बचपन का नाम था, गुड्डी चलो आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, मांडो बनाई ले। मालवी बोली में बोलते थे हमारे, आ जा तू भी। तो मैं अपना खेरू गड़िया एक कटोरी में लेके बैठ जाती थी, खड़िया, और उनके देखा देखी कुछ कुछ टिपकी लगा के गोला बनाया, ऐसे करके मैंने शुरू किया। तो बीज जो था वो वहां पड़ गया। फिर वो बनाती रही, फिर शादी होकर आए तो रंगोली बनाना घर में, आ घर के आगे ऐसे सब। उन दिनों हमारे यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा था तो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे। चूंकि मांडना प्रेम था और मेरा कॉलेज में बीए में मेरा एक सब्जेक्ट पेंटिंग था,
0: जी।
1: तो हाथ चलते थे, ब्रश चलता था, तो मैंने उसको टेराकोटा से पेंट करके और उस पर रेड वाइट कलर से अपना बना दिया, मरून कलर से उसको पोत लिया और वाइट कलर से उस पर डिज़ाइन बना ली, कुछ मिरर चिपका दिए छोटे छोटे ऐसे करके। तो मेरी जो छोटी बेटी है चानी, उससे बोला मम्मी बहुत सुंदर बना है, आप थोड़े ज़्यादा बनाओ ना, अपन एग्जीबिशन करते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ जी। तो वो क्या, थोड़ा बिजनेस फैमिली वाली है ना,
0: हाँ,
1: तो चूंकि शरद
0: तो
1: जी बिजनेस में, तो उसके भी दिमाग में बिजनेस के आइडियाज आते रहते हैं। तो उसने बोला मम्मी एग्जीबिशन करते हैं। तो मैंने जो पहले जो मांडने बनाए वो करीब 300 के करीब मांडने बनाए मैंने,
0: वाह, क्या बात है।
1: वो फिर लकड़ियाँ प्लाई लिया ऐसे करके। और आप यकीन मानिए कि मेरी जो पहली एग्जीबिशन थी उसमें सिर्फ 8 मांडने वापस घर आए, बाकी सारे बिक
0: बिक
1: गए।
0: गए,
1: जी।
0: वाह क्या बात है।
1: तो इस तरह से अलग अलग होटल्स में वहाँ पर एग्जीबिशन होती थी तो वो की। और उस वक्त तो सबको बना बना के गिफ्ट में भी यही दे दिया, कभी किताब कभी मांडना, ऐसा
0: जी
1: हस्तलिखित या हाथ की चीज़ की वैल्यू अलग होती है, उस वो
0: बिल्कुल।
1: अनमोल होती है दरअसल।
0: अब लघु कथाओं की बात करते हैं। लघु
1: जी
0: कथाएं भी आपने लिखी हैं और
1: जी
0: संग्रह आए,
1: जी
0: कुल कितने लघु कथाओं के संग्रह आए, और किसी लघु कथा का जिक्र कीजिए यहाँ पर।
1: जी मेरे पहला लघु कथा संग्रह था मेरा जलतरंग, दूसरा था बीजू का, तीसरा था 99 का फेर, और जो चौथा लघु कथा संग्रह है मेरा वो है गोद भराई, और वो मैंने मालवी में लिखा है। मतलब मालवी हमारे यहाँ की बोली है,
0: जी।
1: मैं चूंकि हिंदी लिखती हूँ, हिंदी ही मेरा विषय रहा है, लेकिन जिस परिवेश में आप रहते हैं जहाँ बोलियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि बोलियाँ बचाना भी बोलियों वालों का दायित्व है।
0: जी।
1: तो चूंकि मैं मालवा से हूँ तो मैंने एक पुस्तक मेरी मालवी बोली में मैंने निकाली है, तो एक लघु कथा संग्रह वो है। और मेरा जो पांचवा लघु कथा संग्रह है वो मेरे ख्याल से अगले महीने मेरे हाथ में आ जाएगा,
0: अच्छा।
1: जो षष्ठी पूर्ति के नाम से आ रहा है, क्योंकि जब मैं, मुझे लगा 60 बरस हुए तो 60 बरस में 60 लघु कथाएं तो होनी चाहिए,
0: क्या
1: तो
0: बात है,
1: काफी समय से
0: वाह।
1: लिख रही थी और इस तरह से वो, तो मेरे कुल जमा भी 5 लघु कथा संग्रह है।
0: बढ़िया।
1: तो मैं, आप कहें तो एक लघु कथा यहाँ पर सुनाऊं मैं।
0: जी
1: दरअसल लघु कथा का शीर्षक है ढक्कन।
0: जी
1: ढक्कन। विष्णु जी और सरला जी दोनों ही उस सुबह अपने दैनंदिनी कार्यों में व्यस्त थे। जीवन

0: सरला जी ने उनके हाथ से बरनी लेते हुए हंसकर कहा, मैं इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती आपको, अनजान मत बनो। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं, बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी क्या इसी दिन के लिए? उनके स्वर में नाराजगी थी। सरला जी ने मन ही मन सोचा, क्या सारी गलती बच्चों की ही है, क्योंकि वे अपने पति का स्वभाव भी जानती थी। लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, यह लीजिए, पतले कपड़े की सहायता से ढक्कन खुल गया है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगली बार थोड़ा ढीला छोड़ना होगा, ढक्कन को भी और रिश्तों को भी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक मुकम्मल लघु कथा आपने सुनाई।
0: लघु कथा की विशेषता ही यह है कि उसके अंत में एक पंच होता है।
1: जी जी जी
0: और वो पंच जो है वो पूरी लघु कथा का सार होता है।
1: जी
0: जी
1: ज्योति जी, लेखन की दुनिया में बहुत तरह के बदलाव आए हैं, लेकिन स्त्री लेखन आज कहाँ पर है? स्त्री लेखन में किस तरह के बदलाव आप महसूस करती हैं? किस तरह की चुनौतियाँ आज अभी भी कायम है?
0: चुनौतियाँ तो हैं
1: जी,
0: जब हम पुरुष प्रधान समाज में हैं तो चुनौतियाँ तो आती हैं, लेकिन स्त्री लेखन में एक जो बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है वो है खुलापन अधिक हो गया है। मैं उससे सहमत नहीं होती हूँ
1: जी,
0: क्योंकि मैं मालती जोशी की कहानियों को पढ़कर बड़ी हुई हूँ।
1: जी जी
0: उनकी कहानियों की नायिका स्वाभिमानी होती थी, लेकिन उनके लेखन में खुलापन कभी नहीं रहा। उनकी नायिकाएं दबी कुचली नहीं होती थी
1: जी।
0: उनकी नायिकाएं षड्यंत्रकारी भी नहीं होती थी, लेकिन अब खुलापन भी आ गया है और महिलाओं को षड्यंत्रकारी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कई जगह।
1: जी जी
0: मुझे लगता है वो आवश्यक नहीं है। कई बार मुझे कुछ लेखिकाएं कहती भी हैं कि तुम्हारे लेखन में इतनी सात्विकता की क्या जरूरत है। मेरा पैटर्न यही है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ
1: जी,
0: और उससे मुझे सुख मिलता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप लेखन कर रहे हैं, उससे आप सुख मिलता है और संतुष्ट हैं, तब तो आपका लेखन सार्थक है।
1: जी,
0: तो बदलाव आया है। दूसरा ये कि कई बार ऐसा सुनने में आता है और देखने में भी कि महिलाओं को, महिला लेखिकाओं को मतलब, संघर्ष अधिक करना पड़ता है
1: जी,
0: एक मुकम्मल स्थान उनको कई बार वो नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम अपना लेखन ईमानदारी पूर्वक करते रहें।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हूँ।
0: और अपने प्रयासों को जारी रखें तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना स्थान बनाने से कोई रोक सकेगा।
1: बिल्कुल, हमें ये बताइए कि इतनी सारी किताबें हैं, तकरीबन 17 किताबें आपकी आ गई हैं
0: जी,
1: तो आपके मुख्य मूल रूप से विषय कहाँ से उठाती हैं, कौन से विषय होते हैं?
0: विषय आसमान से नहीं आते है ना, विषय हमारे चारों तरफ होते हैं। मैं यहाँ इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ क्योंकि देखते तो सभी हैं लेकिन उन्हें पकड़ने की और फिर अभिव्यक्ति की जो ताकत है वो मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर प्रदत्त है, जिसे लोग गॉड गिफ्ट कहते हैं। एक अखबार में खबर आई थी, एक बच्चे को, कोई शिशु था, वो झाड़ी में फेंक के कोई चला गया, नवजात शिशु
1: जी।
0: अब नवजात शिशु झाड़ी में फेंक के गया तो पता चला कि वो तो लड़का है। तो एक कोई अम्मा ने बोला, अरे लड़का, छोरो फेंक गई, छोरी होती तो बात थी। मतलब देखिए समाज की मानसिकता कैसी है कि अगर लड़की को फेंक दिया होता तो बात समझ में आती, लड़के को क्यों फेंका? तो ये बीज हो गया। अब इसको विस्तार देकर के कथा का रूप हो गया। एक बार मैं अपने एक्टिवा पे जा रही थी और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, तो मैंने बोला कि भाई रेड लाइट है, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि ऊपर से निकल जा।
1: अच्छा,
0: हाँ ऊपर से निकल जा भाई,
1: हाँ, जल्दी है तो।
0: लेकिन वहां उस 39 सेकंड में खड़े खड़े दिमाग

0: राजनीति पर महिलाएं नहीं लिखती। मन्नू भंडारी जी की महाभोज की हम बात करें तो बहुत कम है जिन्होंने महिलाओं ने राजनीति पर लिखा है। तो मेरा एक उपन्यास है पार्थ तुम्हें जीना होगा, वो पूरा राजनीति पर है उपन्यास। और उसकी नींव ही ये पड़ी कि मुझे, मैं उन दिनों राजनीतिक परिदृश्य से बहुत विचलित थी और मुझे लगता था कि ऐसा कोई युवा और ईमानदार नेता होना चाहिए जिस पर जनता भरोसा करे, जो ईमानदार है, युवा है और अपने कार्य के प्रति समर्पित है।
1: जी जी
0: तो वो अर्जुन के रूप में मेरे सम्मुख आकर के खड़ा हो गया। तो मैंने बस उसके बिंदु लिखे कि ये उपन्यास मुझे लिखना है और वो मैंने लिखा। और हमारे आसपास जो सामाजिक विसंगतियां होती हैं वो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
1: जी जी
0: और माँ के लिए ही बस दो लाइनें कहूंगी कि गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी,
1: वाह,
0: गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी, संस्कारों का धागा जो था माँ के पास।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। अब चलते चलते कोई एक कविता और सुनाना चाहेंगी?
0: मैं अंतिम, इसकी अंतिम तो नहीं, अंतिम से एक पहले वाली कविता सुनाती हूँ। उसका शीर्षक है अर्थी। पूर्ण हुआ है जीवन अब तो, विदा की बेला आई है, बांसों का ताना बाना बुन अर्थी आज सजाई है, जीते जी जो मिल ना पाए कांधे सारे आज मिले हैं, चला चली की इस बेला में किसी से भी ना शिकवे गिले हैं, जीवन भर जो इर्द गिर्द रही उसी काष्ठ की अर्थी सजी है, नया जन्म पाने को ही तो आत्मा ने यह देह तजी है। इसका शीर्षक है खिड़की। यह भी कविता है दुनिया काट की किताब से ली है
1: जी।
0: वह लकड़ी की खिड़की, शीशा भी नहीं है जिसमें, जब खुलती है तो भीतर आ जाते हैं सपने, हवा के साथ कभी कभी ले आती है मोगरे की सुगंध भी, और जब रहती है बंद तब भी रात में निकला चांद महसूस कर लेते हैं सपने सारे।
1: क्या बात है, बढ़िया कविता, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने साझा की ज्योति जी,
0: जी
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: मुझे भी आपसे मिलकर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग मिला योगिता जाधव से, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के मेहमान कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है, कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा। पिटारा, पिटारा, पिटारा।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर
0: एक उत्तम जीवन,
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं बस वही एक चेहरा नजर आता है। इंसान के तमाम चेहरों में बस वही एक पहचाना सा चेहरा चारों ओर दिखाई देता है। जे चाहता है बस उसी का दामन थाम जिंदगी की राहों पर चलते रहें और जिंदगी का ये सफर कभी खत्म न हो।

किसे पता था जुड़ेंगे दो दिलों के तार, किसे पता था दिल समंदर बन जाएगा, किसे पता था कि मिलेगा कोई साझीदार और बांट लेगा सारे गम और खुशियां। नरमो नाजुक रेशमी अल्फाज से जमाने की तलखी सोख लेगा। कहां पता था आंखों की नमी पर मुस्कानों के मोती सजा देगा। कहां पता था वो खुशियों के चांद को जिंदगी में धर देगा। नहीं पता था दो दिलों का, दो मौसम का, दो शहरों का चांद एक ही होगा।

चांद के पार चल। कभी कभी मोहब्बत का जादू इतना हसीन होता है कि जिस मोड़ पर हम कदम रखें वहां कोई अपने आप मौजूद मिलता है। रिश्तों की वही मिठास, वही चुपचाप साथ चलने का, हम चले तो साया भी कदमों के साथ था। राहें अजनबी थी मगर वो पास था। प्यार जब सच्चा हो तो जुदाई का फासला भी मिट जाता है।

0: से न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: छाया गीत कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज में बयां करना मुश्किल होता है। कुछ लम्हे यूं गुजरते हैं जैसे मुट्ठी में बंद रेत, मुट्ठी से फिसल कर झर जाते हैं। कुछ लम्हे सदी की तरह ठहर जाते हैं। इन ठहरे हुए लम्हों में दिल बेकरार रहता है, बेचैन दिल को सुनाई देती है कोई पुकार।

जिंदगी की राहों में कभी फूल बिछे होते हैं तो कभी कांटे, मगर दिल कहता है अगर साथ में प्यार हो तो हर सफर आसान हो जाता है। ये राहें अक्सर हमें कई मोड़ पर ले जाती हैं, कभी मुश्किलें, कभी इम्तिहान और कभी दिलकश सपनों की डगर। लेकिन इन सब के बीच एक जज्बा है जो हमें आगे बढ़ाता है, वो है प्यार। अगर प्यार करने वाले का साथ अधूरा ही छूट जाए तो जिंदगी वीरान निर्जन जंगल सी हो जाती है।

जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमेशा हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं, कोई अपना हमें छोड़कर जाने ही नहीं देता। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका साथ हमें अपने गिरफ्त में ले लेती है। हम कई बार उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहां छोड़ पाते हैं, बस ये गीत गुनगुना कर रह जाते हैं।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSKY, सीखो भी कमाओ भी।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10,00,000 दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2,00,000 भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2,00,000 क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 6 बजने वाले हैं, अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
2: लिखते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: नोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
0: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं,
2: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
2: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
0: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं, ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
2: अजी जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
0: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है।
2: जी,
0: आप कहेंगे ये ठीक भी है, क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
2: श्रोताओं, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
0: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं।
2: जी,
0: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
2: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
0: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है, लेकिन ये जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
2: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है, तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
0: जी हाँ श्रोताओ, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था?
2: जी,
0: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओं, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
2: जी हाँ श्रोताओं, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है।
0: जी श्रोताओं, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर,
2: जी,
0: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारे आभार के पात्र नहीं हैं? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, मशीनों को रिटायर करने की जापान की एक छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है, उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
0: तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए
2: जी,
0: क्योंकि उसने भी कभी ना कभी आपकी सेवा की है।
2: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
0: श्रोताओ, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
2: जी, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
2: जी, तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न है,
0: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है।
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकना और उसका उचित स्थान पर निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: CIET NCERT presents the program द स्मार्ट मंकी।

0: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
2: नमस्कार साथियों।
4: मेरा भी नमस्कार।
2: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
4: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
2: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
4: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोक गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
2: तो चलिए हम बता देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
4: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
2: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खांट जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
4: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
2: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरे ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
4: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
2: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
4: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
2: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
4: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।

0: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
1: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
0: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
1: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
2: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
1: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
0: साहब ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
1: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता? वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
0: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
1: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
0: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
1: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
0: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
1: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो?
0: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
1: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
0: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
1: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
0: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
1: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
0: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून

0: 1947 को राजस्थान के इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
1: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
0: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
1: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
0: कालीबाई, तुम्हें हमारा
1: सलाम।
2: कालीबाई, भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
4: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है।
1: और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी एफएम बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं संध्या वंदन।

संध्या वंदन का आनंद आप अभी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है, शाम के 7 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचारों को सुनने का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। सीईओ ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और राम मंदिर परिसर से संबंधित मुख्य परिचालन जिम्मेदार

0: कार्यों को संभालेंगे। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की जानकारी दी है। इनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भगचंद का और शिकोहाबाद की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य निर्मला यादव शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिनों के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल संसद के अध्यक्ष अजारेल अर्नेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान दल आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर किए जा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। बलजीत कौर और स्कालजेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रेमो साह को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। मुंबई शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। हिंदी में समाचारों के बाद अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
3: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
4: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो

इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:10 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के सातवें पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन किया। शिवपुर में बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। मंडी विश्राम गृह के लिए 60 लाख मंजूर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश में चलेगा सेवा संकल्प अभियान। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होंगे 13 बड़े कार्यक्रम। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का कहर, चित्रकूट और सतना सबसे ज्यादा प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया और देश के 7वें पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से प्रदेश और आसपास के राज्यों के डाक कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी और नई पीढ़ी के कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा। श्री सिंधिया ने कहा कि अब प्रदेश के डाक कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए करीब 600 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि देश में पहले से ही 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर संचालित हैं। शिवपुरी का नया केंद्र डाक सेवाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाने के साथ कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्वालियर के मेला मैदान में प्रदेश स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव एवं किसान समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। किसान कल्याण वर्ष के तहत मुख्यमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड, 0% ब्याज योजना के सरलीकरण और कृषक कवच योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार युवाओं और किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है।
1: बदलते दौर में ये ग्वालियर, भिंड, मुरैना, मालवा, महाकौशल, विंध्य, पूरा प्रदेश बदल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब आर्थिक समृद्धि के लिए पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन, जो आपको करना वो योजना तो मिल ही रही है, लेकिन अब उद्योग धंधे के लिए भी, युवाओं को काम दिलाने के लिए भी, राज्य की समृद्धि के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अन्नदाताओं को आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं।
2: जिस भगवान बलराम के हाथ में हल था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी अन्नदाता के हाथ में आज ड्रोन पहुंच गया है, आज सेंसर पहुंच गया है, आज डिजिटल तकनीक पहुंच गई है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अन्नदाताओं को आधुनिक युग में विश्व के सबसे आधुनिक किसान बनाने का संकल्प लिया है।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर में बलराम कृषि महोत्सव और किसान मेले को वर्चुअल रूप से भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को लगातार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और अब किसानों को सिंचाई के लिए दिन में भी बिजली की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कृषि उपज मंडी में नया विश्राम गृह बनाने के लिए 60 लाख रुपए की घोषणा भी की। वहीं राजगढ़ के ग्राम पांडा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल शामिल हुए और अशोकनगर के कृषि विज्ञान केंद्र में कलेक्टर साकेत मालवी की अध्यक्षता में आधुनिक खेती व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर अब जिलों में अभियान के तहत हो रही गतिविधियों और उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। अभियान के पहले महीने में 5,64,000 से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और 8,06,000 से अधिक लोक सेवा गारंटी आवेदनों का निराकरण किया गया है। जिलों को हर सप्ताह अपने काम की जानकारी अगले सोमवार तक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। संभागायुक्त और संबंधित विभाग पोर्टल के माध्यम से जिलों की गतिविधियों की नियमित निगरानी करेंगे।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 सितंबर को सीहोर में सीजी पावर की नई ट्रांसफार्मर यूनिट से पहले ट्रांसफार्मर के रोल आउट की शुरुआत करेंगे। करीब 50 एकड़ में बनी यह इकाई देश की बड़ी पावर ट्रांसफार्मर निर्माण सुविधाओं में शामिल है। यहां 200 केवी से 1200 केवी तक के बड़े ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे जिनका उपयोग बिजली, रेलवे, डेटा सेंटर और सोलर सहित रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं में किया जाएगा। इस इकाई से 2000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। यहां के ट्रांसफार्मर देश के साथ विदेशों में भी भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाई जाए। अभियान के दौरान प्रदेश में 13 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में

जनसंवाद और जनकल्याण गतिविधियों के साथ विकास पुस्तिकाएं लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। 17 सितंबर को उज्जैन के महाकाल महालोक में बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर को राज्य स्तरीय श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया जाएगा। घर घर गोकुल घर घर गोपाल की संकल्पना के साथ प्रदेश के सभी 55 जिलों में 111 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि प्रदेश के 7,500 से अधिक श्रीकृष्ण मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाएगा और 1,500 से अधिक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। मुख्यमंत्री निवास पर भी विशेष आयोजन होगा जिसमें राधा कृष्ण की वेशभूषा में 101 से अधिक बच्चे शामिल होंगे। प्रदेश में अब चीनी के स्टॉक को लेकर नई सीमा तय की गई है। कोई भी डीलर 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा और इसे 30 दिन से ज्यादा समय तक भंडारित भी नहीं किया जा सकेगा। सभी डीलरों को केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपने चीनी स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस संबंध में सभी कलेक्टरों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं थोक उपभोक्ता 15 दिन से ज्यादा का चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे, जिसमें हलवाई, मिठाई विक्रेता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे उपभोक्ता भी शामिल हैं। स्वयं के जुलाई 2026 के सेमेस्टर के गैर एनपीटेल पाठ्यक्रमों में पंजीयन की तारीख को बढ़ाकर अब 15 सितंबर कर दिया गया है। पहले पंजीयन की तारीख 31 अगस्त थी। अब विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन कोर्स चुनने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। पोर्टल पर 1700 से ज्यादा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषय शामिल हैं। वहीं इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान प्राणी संग्रहालय में शेरनी सुंदरी ने करीब 3 दिन पहले 2 शावकों को जन्म दिया है। सुंदरी पिछले करीब 1 सप्ताह से गुफा में रह रही थी, जिससे जू प्रबंधन को उनके प्रसव की उम्मीद थी। इससे पहले करीब 8 महीने पूर्व शेरनी मेघा ने भी 3 शावकों को जन्म दिया था। अब नए शावकों के जन्म के बाद जू में शेरों की संख्या 14 हो गई है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम की वजह से बारिश का दौर जारी है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि सतना और चित्रकूट सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और रामघाट की करीब 400 दुकानें और 20 से 25 होटल पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में अति भारी और 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश को देखते हुए सतना में कल स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ियों में छुट्टी घोषित की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में मूसलाधार बारिश के चलते बाणसागर बांध के 6 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं गुरुवार को जिले के बुढ़ार क्षेत्र में जनविश्वास शिविर का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन के कालिदास कन्या महाविद्यालय में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। झाबुआ और अनूपपुर जिलों में पंचायत व निकाय उप निर्वाचन 2026 का कार्यक्रम जारी होते ही आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। आगरमालवा जिले के निवासियों से हरिद्वार और ऋषिकेश की निःशुल्क तीर्थयात्रा के लिए 9 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खंडवा जिले के ग्राम चम्माटी में एचआईवी एड्स सघन जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीणों को जांच और बचाव की जानकारी दी गई। यह अभियान 12 सितंबर तक चलेगा। देवास जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्वालियर में आयोजित बलराम जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पुरस्कृत किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के 7वें पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन किया। शिवपुर में बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। मंडी विश्राम गृह के लिए 60 लाख रुपए मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश में चलेगा सेवा संकल्प अभियान। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होंगे 13 बड़े कार्यक्रम। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का कहर, चित्रकूट और सतना सबसे ज्यादा प्रभावित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:21 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
2: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि ₹1,000 से ₹2,499 तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। ₹2,500 से लेकर ₹7,499 तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 7:30 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब आइए चलते हैं आकाशवाणी भोपाल और सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा।

भैया बहनों, आजकल एक्वापोनिक्स को चलन बढ़ रहा है। एक्वापोनिक्स मछली पालन और बिना मिट्टी के पौधन की खेती को एक ऐसा मेल है जिमें दो एक दूसरे की मदद करत है। इमें मछलियन के टैंक को पानी, जिमें मछलियन को मल और अमोनिया होत है, सीधे पौधन की क्यारियन में भेजो जात है। उत्ते मौजूद बैक्टीरिया ई कचरा को पौधन के लाने

0: पोषक तत्व में बदल देते हैं। इसके संबंध में अपन और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुनत है जो भेंट वार्ता एक्वापोनिक्स मछली के साथ साथ पौध उत्पादन विशेषज्ञ है डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव और इनसे बातचीत करी है आनंद कृष्ण वर्मा भैया ने।
1: हम लोग अपनी खेती किसानी के कामों के साथ साथ में आजकल और उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं जिससे हमें अतिरिक्त आमदनी का भी फायदा होता है। इस अतिरिक्त आमदनी को कमाने के लिए कई बार हम कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो प्रायः जिनके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की हुई होती है या जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। एक नई तकनीक है जिसको कहा जाता है एक्वापोनिक्स। इसका मतलब है कि मछलियों के साथ साथ में पौधों का उत्पादन करना। मतलब कहने का ये है कि मछलियों का जो टैंक है, मछलियों पालन करने का जो तालाब होता है, उसी में कुछ पौधे भी उगा करके और उनसे भी हम लाभ कमा सकते हैं। तो पहले हम केवल मत्स्य पालन अकेले का जो काम कर रहे थे उसमें ये अतिरिक्त रूप से हम पौधों के उत्पादन का काम भी करके अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये एक बिल्कुल नई चीज थी और एक अलग हटके बात थी। तो इसको समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव को, जो सहायक प्राध्यापक के पद पर एक्वाकल्चर विभाग सीएच यूनिवर्सिटी भोपाल में पदस्थ हैं। तो डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत नमस्कार।
2: धन्यवाद सर।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हमने ये एक्वापोनिक्स का नाम तो सुना है और हमने थोड़ा बहुत उसको समझा भी कि ये मछलियों के साथ में पौधे उत्पादन की कुछ तकनीक है, लेकिन ये है क्या चीज और ये पारंपरिक खेती से इसको कैसे अलग माना जा सकता है?
2: एक्वापोनिक्स एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के पानी के अंदर ही मछली पालन और सब्जी का उत्पादन एक साथ किया जाता है। यह पारंपरिक खेती में जहां मिट्टी और बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, वहीं एक्वापोनिक्स पूरी तरह मिट्टी रहित और एक बूंद चक्र पर काम करता है।
1: जी, तो ये मछलियां और पौधे एक साथ एक ही तालाब में रहते हैं, ये सुनने में बड़ी रोचक बात लग रही है। ये चक्र पूरा कैसे काम करता है?
2: यह एक प्राकृतिक चक्र है जिसमें टैंक में मौजूदा मछलियों का अपशिष्ट जैसे मल और मूत्र में अमोनिया उपस्थित होता है।
1: अच्छा जी।
2: पानी में मौजूदा लाभकारी बैक्टीरिया इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं जो पौधों के लिए मुख्य भोजन होता है। पौधे इस पानी में से पोषक तत्व खींच लेते हैं जिससे पानी साफ होता है, वहीं पानी वापस मछलियों के टैंक में चला जाता है।
1: तो इस तरह से पौधे और मछलियां दोनों एक दूसरे के लिए एक व्यवस्था का काम कर रहे होते हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं कि पानी का संकट सब तरफ है, तो इस तकनीक में पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है, आपने जैसा कि बताया, तो इसमें पानी कैसे बचता है, किस तरीके से इसमें पानी की बचत होती है?
2: इस तकनीक में पारंपरिक खेती के मुकाबले 90-95% तक पानी की बचत होती है
1: जी।
2: इसमें पानी को फेंका या बहाया नहीं जाता बल्कि वही पानी लगातार रिसाइकल होकर घूमता रहता है
1: जी।
2: केवल वाष्पीकरण से ही कम हुआ पानी ही समय समय पर मिलाया जाता है।
1: अब ये बताएं कि इस जो व्यवस्था है इसमें किस तरह की मछलियां पाली जा सकती हैं और सब्जियां कौन कौन सी उगाई जा सकती हैं?
2: एक्वापोनिक्स प्रणाली में विभिन्न प्रकार की मछलियां पाली जा सकती हैं, जैसे तिलापिया, मागुर, रोहू, पंगेशियस। ये ऐसी स्पीसीज हैं या ऐसी जाति है जो आसानी से बढ़ सकती हैं। साथ ही पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, धनिया, मेथी, लेट्यूस बहुत तेजी से उगती हैं। इसके अलावा टमाटर, मिर्च, खीरा और स्ट्रॉबेरी भी बेहतरीन पैदावार वाले स्रोत हैं।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब ये बताएं कि जैसे हमें मछली भी पाल रहे हैं और साथ में ये सब्जियों की खेती भी साथ साथ हो रही है, तो उसके लिए क्या बड़े खेतों की जरूरत पड़ती है या हम लोग छोटे स्तर पर जैसे घरों में भी इसका वो कर सकते हैं?
2: एक्वापोनिक्स प्रणाली में कभी भी बड़े खेतों की जरूरत नहीं होती
1: जी।
2: इस प्रणाली के माध्यम से हम घर की छत, आंगन, बालकनी और किसी भी खाली पड़े छोटे शेड में आसानी से इसे स्थापित कर सकते हैं
1: जी।
2: इसकी जगह के हिसाब से छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है
1: जी। अब एक बहुत जरूरी सवाल ये आता है कि इस प्रणाली में हमारे यदि किसान भाई काम करना चाहें, खासतौर पर युवाओं को ये बात बड़ी आकर्षक लग रही होगी, तो यदि वे इस काम को करना चाहें तो इसमें लागत कैसी होती है और इसमें सरकारी सहायता वगैरह मिलने की कैसी क्या व्यवस्था है?
2: घर की जरूरत के लिए एक छोटा घरेलू सेटअप 15,000-25,000 रुपए में तैयार हो जाता है।
1: अच्छा।
2: व्यावसायिक स्तर पर लागत फार्म के आकार पर निर्भर करता है। भारत सरकार की सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक्वापोनिक सेटअप के लिए सब्सिडी और मानदेय तय है, जिसमें एससी एसटी महिलाओं के लिए 60% तक सब्सिडी दे है, वहीं सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए 40% सब्सिडी दे है।
1: अच्छा,

0: ये आपने अच्छी बात बताई। अच्छा डॉक्टर यादव साहब, अब आप ये बताएं, मान लीजिए हमारे युवा साथियों ने ये सेटअप तैयार कर लिया, तो उसकी देखभाल क्रम में ऐसी कौन सी सावधानियां रखना पड़ती हैं और सबसे बड़ी समस्याएं इसके सामने क्या आती हैं?
1: एक्वापोनिक्स प्रणाली में सबसे मुख्य काम है जो डेली मछली को दाना देना, पानी का पीएच स्तर और तापमान का जांचना होता है
0: जी।
1: मुख्य चुनौती बिजली का लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है ताकि वाटर पंप चलते रहें।
0: अच्छा।
1: इसके लिए सोलर और पैनल या इन्वर्टर जैसे बैकअप होना जरूरी है
0: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है, मैं एक बात और मुझे समझ में आई है कि जैसे आपने बताया कि मछलियों को केवल दाना देने की आपने बात कही, इसका मतलब ये है कि हमें हमारी जो सब्जियां यानी जो हम पौधे जो उगा रहे हैं उनके लिए हमें खाद या फर्टिलाइजर वगैरह देने की जरूरत नहीं है?
1: नहीं, जो उसमें उगाई गई सब्जियां हैं उनको बाहर से कोई खाद और फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है
0: जी।
1: जैसा कि अपन ने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि जो मछली का एक्सक्रीटा होता है मलमूत्र, वो ही खाद और फर्टिलाइजर का काम करता है
0: जी। मतलब इसमें खर्च केवल मछलियों के दाने का है?
1: हाँ, सिर्फ मछली के दाने का खर्च है
0: जी। जी, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो इसमें ये जो सब्जियां पैदा होती हैं इससे ऐसे तरीके से, तो ये सब्जियां कितनी सुरक्षित होती हैं स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए? क्योंकि आजकल हम सभी देख रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो ये सब्जियां स्वास्थ्य के हिसाब से कितनी सुरक्षित हैं?
1: एक्वापोनिक से प्राप्त उत्पाद 100% शुद्ध एवं केमिकल फ्री होता है।
0: अच्छा।
1: यदि आप पौधे पर कोई भी जहरीला रासायनिक कीटनाशक डालोगे तो उससे आपकी टैंक की मछलियां मर जाएगी।
0: हाँ, ये बात तो सही है।
1: इसलिए इस सिस्टम में केमिकल का उपयोग संभव नहीं है, इससे उगने वाली सब्जियां पूरी तरह ऑर्गेनिक होती हैं।
0: जी, तो ये आपने एक और अच्छी बात बताई कि ये पूरी सब्जियां ऑर्गेनिक होती हैं, इसका मतलब ही है कि ये सब्जियां स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सुरक्षित हैं और इनका मूल्य भी बाजार भाव भी अच्छा मिलता होगा
1: जी।
0: अब व्यापारिक दृष्टि से देखें तो इनसे और अच्छी आय कैसे हासिल की जा सकती है?
1: कमाई का दायरा बहुत अच्छा है एक्वापोनिक्स में
0: जी,
1: क्योंकि आपको यह एक जगह और एक ही लागत में दो उत्पाद मिलते हैं
0: जी।
1: ताजी मछली और ऑर्गेनिक सब्जियां। बाजार में ऑर्गेनिक सब्जियां और ताजी मछली की मांग हमेशा अच्छी बनी रहती है
0: जी, जी।
1: जिससे पारंपरिक खेती की तुलना में प्रति वर्ग फीट अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है
0: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक जरूरी सवाल ये और आ जाता है कि हमारे जो श्रोता आज ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो उनमें से बहुत सारे होंगे जिनके मन में ये बात आ रही होगी कि भाई ये काम हम भी शुरू कर लें, तो इस काम की शुरुआत करने के लिए कोई प्रशिक्षण वगैरह या क्या काम उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से इनकी इससे यात्रा की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए?
1: एक्वापोनिक्स की शुरुआत के लिए सबसे पहले उन्हें अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य मत्स्य विभाग या किसी प्रमाणिक संस्थान में 2 से 3 दिन का ट्रेनिंग ले, जिससे कि सीधे बड़े पैमाने पर करने के बजाय पहले घर में एक छोटा ट्रायल मॉडल लगाए, बारीकियां समझे और फिर इसे कमर्शियल लेवल के लिए कदम उठाए।
0: अच्छा, ये जो एक्वापोनिक के तरीके से जो उगाई गई सब्जियां होती हैं और उनमें जो पाली गई मछलियां होती हैं, इनके स्वाद के बारे में क्या बताएंगे आप?
1: इनका स्वाद साधारण सब्जियों से बेहतर और ताजा होता है, क्योंकि ये पौधे के प्राकृतिक पोषण तत्वों से बढ़ते हैं और इनमें कोई हानिकारक केमिकल या कीटनाशक नहीं डाला जाता है, इसलिए इनका स्वाद एकदम शुद्ध और प्राकृतिक होता है
0: जी। डॉक्टर साहब, अब आपने जैसा कि बताया था कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी आपने बात कही थी और कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करने के बारे में भी आपने बताया था, हमारे किसान भाइयों को खासतौर पर जो युवा साथी हैं उनको आप और क्या बताना चाहेंगे इस बारे में?
1: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यदि कोई भी किसान भाई और युवा इस प्रणाली में जुड़ना चाहता है तो सबसे पहले वह एक प्रशिक्षण ले। प्रशिक्षण के लिए वो अपने नजदीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य मत्स्य कार्यालय में विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं। वहाँ पे आयोजित 2-3 दिन का कोई भी प्रशिक्षण में भाग ले। प्रशिक्षण में भाग लेने से उन्हें इस तकनीक की बारीकियां समझने को मिलेगी।
0: तो ये आपने अच्छा बताया कि प्रशिक्षण भी उपलब्ध है। ये प्रशिक्षण निःशुल्क होता है या इसके लिए कुछ फीस लगती है?
1: जी, राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण आयोजित करवाए जाते हैं।
0: तो डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव साहब, आप आज हमारे बीच आए और आपने हमारे किसान भाइयों को एक्वापोनिक्स तकनीक के बारे में बताया जिसमें मछलियों के साथ में पौधे उत्पादन करके हमारे किसान भाई अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने एक बहुत नई चीज के बारे में, बिल्कुल ऐसी चीज जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी रही होगी, इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद।
2: अब अपन ने सुनी जो भेंट वार्ता एक्वापोनिक्स मछली के साथ साथ पौध उत्पादन विशेषज्ञ हते डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव और इनसे बातचीत करी हती आनंद कृष्ण वर्मा भैया ने। भैया बहना हरों अब समय हो है कि अपन अपनी जड़न की तरफ लौटे मने कीटनाशकन की बजाय और भी दूसरे जो नेचुरल वाले खाद पदार्थ होते हैं खाद होते हैं उनको हम गोबर की खाद है उनको इस्तेमाल करें और प्राकृतिक खेती इन्हीं में से एक है। प्राकृतिक खेती को अर्थ है प्रकृति के संग चल के खेती करो प्रकृति के विरोध नहीं। ई में न महंगे रासायनिक खाद न जहरीले कीटनाशक की जरूरत होते हैं। बीजामृत से बीज को उपचार जीवामृत से धरती को जीवन देवो आच्छादन से जमीन को ढक के पानी बचावो और जमीन में हवा पानी को संतुलन बनाए रखो ई के मुख्य उद्देश्य है। देसी गाय को गोबर गुड़ बेसन से बनो जीवान मृत मिट्टी के मित्र जीवाणुओं को जगात है जिसे लागत 80% तक कम हो जाते है और आच्छादन से खरपतवार नहीं उगत और सिंचाई आदि रह जाते है। प्राकृतिक खेती से अनाज फल सब्जी जहर मुक्त हो जाते हैं जी को बाजार में दुगनो दाम सुई मिलत है। जो खेती मिट्टी को उपजाऊ और किसान को कर्ज मुक्त और पर्यावरण को सुरक्षित बनाते है। सो जो तो हती जानकारी और अब अपन सुन लेते हैं जो वर्षा गीत अजुद्दी दास कबीरपंथी को गाव भाव।

भैया बहनहर चलो अब आप और उनको कछु सलाह दे देते। मूंग और उड़द में एंथ्रेकोनोज, एरियल ब्लाइट और चारकोल रॉट के लक्षण दिखाई दे पे टेबुकोनाजोल, टेबुकोनाजोल सल्फर, हेक्साकोनाजोल को अनुशंसित मात्रा में छिड़काव करवे। गर्डल बीटल के नियंत्रण के लाने ट्राइक्लोरफॉन को छिड़काव करवे। पत्ती खावे वाले कीटन की निगरानी करवे और आर्थिक क्षति स्तर पार होवे पे अनुशंसित कीटनाशकन को छिड़काव करवे। पीलोमोजिक रोग के वाहक सफेद मक्खी के नियंत्रण के लाने थायमेक्सोथाम इको लक्षण देखते ही छिड़काव कर देवे। कीटन की निगरानी के लाने पीले स्ट्रिकी ट्रैप, लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप को इस्तेमाल करवे। लगातार बस कार्य में खेत में जल भराव ना होने देवे और उचित जल निकासी की व्यवस्था सुई करवे। एंथ्रेकोनोज, एरियल ब्लाइट और चारकोल रॉट के नियंत्रण के लाने अनुशंसित फफूंद नाशी को छिड़काव करवे। सफेद मक्खी और पत्ती खावे वाले कीटन की निगरानी करवे और आवश्यकता अनुसार इनको नियंत्रण करवे। खेत में जल भराव से बचने के लाने जल निकासी की व्यवस्था करें। फल उद्यान में आम, अमरूद, संतरा, नींबू, आंवला के पौधन के चारों तरफ थाला, गोबर की सड़ी खाद और रासायनिक उर्वरकन की अनुशंसित मात्रा को प्रयोग करवें। नए पौधन की रोपाई के लाने गड्ढन की तैयारी करके प्रत्येक गड्ढा में 15 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद मिलावें। सो जो तो हती सलाह और अब आपको सुनवाते हैं एक दादरा बीना श्रीवास्तव को गांव भाव।

भैया बहनाहरों, अब आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रमन के बारे में। कल सवेरे 6:45 पर कृषि चर्चा में आप और उनको सुनवा है कृषि में समसामयिक सलाहकार विशेषज्ञ हुए डॉक्टर कृष्ण कुमार नीमा। कल शाम के 7:30 से लेकर 8 तक आप और सुनो कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आप सुनो धान एवं सोयाबीन में समन्वित व्याधि प्रबंधन, ई विषय पर डॉक्टर ऋषिकेश मंडलोई से ले गई भेंट वार्ता। सुजे हते कल की कार्यक्रम। और अब आपको सुनवाते हैं एक और दादरा। इको गाँव है रेबाराम विश्वकर्मा और संगी साथियन ने।

रेवा राम विश्वकर्मा और संगी जातीन के गाय भय जल लोकगीत के संग ही आज को ग्राम सभा कार्यक्रम हमें तय समाप्त करते हैं। आप और उनको आज को कार्यक्रम कैसा लगे लगो आप हमें चिट्ठिया लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा कोनो विषय पे खास जानकारी चाहते हैं तो उके लाने भी आप हमें चिट्ठिया लिख सकते हैं। हमारा पतो है कार्यक्रम ग्राम सभा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र शामला हिल्स भोपाल, भोपाल का पिन कोड है 462002 और इसके संग ही आज को ग्राम सभा कार्यक्रम हमें तय समाप्त करते हैं। स्वीकार करो पूनम बहन की राम राम।

आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के आर्थिक विकास में स्वदेशी और सतत उपभोग की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी गुड्स को इम्ब्रेस करने और अननेसेसरी सोने के परचेज और डेस्टिनेशन वेडिंग देश के बाहर जाके करने के लिए अवॉइड करने की अपील की है। एक वीडियो मैसेज इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने इंडियंस से लीजर ट्रिप्स देश के बाहर जाके ट्रैवल करते हैं उनको लिमिट करने और देश के बाहर जाके शादी में पैसा खर्च करने से बचने की अपील की है और ये भी कहा है कि जब तक ही जरूरी ना हो तब तक गोल्ड की भी परचेज ना करें। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संदेश देशवासियों के लिए क्या था।
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं

0: पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना है, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए।
1: प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की 7.8% इकोनॉमिक ग्रोथ पर देश को बधाई दी और कहा कि सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ज्यादा इम्फोसिस और महत्वता देने की जरूरत है। स्वदेशी सस्टेनेबल कंजम्पशन और इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री केजी सुरेश। मिस्टर सुरेश, आपका आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद, नमस्कार।
1: सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज करने के बीच आखिर डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, और अगर हम इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं तो इसका इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है?
2: देखिए, हम जितना देश के अंदर के प्रोडक्ट्स को हम यूज करेंगे उतना हमारा आयात कम रहेगा, और जब आयात कम होगा तो उसका मतलब है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है, विदेशी जो हमारे पास एक्सचेंज है, वो हम बाहर नहीं खर्च करेंगे, तो निश्चित ही वो जब बढ़ेगी तो उसका निश्चित ही हमारे पूरे इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे प्रभाव पड़ेगा। हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स कितना है इस पर फर्क पड़ेगा। अगर हम आयातित, अब हम प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि भाई विदेशों में आप जो है घूमने फिरने के लिए कम, भारत में बहुत सारी जगह है जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है और जिससे जो है लोकल इंडस्ट्री को, लोकल सर्विस सेक्टर को बहुत जो है समर्थन मिलेगा, तो आपको वेडिंग डेस्टिनेशन भारत के अंदर है तो कितने लोगों को लिए रोजगार निर्मित होगा। वो विदेशियों के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ कह रहे हैं कि भारत को जो है, भारतीय प्रोडक्ट को, भारतीय पर्यटन स्थलों को, उनको हमको जो है प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा कि विदेश में जाके जब आप पैसा खर्च करेंगे तो वो आप फॉरेन एक्सचेंज ही आप खर्च कर रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो आप खर्च कर रहे हैं, तो वो जब खर्च होगा, जब आप कहते हैं कि सोना, हमको सोना सबसे ज्यादा जो है, अगर आप देखेंगे कि पेट्रोल के बाद हमारा सबसे ज्यादा जो है सोना आयात करने में होता है। पेट्रोल तो मजबूरी है उसके बगैर, लेकिन सोना तो कोई मजबूरी तो है नहीं हमारी, लेकिन अगर हम सोना कम खरीदते हैं, अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, गोल्ड बॉन्ड्स का ऑप्शन है। सोना किस लिए लेते हैं? सोना इसलिए कि भविष्य के लिए हमारा जो है, समझ लीजिए कि कुछ आपके शादी ब्याह के लिए कुछ होता है, उसको छोड़कर बाकी सोना लेने का जो पूरी प्रथा है वो है कि हमारे भविष्य में कोई संकट आए तो उस वक्त वो काम आएगा। अब आज गोल्ड बॉन्ड्स आप लेंगे आज का रेट का, वही आपको रिटर्न मिलेगा, तब भी तो बात तो फिर नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि हमको समय के अनुसार जो है हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाना है, और जैसे ही इंडस्ट्री हमारे लोकल स्वदेशी हम चीजों को खरीदेंगे तो निश्चित ही जो पैसा विदेशी कंपनियां आके यहां कमाती है उसको निश्चित ही जो है उससे ज्यादा मुनाफा हमारे कंपनियों को मिलेगा, हमारे कंपनियों को मुनाफा लगेगा तो वो पैसा फिर भारत में ही जो है निवेश होगा, भारत का पैसा भारत में ही निवेश होगा और उसका लाभ भारतीयों को ही मिलेगा, भारतीय उद्योग को मिलेगा, भारतीय लघु उद्योग है उनको मिलेगा, मध्यम उद्योग है उनको मिलेगा, तो इसका बहुत बड़ा असर जो है पूरे अर्थव्यवस्था में होती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमको स्वदेशी सिर्फ एक नारा नहीं है, स्वदेशी पूरा एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें हम आयात जहां मजबूरी हो, जिसको कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, कुछ चीजों का हमारे पास विकल्प नहीं है, पेट्रोल की हमारे पास जरूरत है, उसके लिए भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑफशोर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनशोर तो है ही, तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही हमारे आर्थिक, हमारे लोकल इकोनॉमी को तब बूस्ट मिलेगा, यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, यहाँ के जिसे कहते हैं कि जो अन्य उद्योगों को बूस्ट मिलेगा, अगर हम अपना पैसा भारत के अंदर ही निवेश करते हैं तो। स्वदेशी प्रोडक्ट्स में एक तो स्वाभिमान की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। पूरी दुनिया आज भारत के प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित हो रही है, खासकर हमारे जो आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें तो हमारा जो है महारत है, पूरे दुनिया में वो आप देखेंगे दुनिया भर में आप घूमेंगे तो हर डेकोरेटिव रूम में आप देखेंगे कि भाई भारत के ब्रास के आर्ट पीसेस लगे होंगे, मार्बल के लगे होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी पूंजी है, हमारी विरासत है ये, तो हमें गर्व भी होना चाहिए इसको उपयोग करते हुए, और उसका एक आर्थिक भी उसका एक बहुत बड़ा पक्ष है।
1: जी,

0: सर ने समझाया हमें वो तो आखिर है ही, उसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में देशवासियों को कहा, उन्होंने सस्टेनेबल कंजम्पशन, क्योंकि आपने कहा कि भारत की विरासत है और भारत में जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो तो है ही, उसके अलावा भी जो हमारी जो जीवन शैली है उसमें हम काफी ज्यादा नेचर का ध्यान रखते हैं, और यही इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने भारतवासियों से अपील भी की कि सस्टेनेबल कंजम्पशन की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करें। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि सस्टेनेबल कंजम्पशन का क्या रोल है इंडिया से बाहर होने वाले अननेसेसरी स्पेंडिंग को रोकने में, रिड्यूस करने में? क्या रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन सिर्फ प्रकृति के लिए जरूरी है या इसका कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमें हो सकता है?
1: भारतीय जो व्यंजन है, भारतीय चीजें लेंगे तो जो भारतीय हमारे जितने भी आउटलेट्स हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारे जो, चाहे अभी अब हम हेल्दी फूड्स की तरफ जाएं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने मनाया था, मिलेट जो है उससे जो है आप देखेंगे कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, और साथ ही साथ जो भी मिलेट को पैदा करते हैं हमारे किसान भाई उनको भी जो है उसका बहुत आकर्षक मूल्य मिलता है। तो इसलिए विदेशी चीजें आयात करके खाने से कितना बेहतर है कि हम अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ जो है हम ऐसे चीजें जिससे जो है, जिसको ऑर्गेनिक है, जो केमिकल बेस्ड नहीं है, किसी रसायन पर जो है निर्भर नहीं है, उन चीजों को हम प्रमोट करें। देश के अंदर जो है कई चीजें आज जो है गोबर से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कई चीजें जो है हम जो सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं। पेड़ को काटना, आज आपको सुनने में ताज्जुब लगेगा, कई देश में भोपाल जैसे जगह में भी शमशान घाट में गोकास्ट का उपयोग होता है, यानी कि जो गोबर के कंडे होते हैं उनको लकड़ी की जगह, तो यानी कि लकड़ी कम यूज किया तो हमारे जो बड़े जंगल है, हमारा जो पर्यावरण है वो बचा रहेगा। तो हमारे पास विकल्प है, हमारे समाज ने वो विकल्प तैयार किया है सदियों से कि हम खर्चा को कैसे कम कर सकते हैं। हमने जो है खादी जैसे प्रोडक्ट्स है, हमारे यहाँ हमेशा हमारी परंपरा रही है रिसाइकल का, रियूज का, रिड्यूस का, हम कभी उपभोक्तावादी कभी नहीं रहे, जितना आवश्यकता है उतना ही हम लोग खर्च करते रहे हैं। आज एक नई ट्रेंड है उधार लेने की, डेट सिस्टम का, कि हम जो है जो चीजें आवश्यक नहीं भी है उनको भी हम खरीदते हैं शौकिया। तो मुझे लगता है कि पुनः हमको वापस अपने पुराने उस सोच में जाना पड़ेगा जहां जरूरत की चीजों को लें और स्वदेशी चीजों को लें, और उससे जो है हमारा जो स्थानीय उद्योग है, चाहे वो लघु उद्योग हो चाहे वो ग्रामीण उद्योग हो, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। और इसके लिए जो है आज प्रधानमंत्री स्वयं, चाहे वो अपने मन की बात के जरिए हो या अलग अलग युवाओं को संबोधन करते हुए भी, वो हमेशा बात करते हैं। और भारत में ये सिर्फ ग्रामीण और खादी की बात नहीं कर रहा हूं, आज हर क्षेत्र में जिसको कहते हैं चिप्स टू शिप्स, प्रधानमंत्री ने ये शब्द का प्रयोग किया था IIT के कन्वोकेशन में, दीक्षांत में, और उसमें उन्होंने जो कहा कि आज हमारा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, सिलिकॉन चिप से लेकर हम लोग जो है आज जहाज तक हम बनाने की क्षमता रखते हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, बंदरगाह के लिए जो है समुद्री जहाज बना रहे हैं, तो हमारे अंदर क्षमताओं की कमी नहीं है, लेकिन हमको भी चाहिए कि हम उन चीजों को प्रमोट करें। तो ये जो पहले भी ये कॉन्सेप्ट्स कुछ चलाए गए थे, बी इंडियन बाय इंडियन, स्वदेशी मूवमेंट हमारा जो है स्वतंत्रता जो संग्राम के दौरान वो अपने आत्मविश्वास के लिए, स्वावलंबन के लिए, उसके लिए हमने ये शुरू किया था, और विदेशियों का बहिष्कार करने के लिए गांधी जी राष्ट्रपिता ने जो है हमको ये आह्वान दिया था, और आज जो है हम उसी को जो है एक व्यापक रूप में अपने समाज में परिवर्तन लाने के लिए, अपने आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
0: भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत बड़ा एक योगदान दे रहा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो आज का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 16-17% होता है और ये 27 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स को भी इम्प्लॉय करता है। आपके विचार में सरकार की कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना बूस्ट कर रही हैं और इसके प्रोग्रेस को इतना एक्सेलरेट कर रही हैं?
1: जो सबसे बड़ा तो आपका मेक इन इंडिया है, जिसके तहत जो है आप जिन चीजों के लिए हम विदेशों में निर्भर रहते थे, जिस टेक्नोलॉजी को हमको आवश्यकता है, हमें जो अनावश्यक है उस पर नहीं, जो कृत्रिम टेक्नोलॉजीज हैं, जो कठिन है, जो मुश्किल है, जो हमारे पास नहीं था, तभी मैंने कहा कि जिसको जैसे सिलिकॉन चिप्स है, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट है, स्पेस के इक्विपमेंट है, आज हम प्रयास कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा एक तो मेक इन इंडिया और दूसरा निजी क्षेत्रों को जो खुली छूट मिली है। पहले हम लोग कहते थे कि भाई रक्षा का क्षेत्र है, आपका स्पेस का क्षेत्र है, ये हम सिर्फ अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से ही करेंगे, तो इसमें जो है ना अच्छे लोगों को रिटेन कर पाते थे, क्योंकि सरकारी तंत्र में जो है कई सीमाएं हैं, आप चाहते हुए भी अच्छे टैलेंट को आप रोक नहीं सकते, ज्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम प्राइवेट में दे रहे हैं, तो ताकि जो विदेशों में जो

0: नासा जैसे जगह में जा रहे हैं, उनको हम वही सहूलियतें, वही तनख्वाहें, अच्छे लोगों को, विदेश में लोग क्यों जाते हैं, ज्यादा तनख्वाह मिलती है, जीवन शैली बेहतर होती है, तो आज अगर हम वो विकल्प अगर उनको यहां दे देंगे तो वो अपना देश छोड़ के क्यों जाएंगे, यहां जितनी सुरक्षा है कहां मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि वो माहौल हमको अगर देना है तो वो सरकार आज प्रयास कर रही है, चाहे वो निजीकरण के माध्यम से हो, चाहे वो निजी कंपनियों को मदद करने के माध्यम से हो, मेक इन इंडिया के माध्यम से हो, कई जैसे गिफ्ट सिटी जैसे अहमदाबाद में बना है, ऐसे क्षेत्रों के माध्यम से जो है हम आईटी को बढ़ावा दे रहे हैं, हम अन्य सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स हमने, बहुत टैक्स हॉलीडेज दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भारत एक सर्विस ओरिएंटेड, पहले तो एग्रीकल्चर था, आज भी काफी एग्रीकल्चर हमारे यहाँ होता है, लेकिन सर्विस सेक्टर को ज्यादा हमने बढ़ोतरी देखी। लेकिन अगर हम विश्व में अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं तो हमको एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना पड़ेगा। हम रॉ मटेरियल्स पहले जो है हम निर्यात करते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम विदेशों से आयात करते थे, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो रॉ मटेरियल लोहा हो, जो है एक्सपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ आयरन की स्टील प्लांट्स हम लगा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी, मतलब जो विदेशी भारतीय मूल के जो है उनको लेकर हम आ रहे हैं, उनसे हम यहाँ स्थापित करवा रहे हैं। इसका पूरा उद्देश्य है कि भारत की अपनी, चाहे वो यूरेनियम हो, चाहे वो ऐसे जो भारत के अपने अंदर जो क्षमताएं हैं, उसको मात्र हम एक रॉ मटेरियल का सप्लायर के रूप में नहीं बल्कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का सप्लायर बने हम, इस दिशा में जो है। और हम स्टार्टअप्स को, जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमी हमारे पास है, इकोसिस्टम हमारे पास है, हम जितना स्टार्टअप्स को जो है, चाहे वो स्टैंडअप इंडिया हो या स्टार्टअप का जो भी योजनाएं जो भारत सरकार ने दिया है, युवाओं को स्किलिंग करके हम लोग जो है आज हर क्षेत्र में हम तैयार कर रहे हैं। आईटीआई की इतनी संख्या बढ़ गई है जो पहले कभी नहीं थी। पूरा प्रधानमंत्री कौशल योजना के माध्यम से हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आज जो है हमारे पास न सिर्फ एजुकेटेड युवा शक्ति हो बल्कि एम्प्लॉयबल युवा शक्ति भी हो, जिनके पास क्षमता इतनी है। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम जो है उसमें भी हमने जो है उद्यमिता को हम लोग जो है आगे बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई आप जाइए इंडस्ट्री को सेटअप करिए। तो हम नौकरियों पर सिर्फ नहीं जोर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उद्यमिता के लिए हम युवाओं को तैयार कर रहे हैं, उनका मानसिकता परिवर्तन कर रहे हैं, उनका कौशल विकास कर रहे हैं। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने जो है इसको समाहित कर दिया है, विकसित भारत जो भारत को हमको 2047 में बनाना है उस दिशा में हमको काम करना है। इस दिशा में बहुत सारे योजनाएं जो है भारत सरकार ने शुरू किया है, उसका निश्चित ही लाभ हमारे युवा पीढ़ी को लेना चाहिए।
1: जी सुरेश जी, आप सुर्खियों में कार्यक्रम में आए और आपने हमें इतनी विस्तृत जानकारी दी इस विषय पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के आर्थिक विकास में स्वदेशी और सतत उपभोग की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
3: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मुकेश का गाया हुआ है, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म के गीत से। इस गीत को गाया है अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर और साथियों ने। इरशाद कामिल के बोल और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: अब आपको सुनवा रहे हैं एबीसीडी 2 फिल्म का गीत। आवाजें दिव्य कुमार और प्रिया शर्मा की हैं। मयूरपुरी के बोल और संगीत तैयार किया है सचिन जिगर।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है,
1: स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा खेल खेल

0: के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
1: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
0: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से। मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: प्रोग्राम में अगला गीत आप सुनेंगे पैपॉन की आवाज में, इसे हमने लिया है फिल्म बजरंगी भाईजान से। कौशल मुनीर के बोल और संगीत है प्रीतम का।

चित्रलोक। अगला किताब जो हमने चुना है अरिजीत सिंह की आवाज में, इसे हमने लिया है फिल्म बाजीराव मस्तानी से। ए एम तुराज और नासिर फराज के बोल हैं। संगीत तैयार किया है शैल प्रीतेश और नितिन शंकर ने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: ये थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगला गीत हमने चुना है पिंक फिल्म से। इस गीत की धुन तैयार की है शांतनु मोइत्रान।

एम एस धोनी फिल्म का ये गीत है जिसे गाया है पलक मुछाल ने। मनोज मुंतशिर के बोल हैं और अमान मलिक का संगीत है।

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना पलक मुछाल की आवाज में। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के

0: प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति, ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
5: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा आपके इशारों पर। जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
6: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने सलाह दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपना

0: आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll rises to over 1,200, with over 4,000 people still missing. RBI says special US dollar Indian rupee forex swap facility generated over 136 billion US dollar inflows till August 31st. Shri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Max de Wever to arrive in New Delhi tonight on a three-day visit to India. Talks on trade, defence, technology, energy and connectivity high on agenda. Heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbh and West Uttar Pradesh tomorrow. And India to stage inaugural Women's Champions Trophy in 2027 after Sri Lanka dropped as hosts. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering the fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज प्रोग्राम में हम बात करते हैं हिंदी सिने जगत के सुनहरे दौर की बेहद खूबसूरत अदाकारा साधना की।

0: किया।
1: साधना का पूरा नाम था साधना शिवदासानी। साधना के पिता ने उनका नाम साधना इसलिए रखा क्योंकि वो उस दौर की एक्ट्रेस और डांसर साधना बोस के फैन थे। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि साधना के पिता फिल्म एक्टर हरी शिवदासानी के भाई थे और हरी शिवदासानी एक्ट्रेस बबीता के पिता यानी करिश्मा कपूर और करीना कपूर।

कराची में जन्मी साधना पार्टीशन के बाद अपने माता पिता के साथ बंबई यानी आज की मुंबई आकर बस गईं। यहाँ उनकी माँ ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर में ही पढ़ाया। उसके बाद वडाला मुंबई के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करा दिया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की साधना ने जय हिंद कॉलेज चर्चगेट मुंबई से।

साधना के मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा तो बचपन से ही थी और इसके लिए उनके पिता उन्हें बहुत सपोर्ट भी करते थे। बात है सन 1955 की, जबकि राज कपूर फिल्म श्री 420 बना रहे थे, तब उन्हें फिल्म के एक गाने में एक बच्ची की भी जरूरत थी। साधना के पिताजी ने इस रोल के लिए कोशिश की और साधना चुननी गई। श्री 420 फिल्म का आपको वो गीत सुनवाते हैं, ये रहा।

एक्ट्रेस नादिरा पर पिक्चराइज इस गीत में साधना भी नजर आती हैं। एक्टिंग का शौक तो साधना को था ही, सो वो अपने कॉलेज के ड्रामों में भी पार्टिसिपेट किया करती थीं। ऐसे ही एक दिन एक ड्रामे में उन्हें किसी प्रोड्यूसर ने देख लिया और कास्ट कर लिया अपनी सिंधी फिल्म अबाना में। ये बात है सन 1958 की। इस फिल्म में साधना ने उस दौर की बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी अदाकारा शीला रमानी की छोटी बहन का रोल किया था।

0: साधना के करियर की ये सुपरहिट फिल्म थी। हालांकि साधना की हिंदी फिल्मों की पारी शुरू हुई फिल्म लव इन शिमला से, जिसे प्रोड्यूस किया शशधर मुखर्जी ने। उस समय एक एक्टिंग स्कूल भी शशधर मुखर्जी चलाया करते थे, उसमें साधना भी ट्रेनिंग ले रही थी और शशधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी भी उसी स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। उस समय की बात है जबकि शशधर मुखर्जी को असिस्ट कर रहे थे आर के नैयर। उसी दौर में प्लान हुई फिल्म लव इन शिमला और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी शशधर मुखर्जी ने सौंप दी आर के नैयर को। हीरो तय हुए जॉय मुखर्जी और हीरोइन साधना।
1: ए बेबी, ए जी, ए बेबी।

0: लव इन शिमला फिल्म की शूटिंग से पहले का एक वाकया आपको सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब इस फिल्म के लिए साधना का लुक टेस्ट हुआ। अब आर के नैयर और यूनिट के कुछ और लोगों को लगा कि साधना का जो ये उठा हुआ माथा है यानी फोरहेड, ये इनकी खूबसूरती को कुछ कम कर रहा है। तब आर के नैयर ने ब्रिटिश एक्टर ऑड्री हेपबर्न के हेयर स्टाइल से इंस्पायर्ड होकर साधना के बालों को एक नया लुक दिलवाया। अब देखिए साहब, वो लुक इतना पसंद किया गया कि आज भी लड़कियां उसकी कॉपी करती हैं और वो लुक कहलाता है साधना कट।
1: जी

हम बात कर रहे थे साधना कट बालों की। ऐसा नहीं है कि उस दौर में सिर्फ साधना की हेयर स्टाइलिंग को ही कॉपी किया गया। उस दौर की फैशन आइकन रही साधना। ये साधना ही थी जिन्होंने चूड़ीदार पजामा और कुर्ते का चलन शुरू किया जो आज तक फैशन में है। अब आपको सुनवाते हैं वो गाना जो हिंदी फिल्मों का आज तक का सबसे रोमांटिक गाना माना जाता है।

हम दोनों फिल्म का गाना साधना और देव आनंद पर पिक्चराइज हुआ, कभी भुलाया नहीं जा सकता, एक किंवदंती सा बन गया है। मोहब्बत करने वालों के बीच इस गाने की अपनी एक जगह है। खैर, यहाँ साधना की एक और उल्लेखनीय फिल्म का जिक्र बहुत जरूरी है जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था, फिल्म मेरा साया। इस हिट फिल्म में साधना की जबरदस्त अदाकारी ने सभी का दिल जीत लिया और संगीत आज भी सुना जाता है।

दोस्तों, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में आज भी एक कहावत सी बन गई है और बेहद पसंद किया जाता है ये गाना। खैर साहब, हम बात कर रहे थे साधना की, जिन्होंने 7 मार्च 1966 को अपनी पहली फिल्म के निर्देशक आर के नैयर से शादी कर ली। अपने फिल्मी करियर में साधना ने फिल्म डायरेक्ट भी की, गीता मेरा नाम।

और अब जिक्र साधना की कुछ उल्लेखनीय फिल्मों का, जिनके गीत शायद वक्त की कमी के कारण हम यहाँ आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन उन फिल्मों का जिक्र जरूरी है क्योंकि उनके गाने सुपर डुपर हिट हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे आपको इन फिल्मों के गीतों की झलक सुनवाने की। एक फूल दो माली,

अपने जीवन के आखिरी समय में साधना अकेली हो गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन फिल्मों से उनका जो लगाव, प्यार और समर्पण था वो शायद इस गीत में व्यक्त हो।

0: तो दोस्तों, अभिनेत्री साधना पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। रमेश गोखले द्वारा प्रोड्यूस इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

कुछ तुम क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन और इसकी प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नाम की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंदका और शिकोहाबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India has stepped up its relief operation in flooded Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rocks near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to the affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah, while speaking in Parliament today, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. Death toll from the devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support, and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share responsibility for mitigating its impacts. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi today chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. The Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. In Uttar Pradesh, former commander of Western Air Command, retired Air Marshal Jitendra Mishra, has been appointed as the first CEO of Sri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust in Ayodhya today. The appointment was announced after the meeting of the trust held at Maniram Das Chavani in Ayodhya under the chairmanship of Trust President Mahant Nritya Gopal Das. The recipient of Ati Vishishta Seva Medal and Vishishta Seva Medal, Air Marshal Mishra retired on the 30th of April this year. He will be responsible for overseeing the administrative functioning of the trust and handling key operational responsibilities related to the Sri Ram Temple complex.